सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के सावन माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों

0: का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट और परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं और ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, हर हर महादेव। आज सोमवार की ये दिव्य सुबह, चारों ओर गूंजता बम बम भोले का जयकारा और हवाओं में घुली कपूर की महक, ऐसे में मन और आत्मा को साक्षात कैलाश पर्वत की यात्रा पर ले जाने के लिए आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं देवों के देव महादेव को। साथियों, भोलेनाथ का रूप भी कितना निराला है ना। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्पों की माला और पूरे शरीर पर भस्म। इसी अद्भुत रूप की महिमा को शब्दों में पिरोया है सुप्रसिद्ध गायक कुमार विशु जी ने। तो आइए लीन हो जाते हैं भक्ति के इस रस में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार विशु की आवाज़ में शिव शंभू के अलबेले रूप को बयां करता यह भजन। सचमुच जब हम शिव की शरण में होते हैं तो दुनिया के सारे संताप स्वतः ही मिट जाते हैं, और शिव भक्ति हमें ये सिखाती है कि ये संसार, ये मोहमाया सब कुछ अस्थाई है। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में हम सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। इसी परम सत्य और जीवन के दर्शन को बयां करता है हमारा आज का ये दूसरा भजन, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की मखमली और जादुई आवाज़ में सुनिए यह खूबसूरत भजन जो हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है।

श्रोताओं, सचमुच ये जग दो दिन का मेला ही तो है, और जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है तब उसका अहंकार टूट जाता है। तब उसे समझ आता है कि दुनिया का राजपाट, धन दौलत सब फीके हैं अगर दिल में परमात्मा का नाम ना हो। गुरबाणी में भी यही कहा गया है कि अगर ईश्वर हमें राजा बना दे तो उसमें क्या बड़ाई, और अगर वो हमें भीख मंगवाए तो हमारा क्या घट जाएगा। असली सुख तो बस उसकी रजा में, उसकी याद में रहने में है। भाई रविंद्र सिंह रागी की बेहद सुरीली और शांत कर देने वाली आवाज में सुनते हैं आज का ये पवित्र शब्द।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, धन्य है वो महापुरुष जो हमें सीधे उस एक मालिक से जोड़ते हैं। परमात्मा के बनाए संसार में इबादत के रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल तो बस वही एक नूर है। जब बात वफा, वादे और खुदा की मोहब्बत की आती है तो दिल सीधे मदीने की गलियों का रुख कर लेता है। आज के इस कार्यक्रम में लीजिए, अब हम पेश कर रहे हैं अकीदत के फूल। शान आलम और उनके साथियों की पुरअसर आवाज़ में सुनिए पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में ये बेहद खूबसूरत नाते पाक, जिसमें वादे की अहमियत और उनकी रहमत का जिक्र है।

श्रोताओं, कितनी पाकिजगी और सुकून है इस इबादत में। आज के इस कार्यक्रम में हमने शिव के अलबेले रूप को निहारा, जीवन के परम सत्य को जाना, गुरबाणी की महिमा को महसूस किया और मदीने की नूरानी फिजाओं का दीदार भी किया। और अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को उसके अंतिम सफ़र पर ले जाने का। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं देवों के देव महादेव की महाआरती के साथ। अनुराधा पौडवाल और उनके साथियों की दिव्य आवाज़ में भोलेनाथ की ये मंगल आरती। तो श्रोताओं, अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और साक्षात शिव की आरती का आप आनंद लीजिए।

भगवान शिव की इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का आज का यह कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर हैं सुरेश वाडेकर के और संगीत सतीश भाटिया का है।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: अनुशासन का अर्थ है अपने आप को नियंत्रित करना। यह अपने मस्तिष्क और शरीर का एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें नियमों का पालन तथा उत्तम कार्य व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से उन दूषित प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना है जिनसे स्वयं को अथवा दूसरों को हानि पहुंचने की संभावना हो। ये आत्मनियंत्रण मनुष्य की आत्मा से संबंधित होता है और शुद्ध आत्मा मानव को अनुचित कार्य करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती। अतः मानव जीवन में सर्वप्रथम आत्मानुशासन आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को दूर करने का इससे उत्तम साधन कोई नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की सहायता के बिना मानव जीवन लगभग असंभव सा है। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों के बिना सामाजिक जीवन भी असंभव सा है। घर में, विद्यालय में, खेल में, कामकाज में, आपसदारी में, व्यक्तिगत दिनचर्या आदि सभी में नियम आवश्यक है। यहाँ तक कि प्रकृति भी स्वयं कुछ नियमों का पालन करती है। अतः मनुष्य के लिए ये संभव नहीं कि वो बिना नियम के रह सके। जो व्यक्ति नियमों का जितना अधिक पालन करता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक अनुशासित कहा जाता है। अपने दैनिक क्रियाकलापों को एक निश्चित पद्धति में समयबद्ध तरीके से अंजाम देना अनुशासन का प्रमुख अंग है। उदाहरण के लिए रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व एक निश्चित समय पर उठ जाना, स्नान आदि नित्यक्रम करना, व्यायाम करना, सैर करना, भोजन करना, दवा लेना, समय पर कार्यस्थल पर पहुंचना, उचित वेशभूषा धारण करना, सभ्य तरीके से बात करना, कामकाज को सर्वोत्तम ढंग से करने का प्रयास करना, सही समय पर सो जाना इत्यादि सभी कुछ अनुशासन के दायरे में आता है। यह अनुशासन सबसे पहले व्यक्ति के अपने परिवार से आरंभ होता है। एक सभ्य, सुशिक्षित, शुद्ध आचरण वाले परिवार के बालक को स्वाभाविक रूप से नेक चाल चलन और अच्छे आचरण का अभ्यास हो जाता है। अनुशासन का पहला पाठ आज्ञा पालन होता है। अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की आज्ञा पालन करके बालक अनुशासन का पहला पाठ अपने घर से ही पढ़ता है। इस प्रकार के वातावरण में पला बड़ा बालक जब विद्यालय में जाता है तो गुरुओं की आज्ञा पालन करके अनुशासित आचरण सीखता है। अनुशासन से दैनिक अभ्यास और कार्य के प्रति एकाग्रता उत्पन्न होती है। ऐसे में बालक के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का संतुलित विकास होता है। विद्यालय जीवन के उपरांत जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसे पग पग पर अनुशासित व्यवहार की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीन व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज व देश के लिए घातक सिद्ध होता है। जिस प्रकार बेतरकीब झाड़ झंखाड़ उपवन की शोभा खराब कर देते हैं, उसी प्रकार अनुशासनहीन व्यक्ति

0: समाज को आभाहीन कर देता है। जिस व्यक्ति के पास अनुशासन नहीं है वो तो पशुतुल्य ही है, उसका जीवन लक्ष्य रहित हो जाता है। फलतः वह ऐसे कार्यों में दिलचस्पी लेने लगता है जो नियम संगत नहीं होते, और गैर कानूनी काम करते करते वो अनैतिक आचरण वाला बन जाता है। आजकल बढ़ते अपराध, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार इत्यादि इसी अनुशासनहीनता का परिणाम है। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे समाज में बालक को विद्यार्थी जीवन तक अनुशासित रखने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, जबकि विद्यार्थी तो समाज की एक नव मुखरित कली है। इन कलियों में यदि किसी कारण कमी आती है तो वे मुरझा जाएंगी और बजाय फूल बनने के वे कांटों में बदल जाएंगी। अंततः अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन अकुशलता, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की ओर ही जाता है। हम देखते हैं कि जीवन में ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति ने अनुशासन का पालन किया है। अनुशासन संस्कारों को जन्म देता है जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। इससे व्यक्ति में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास का संचार होता है, परस्पर स्नेह तथा सहयोग की भावनाओं का विकास होता है। संस्कार व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार अनुशासन से जीने का सही तरीका आ जाता है जो कि स्वतः ऊंचे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा से लेकर आज तक के शोधकर्ताओं, मनीषियों तक के योगदान के पीछे अनुशासित जीवन की ही प्रमुख भूमिका है। आद्य शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम इत्यादि महापुरुषों ने अनुशासित जीवन जीने से ही अपने अपने समय में समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए और समाज को सही दिशा प्रदान की। सार रूप में हम कह सकते हैं कि अनुशासन सफलता की गारंटी है, फिर क्यों ना इसे जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। काव्यधारा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए प्रदीप भट्ट का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: बड़ी मेहनत मशक्कत से बना ये आशियाना है, यहीं रहकर के बच्चों का अनागत भी बनाना है, कि गर्मी शीत बरखा से बचे बच्चे यही इच्छा, कि गर्मी शीत बरखा से बचे बच्चे यही इच्छा, बरस अगले तो निश्चित दीप हमको मुस्कुराना है, बड़ी मेहनत मशक्कत से बना ये आशियाना है। राज जरा ये खोलो अम्मा, बादल क्यों फटते हैं अम्मा, गांव गली में आफत आई, रील बनाने दुनिया आई, नाच रहे सब छम छम छम्मा, बादल क्यों फटते हैं अम्मा, और आसमान से संग संग झड़ते बूंदों सक जब ओले पड़ते, पढ़ कड़ाई में मौज मनाते, कभी उछलकर बाहर आते, शोर मचाते तम्मा तम्मा, बादल क्यों पटते हैं अम्मा, और बात नहीं फिर कलवा माने, अपने ऊपर छतरी ताने, भीग रही है कब से तन्नी, गुस्से में कुछ लगती चन्नी, बबलू बोल रहा फिर धम्मा, बादल क्यों फटते हैं अम्मा, रील रील का पड़ा है चस्का, जैसे घर का खाली मस्का, डूबे की कोई मदद न करता, लेकिन एक दिन वो भी भरता, कर्म घूम कर करे परकम्मा, बादल क्यों फटते हैं अम्मा, डर लगता है मुझको हर पल, सुई धागे से सिल दो बादल, डर लगता है मुझको हर पल, सुई धागे से सिल दो बादल, सिल देती तुम जैसे कपड़ा, पतला या फिर हो वो तगड़ा, गीत गाऊं फिर हम्मा हम्मा, बादल क्यों फटते हैं अम्मा, उसमें जो वो मुझमें देख, आंखों के दर्पण में देख, उसमें जो वो मुझमें देख, आंखों के दर्पण में देख, अबुझ नहीं है कोई पहेली, पाना है अर्पण में देख, उसमें जो वो मुझमें देख, बिंदी चूड़ी और नथनिया, जाने क्या क्या पहना है, दूर बसे मन भावन मेरे, असल वही तो गहना है, घर जब आए सजना मेरे, उनको तू धड़कन में देख, उसमें जो वो मुझ में देख, एक बार तुम गौर से देखो, खुशी नहीं क्यों चेहरे पर, सूनी राहें नैन ये तख्ते, चैन नहीं क्यों धड़कन में, तेरी दुनिया

0: मेरी दुनिया चल आकर अर्पण में देख, उसमें जो हो मुझ में देख, आंखों के दर्पण में देख। ये भी कोई जिस प्रिय है जिसमें तुम न बसते हो, अगर तुम्हें है शंका उनको, आकर तू कणकण में देख, उसमें जो वो मुझ में देख, आंखों के दर्पण में देख। और कब तक संताप करूं मैं, नैनों की बरसात करूं मैं, उलझन बस इतनी सी मेरी, और कितना प्रयास करूं मैं, उल्टी सीधी चाल चले वो, यकी नहीं तो पण में देख, उसमें जो वो मुझ में देख। यकी नहीं तो पण में देख, हटकर बैठी हूं मैं जब से, रूठ के वो बैठे हैं तब से, आस मिलन की प्रिया से ऐसी, नजरे बस दरवाजा तकती, नैनों की बरसात करूं मैं, उलझन बस इतनी सी मेरी, और कितना प्रयास करूं मैं, उल्टी सीधी चाल चले वो, यकी नहीं तो पण में देख। शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना, अगर दिन है तो दिन बोलो, नहीं तुम रात बोलो ना। कहीं लूके थपेड़े ये आज अपनी जान ना ले लें, कहीं लूके थपेड़े ये आज अपनी जान ना ले लें, मिले राहत करो ऐसा ये अपनी जुल्फ खोलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना। जिधर भी देखिए बस शोर ही दिखता है सड़कों पर, जरा कानों में मेरे प्यार की मिश्री सी घोलो ना। नहीं आदत किसी से पेश जो बेअदबी से आए, नहीं आदत किसी से पेश जो बेअदबी से आए, हिदायत सख्त मेहमा से जुबा मिठी में बोलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना। जिसे भी देखिए बस दे रहा तकरीर नफरत पर, जिसे भी देखिए बस दे रहा तकरीर नफरत पर, चलो आगे बढ़ो तुम प्यार पर तहरीर दे लो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना। सभी अपने मगर, सभी अपने मगर कोई कभी भी काम न आता, चलो जैसा भी है रिश्ता इसे एक बार ढोलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना। हुआ जो कुछ भी माजी में उसे बस भूलना बेहतर, हुआ जो कुछ भी माजी में उसे बस भूलना बेहतर, यही इच्छा है अब बोलो उसे तुम पहले तोलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना। और नहीं अच्छी उदासी चेहरे पर तुम सच समर जाओ, नहीं अच्छी उदासी चेहरे पे तुम सच समर जाओ, नहीं घर में अगर पानी तो पैसे नैन धोलो ना, नहीं फुर्सत करे जो मोल ग्राहकों से मियां अच्छन, नहीं फुर्सत करे जो मोल ग्राहकों से मियां अच्छन, रुपया हो न है खा लो पर पहले आम धोलो ना, कि गलियां तंग लखनऊ की अभी भी याद आती हैं, कि गलियां तंग लखनऊ की अभी भी याद आती हैं, कहीं छूटा है कुछ अंदर मगर दिल साथ होलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना, अगर दिन है तो दिन बोलो, नहीं तुम रात बोलो ना। और नहीं भरता मेरा मन सुनने को बेताब रहता है, नहीं भरता मेरा मन सुनने को बेताब रहता है, जुबा अवधि में फिर से दीप तुम एक बार बोलो ना, शहरे लखनऊ में आदाब करके बात बोलो ना, अगर दिन है तो दिन बोलो, नहीं तुम रात बोलो ना। सोच रहा हूं अपनी जानिब भेंट कौन सी दे आऊं, सोच रहा हूं अपनी जानिब भेंट कौन सी दे आऊं, रणभूमि में खेत हुए जो उनका ही मैं गुण गाऊं, या चरणों की धूली उनकी माथ में अपने लगवाऊं, सोच रहा हूं अपनी जानिब भेंट कौन सी दे आऊं। माने बोला जल्दी जाकर सुमन बाग से ले आ तू, उनको ही चुनना जिससे कि आती हो अच्छी खुशबू, माँ की इच्छा चढ़े इश पे सोच समझ मैं अकलाऊं, सोच रहा हूं अपनी जानिब भेंट कौन सी दे आऊं। मन असमंजस घूम रहा था पुष्प पुष्प को चूम रहा था, बाग कदम जब रखा मैंने माली मुझको घूर रहा था, कर विनती तब कदम बढ़ाए तब माली ने फूल दिलाए, खुद पर रिझूं तुझे रिझाऊं, सोच रहा हूं अपनी जानिब भेंट कौन सी दे आऊं। तभी अनिश्चय के बादल में बिजली चमकी, तभी अनिश्चय के बादल में बिजली चमकी, रास्ता पाया आज हुआ भारत स्वतंत्र दिन याद आया, वीर समाधि पर जाकर फिर शीश नवाया, पुष्प चढ़ाकर उन चढ़ों पर फर्ज निभाया। सोच रहा हूँ अपनी जानिब भेंट कौन सी दे आऊँ, रणभूमि में खेत हुए जो उनका ही मैं गुण गाऊँ। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, तिजारत तिजारत तिजारत, हैं एक दूसरे के ये दोनों ही पूरक, सियासत सियासत सियासत सियासत। कहें क्या किसे से है कैसे बिताई, मोहब्बत न हमसे किसी ने जताई। अगरचे हुआ सामना फिर कभी तो, भरे चौक में बस है हंसी ही उड़ाई। यूं लगता जमाने बची ही नहीं अब, शराफत शराफत शराफत शराफत। जिसे देखिए दे रहा बस वो भाषण, नहीं मिल रहा पर गरीबों को राशन। नहीं जानते बंद कमरों के रहबर कि भारी हुआ है गरीबों का पोषण। कि लब कह रहे दोस्ती पर दिलों में अदावत अदावत अदावत अदावत। ये क्या जिंदगी दोस्तों मैंने पाई, जहां दिल लगाया वहीं चोट खाई। अभी इम्तिहान और देने हैं मुझको, मोहब्बत में झूठी कसम दी थी उसको। वही मिल रहा जो कि बोया था मैंने, बगावत बगावत बगावत बगावत।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रदीप भट्ट का पूर्व प्रसारित ये काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47.5 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति। श्रीशाहः ह्यः राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53.4 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 14.2 वर्षात् 26.2 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजू अन्तर्राष्ट्रिय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासां विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रति सप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्गमीटर परिमिते प्रांगणे 22 चेक-इन स्थानकानि, 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि, 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां सम्भूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य नव

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के

दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
1: जिगर जो है एक शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। जिगर को इंग्लिश में हम लिवर कहते हैं, और ये जो लिवर होता है ये पेट का एक अंग है जो सीधी तरफ होता है, और इसका सबसे जो काम है वो है कि गंदे खून की सफाई करना, शरीर की पाचन क्रिया को बढ़ाना, और इसके जो रोग होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। लिवर की जो बीमारियां होती हैं, जो अक्यूट कंडीशन होती हैं, उनको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, और कुछ लोगों में जब लिवर सुखड़ जाता है तो उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर की सूजन आ जाना। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः जो कॉमन कारण हम देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो होता है इन्फेक्शन, और उसमें भी कॉमन कारण है वायरसेस, जैसे हेपेटाइटिस बी का आपने नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस सी, और वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। फिर कुछ दवाइयों के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है, खासकर टीबी की दवाओं के कारण और दर्द निवारक गोलियों के कारण। तीसरा जो जरूरी कारण हम देखते हैं वो है शराब का अत्यधिक सेवन, जिसको हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। देखिए, दो प्रकार से संक्रमण हो सकता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो होता है खून के आदान प्रदान से, और वो आदान प्रदान किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे सुइयों के द्वारा, खून के संपर्क से, ऑपरेशन के द्वारा। जो औजार हैं उनकी सफाई सही से ना की जाए तो जो मरीज जिसका इन्फेक्शन था उसका खून अगर लगा रह जाए तो वो दूसरे मरीज में संक्रमण हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी शारीरिक संबंधों से भी फैल सकता है। जहां तक हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की बात है, वो खराब पानी के संक्रमण से हो सकता है। देखिए, लिवर जो जिगर रोग है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम देखने को मिलता है वो है जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया। ये एक कहना गलत होगा कि पीलिया अपने आप में कोई बीमारी है। पीलिया लिवर की बीमारी का एक सिम्टम है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी के मरीजों में जो एक महत्वपूर्ण जो सिम्टम आता है वो होता है पीलिया। उससे पहले उन पेशेंट्स को बुखार हो सकता है, खांसी, जुखाम, जोड़ों में दर्द, उसके बाद पीलिया का आगमन हो जाता है शरीर में। पीलिया का पता कैसे चलेगा? कि आंखें पीली हो जाएंगी, पेशाब का रंग गाढ़ा पीला आने लगेगा, पूरा शरीर पीला पड़ सकता है। उसके अलावा फिर और जो सिम्टम होते हैं वो होता है कि भूख ना लगना, उल्टियां होना, पेट में दर्द होना। देखिए, एक तो खून का टेस्ट होता है जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पीलिया है तो उसकी मात्रा कितनी है। फिर कुछ लिवर एंजाइम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि उस पीलिया की सीवियरिटी कितनी है। तीसरी चीज होती है कि जैसे मैंने बताया कि ये कई प्रकार के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो इनके स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल पाता है कि ये इन्फेक्शन है। कुछ मरीजों में जब लिवर पे चोट काफी लंबे समय तक चलती रहती है, जैसे शराब के अत्यधिक सेवन, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जिसका निवारण ना किया हुआ हो, जिसका इलाज ना किया हो, तो समय के साथ वो लिवर सुखड़ जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। इस सिरोसिस के होने से कई और कॉम्प्लिकेशंस

0: शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण होता है पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी हो जाना, पीलिया हो जाना, बेहोशी की स्थिति में चले जाना और गुर्दे फेल हो जाना।
1: तो इसके लक्षण और उपचार क्या हो सकते हैं डॉक्टर?
0: देखिए, सबसे जरूरी है बचाव। अगर बचाव किया जा सके, जैसे शराब का अत्यधिक सेवन ना किया जाए, शराब को जितना कम से कम सेवन हो सके उतना अच्छा है। जो नहीं पीते हैं वो ना शुरू करें, जो बहुत ज्यादा पीते हैं वो कम कर लें। और बचाव के बाद अगर एक बार बीमारी हो गई है तो हमें ये पता करना होता है कि इसका कारण क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो उसका फिर अलग दवाइयां और टेस्ट किए जाते हैं, जिससे वो निवारण किया जा सके। लिवर की जो एक इंजरी होने के बाद रीजेनरेशन की कैपेसिटी है, मतलब उसको वापस नॉर्मल होने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे एक व्यक्ति जिसको शराब के कारण लिवर डैमेज हुआ है, तो अगर हम उसको एडवाइस करें कि वो शराब का सेवन बंद कर दे, तो काफी मरीजों में हमने ये देखा है कि 6 महीने, 3 से 6 महीने बाद लिवर के फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। ये जो लिवर जो है, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो जितने भी पेट से खून जो है वो लिवर के रास्ते फिर पूरे शरीर में जाता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार के कीटाणु वगैरह भी होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं। तो लिवर का काम ये होता है कि वो एक फिल्टर की तरह काम करता है और वो उन सब चीजों को अपने शरीर से साफ कर देता है। फिर वो जो चीजें हैं वो या तो पित्त के सहारे या मूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकल जाती है।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था जिगर के सामान्य रोग और उपचार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
3: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है नलकूप की सुरक्षा और संचालन। तो भाई आप जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों का सिंचाई का जरिया मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में नलकूप ही हैं और इसके बाद नहरों का नंबर आता है। तो हमें अपने नलकूप की सुरक्षा और संचालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमें अच्छा फायदा हो और हमारा नुकसान बिल्कुल न हो। तो नलकूप की सुरक्षा की बात यदि हम करें तो किसान भाई अपने नलकूप का एक बहुत ही अच्छा मकान बनवाएं और मकान ऐसी जगह बनवाएं जहां पर भाई थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठी हुई जगह हो। अब इसके बाद बात आती है कि भाई खेतों में कभी कभी चोर चोरी कर लेते हैं, तो नलकूप की जो दीवारें होती हैं उसमें सीमेंट का अच्छा घोल बनवाएं और सीमेंट तेज करके लगवाएं और साथ में दीवार के अंदर खड़े करके आप सरिये लगवाएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अब दूसरी बात आती है कि भैया जो हमारी बिजली की लाइन होती है, तो बिजली की लाइन से हमारी मोटर न फूके, हमारा स्टार्टर खराब न हो, इसके लिए आप अपने नलकूप में अच्छी किस्म के कटआउट और उसका फ्यूज वायर, जो आप फ्यूज लगाते हैं कटआउट में, वो अच्छी किस्म का होना चाहिए। और जो आपकी मोटर होती है, मोटर हमारे किसान भाई अक्सर 15 हॉर्स पावर, 12.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर रखते हैं। तो किसान भाई मोटर की पावर के हिसाब से ही अपने फ्यूज वायर का चुनाव करें और अलग अलग जो नंबर आते हैं वो आप अपने मिस्त्री से पूछकर उसी नंबर का फ्यूज वायर अपनी मोटर के लिए अपने कटआउट में इस्तेमाल करें। और भैया अब बात आती है स्टार्टर की, तो हमारे किसान भाई जो नलकूप का स्टार्टर है वो अच्छी कंपनी का बहुत ही अच्छा स्टार्टर लाएं और समय समय पर उसका जो विद्युत ऑयल होता है, जो बिजली का तेल होता है, वो समय समय पर बदलते रहें। वैसे 6-7 महीने तक आप अपने जो नलकूप का स्टार्टर होता है उसका तेल 6-7 महीने से पहले ना बदलें। और साल भर भी इसमें चल जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा न हो कि भैया जो आपके नलकूप का स्टार्टर है उसमें तेल मानक के अनुसार कम हो, तो ऐसे में स्टार्टर फूकने का डर होता है। तो हमारे किसान भाई उसमें तेल की पर्याप्त मात्रा भर कर रखें। और अब जानते ही कि स्टार्टर के निचले हिस्से में जो जहां बटन होते हैं उसके निचले हिस्से में जो हिस्सा होता है उसमें तेल भरा होता है, तो तेल का लेवल आप समय समय पर चेक करते रहें। और यदि आप और भी अच्छी सुरक्षा चाहते हैं तो आप अपने ट्यूबवेल पर ऑपरेटर लगा सकते हैं। ऑपरेटर में क्या होता है कि आपकी चलती हुई बिजली, जैसे आप 3 फेज की मोटर होती है यानी कि 3 तारों में बिजली आती है और चलती चलती लाइन में एक तार में बिजली कहीं रास्ते में गायब हो गई या कोई फ्यूज उड़ गया या कहीं उच्च क्षमता की विद्युत लाइन में फॉल्ट हो जाता है, तो चलती

0: प्रति बिजली जो है टू फेस हो जाती है या कम हो जाती है, तो ऐसे में मोटर फूकने का डर होता है। तो इस डर को दूर करने के लिए या इस नुकसान को दूर करने के लिए यदि हम स्टार्टर के साथ ऑपरेटर लगा दें तो ये नुकसान कम हो जाता है। तो किसान भाई अपने नलकूप पे अच्छा स्टार्टर और ऑपरेटर लगाएं। और भैया संचालन की बात है तो संचालन करते समय ये ध्यान रखें कि आप जो है कहीं लोहे की जगह हाथ ना लगाएं, जैसे स्टार्टर के लोहे पर आप अपना उंगली वगैरह स्पर्श न करें, और कटआउट लगाते समय भी बड़ी सावधानी बरतें। और कभी कटआउट के ऊपर एक चीज और होती है कि जो तांबे की मोटी मोटी डोरियां होती हैं भैया, वो आप अवश्य लगाएं। उसके बाद ही जो ट्रांसफार्मर से आने वाला केबल होता है जो एल्यूमिनियम का होता है, तो उसमें एक जगह जोड़ अवश्य बनाएं, क्योंकि यदि हम सीधे ट्रांसफार्मर से आकर जो हमारा एल्यूमिनियम का केबल है वो यदि कटआउट में बांध देते हैं तो उसमें तुरंत ही जंग लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं। तो तांबे की डोरी अपने कटआउटों में बांधें और उसके बाद वे तांबे की मोटी डोरियां आप अपने ट्रांसफार्मर वाली लाइन पे जो केबल होता है उसमें जोड़ दें। और भैया जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में जब आप अपना ट्यूबवेल बंद रखें तो आप ऑपरेटर और स्टार्टर से तो अपना ट्यूबवेल बंद रखेंगे ही, स्विच ऑफ रखेंगे ही, लेकिन आप जो मेन लाइन के कटआउट हैं उनको भी निकाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी आकाशीय बिजली जब हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह पर आकर गिर जाती है तो कभी कभी स्टार्टर और यहाँ तक की जो नीचे मोटर और पंखा है वहां तक भी आकाशीय बिजली चली जाती है बिजली के केबल द्वारा, और हमारी मोटर पंखा फूक सकता है, नुकसान हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। संत कबीरनगर और हापुड़ जिलों की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रातः 9:15 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर सुनिएगा रुचि अग्रवाल के गाए भजन। शाम 6:45 पर विविधा के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के जौहर से अंकित सैनी की भेंटवार्ता का विषय होगा चांदीपुरा वायरस संक्रमण, कारण लक्षण और रोकथाम के उपाय। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवांगी से हिमांशु रंजन की बातचीत का विषय रहेगा बाजरा में समसामयिक कार्य। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी आपको दी जाएगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला शक्ति केंद्र या नारी शक्ति योजना के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराह्न 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे चंद्रदत्त स्याल के गाए गढ़वाली लोकगीत। और लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत प्रातः 9:25 पर सुनिएगा रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। परिवार जगत कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 1:15 पर परिचर्चा का विषय रहेगा पौधारोपण अभियान कितने कारगर। प्रतिभागी होंगे रश्मि अग्रवाल, विक्रांत शर्मा और सुशील राजपूत। परिचर्चा का संचालन करेंगी ज्योति पाल। दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन वादन। आज आप पेश करेंगे राग मूलतानी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:31 पर पेश किया जाएगा ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं प्रातः 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। प्रातः 10 बजे गीत तुम्हारे कार्यक्रम के अंतर्गत, चित्रपट संगीत के अंतर्गत पूर्वाहन 11 बजे, दोपहर 12:30 पर मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में, नई फिल्मों से कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर, शाम 6:55 पर छाया गीत के अंतर्गत, गीत संध्या कार्यक्रम में रात 8 बजे, रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत पेश किए जाएंगे रात 10 बजे, और 10:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। नागपंचमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से कामना की है कि प्रत्येक घर आंगन आनंद शांति और खुशहाली से आलोकित रहे। उन्होंने नागपंचमी को प्रकृति के प्रति श्रद्धा सह अस्तित्व और शिवत्व का संदेश देने वाला पावन पर्व बताया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व के कारण प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर जय घोष करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त श्रद्धालु अपने घरों में आज भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंची है।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रदेश भर में श्रद्धालु और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभल, एटा और बिजनौर सहित कई अन्य जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 12वीं तक के सभी विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं पीलीभीत जिले में सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के

0: सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भावना के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
1: भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के KGMU साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर PSC की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
2: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश PSC बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 PSC महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने कल वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय, तकनीकी और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं।
3: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ BNS की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कल तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के

समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी कल ही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए यूपी टी20 लीग सीजन 4 के मुकाबले में काशी रुद्रास की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाबी बल्लेबाजी में काशी रुद्रास की टीम ने 18.1 ओवरों में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। सभी नाविकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इस बीच चित्रकूट जिले में रामघाट पर मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका के प्रति भी लोगों को सतर्क किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

साथ साथ। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी राजवीर सिंह और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, सुबह की पहली किरण जब इस आजाद भारत की मिट्टी पर पड़ती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन इस आजादी और इस सुनहरे सवेरे को पाने के लिए हमारे देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे

एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने लंदन की धरती को हिला दिया था। जानेंगे एक ऐसे माउंटेन मैन की दास्तान जिसने अकेले ही पहाड़ का सीना चीर दिया था। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत की उस सरहद की जो रातों रात खींच दी गई थी, जिसने हमारे देश का भूगोल ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं रेड क्लिफ लाइन की। बात 1947 की है। भारत आजाद होने वाला था, लेकिन साथ ही देश दो टुकड़ों में बंटने जा रहा था। इस विभाजन की रेखा को खींचने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने सौंपी एक ऐसे इंसान को जो कभी भारत आया ही नहीं था। नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। श्रोताओं, रेडक्लिफ को यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों के आपसी प्यार और यहाँ की संस्कृति का कोई अंदाजा ही नहीं था। और सबसे बड़ी त्रासदी देखिए, एक विशाल देश को दो हिस्सों में बांटने के लिए उसे सिर्फ 5 हफ्तों यानी कि मात्र 35 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने समय सीमा के भीतर अपना काम किया और 17 अगस्त यानी आज ही की तिथि को सन 1947 में रेडक्लिफ लाइन को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। बहुत ही जल्दबाजी में, बंद कमरों में बैठकर, सिर्फ नक्शों और कागजों पर पेंसिल चलाकर यह सरहद तय की गई। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसका नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर यह लकीर लोगों के घरों के बीचों बीच गुजर गई। किसी का खेत भारत में रह गया तो उसका घर पाकिस्तान में चला गया। सदियों से साथ रहने वाले पड़ोसी रातों रात दो अलग अलग मुल्कों के नागरिक बन गए। इस एक लकीर ने इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन और दर्द को जन्म दिया, जहां करोड़ों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर सरहद पार जाना पड़ा। श्रोताओं, ये सरहद आज भी मौजूद है, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी कितनी अनमोल है। सिरिल रेडक्लिफ इस त्रासदी से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी फीस के 40,000 रुपये भी नहीं लिए थे और हमेशा हमेशा के लिए भारत से चले गए। कागज पर खींची गई वो लकीर भले ही इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना हो, लेकिन आज का भारत उस दर्द से कहीं आगे निकल चुका है। आज जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो सरहदों को बिल्कुल नहीं बल्कि इस देश की तरक्की, इसकी ताकत और इसके 140 करोड़ लोगों के बुलंद इरादों को चमकता हुआ देखता है। श्रोताओं, इतिहास से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना है और अपनी एकता से इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। श्रोताओं, कागज पर खींची गई उस रेडक्लिफ लाइन ने जमीन तो बांट दी, लेकिन क्या वो इंसानी जज्बातों और हवाओं को बांट पाई? इसी बात को बयां करता है खूबसूरत सा गीत फिल्म रिफ्यूजी से।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, यानी तिथि विशेष की ओर, और जानते हैं कि आज की तिथि को देश और दुनिया में क्या कुछ विशेष घटनाएं घटी। तो श्रोताओं, आज की तिथि को सन 1836 में पहली बार ब्रिटिश की संसद में जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए थे। 17 अगस्त सन 1909 को महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी। सन 1924 में फ्रांस और जर्मनी के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज की तिथि को सन 1945 में सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया में नीदरलैंड से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। भारत की आज़ादी के बाद 17 अगस्त सन 1947 को पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी अपने देश के लिए रवाना हुई थी। आज की तिथि को सन 1982 में जर्मनी में पहली सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। सन 1988 में आज की तारीख को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक और अमेरिका के राजदूत अर्नोल्ड राफेल की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। सन 2000 में फिजी में भारतीय मूल के लोगों की बर्बादी रोकने के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी ने भारत से मदद मांगी थी। 17 अगस्त 2002 को रूस ने धर्मगुरु दलाई लामा को अपने देश में दौरे के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। आज की तिथि को सन 2005 में पूरा बांग्लादेश बम धमाकों से दहल गया था। उसके 63 जिलों में लगभग 400 विस्फोट हुए थे। आज की तिथि को सन 2008 में अमेरिका के महान तैराक एक ओलंपिक खेल के दौरान 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। सन 2009 में आज की तिथि को आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और अब संक्षिप्त जानकारी आज की तिथि को जन्मे और निधन हुए कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में। वी एस नायपॉल भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। उनका जन्म आज की तिथि को सन 1932 में हुआ था। उन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। श्रोताओं, अमृतलाल नागर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म आज की तिथि को सन 1916 में हुआ था। उन्होंने नाटक, रेडियो नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद और बाल साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य जगत में एक उपन्यासकार के रूप में उन्हें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। और आज जन्मदिन है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व यानी 20वें गवर्नर विमल जालान और आरबीआई के 21वें गवर्नर रहे वाई वी रेड्डी का। और आज जन्मदिन है हिंदी भाषा की जानी मानी कवित्री अनामिका का। तो आप सभी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात कर लेते हैं उन महान विभूतियों की जिन्होंने आज की तिथि को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रोताओं, 17 अगस्त सन 2020 को निधन हुआ था भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक पंडित जसराज का। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा के मशहूर

0: निर्देशक और अभिनेता निशिकांत कामत का निधन भी आज ही की तिथि को 2020 में हुआ था। उन्होंने दृश्यम, मुंबई मेरी जान और मंदारी जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन किया था। महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन भी आज ही की तिथि को सन 1949 में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था। श्रोताओं, बातें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं ये छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। श्रोताओं, जब हम हौसले और संकल्प की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन आज का दिन बेहद भावुक और खास है। आज है 17 अगस्त, यानी बिहार के माउंटेन मैन बाबा दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। आज के दिन साल 2007 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में, जहां एक अकेले इंसान ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मानती थी। साथियों, ये कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। गहलोर गांव और वजीरगंज शहर के बीच एक विशाल चट्टानी पहाड़ दीवार बनकर खड़ा था। इस पहाड़ के कारण गांव वालों को अस्पताल या फिर बाजार जाने के लिए 55 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। बात है साल 1959 की। दशरथ मांझी की पत्नी फागुनी देवी पहाड़ के उस पार काम कर रहे अपने पति के लिए खाना ले जा रही थी। अचानक उनका पैर फिसल गया और वो पहाड़ के गहरे दर्रे में जा गिरी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल समय से न पहुंच पाने के कारण उनकी मौत हो गई और इस हादसे ने दशरथ मांझी को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू सुखाए और अपने हाथ में उठा ली एक हथौड़ी और एक छेनी और लग गए उस विशाल पहाड़ को तोड़ने के लिए। जो भी उन्हें देखता उन पर हंसता, उन्हें पागल कहता और कहता कि अकेला आदमी भला इस विशाल पर्वत को कैसे तोड़ सकता है। लेकिन मांझी ने किसी की एक न सुनी। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, पूरे 22 सालों तक वे अकेले ही उस विशाल पर्वत का सीना चीरते रहे और अंत में उनकी जिद की जीत हुई। उन्होंने पहाड़ के बीचों बीच 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क बना डाली। जो दूरी 55 किलोमीटर की थी वो सिमटकर महज 15 किलोमीटर की रह गई। आज उनके पुण्यतिथि पर उस महान पर्वत पुरुष को शत शत नमन। वो हमें सिखा गए कि मुश्किलें, चाहे पहाड़ जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में सच्ची लगन हो तो उस पहाड़ का घमंड भी एक दिन टूट ही जाता है ना श्रोताओं। और इसी के साथ श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है भारत माँ के उस सच्चे सपूत की, जिसने अंग्रेजों के घर में घुसकर क्रांति का बिगुल फूंका था। जी हाँ, हम आज याद कर रहे हैं अमर शहीद मदन लाल ढींगरा को। आज के दिन यानी 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटनविले जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। श्रोताओं, मदन लाल ढींगरा किसी आम परिवार से नहीं थे। वे अमृतसर के बेहद अमीर और रसोहदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और लंदन में उनकी मुलाकात वीर सावरकर से हुई, जिसके बाद उनके भीतर देशभक्ति की एक ज्वाला भड़क उठी। जब भारत में अंग्रेजों के जुल्म हद से पार हो गए, तब मदनलाल ढींगरा ने लंदन की धरती पर इसका बदला लेने की ठानी और 1 जुलाई 1909 को

लंदन के जहांगीर हाउस में उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली को सरेआम गोलियों से भून दिया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अदालत में जजों की आंखों में आंखें डालकर और सीना तानकर कहा था, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए जान दे रहा हूं और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं तब तक भारत मां की गोद में जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा मुल्क मेरा देश पूरी तरह से आजाद ना हो जाए। श्रोताओं, फांसी के फंदे पर झूलते समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी परिवार उन्हें कोटि-कोटि नमन करता है। उनका यह सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। आइए उनकी इस अमर शहादत को सलाम करते हैं इस जोश भरे गीत के साथ।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब चलिए चलते हैं अपने अंतिम सेगमेंट की ओर और देखते हैं कि आज के अखबारों की क्या है सुर्खियां। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अखबार के फ्रंट पेज पर यह सुर्खी है, जेन जी के लिए सरकार नई नीति लाएगी। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री की ये घोषणा। हिंदुस्तान के हवाले से ही अगली खबर है, हादसे में डीआईजी और जवान का निधन। देहरादून पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में आईटीबीपी के श्रीनगर सेक्टर में तैनात डीआईजी और चालक का निधन हो गया है। बॉन्ड में निवेश से पहले जोखिम साफ दिखेगा, निवेशक समझ सकेंगे कि जिस बॉन्ड में वे निवेश कर रहे हैं उसमें कितना जोखिम है। हिंदुस्तान से अगली खबर है, 4 साल में रूस पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है, रूस का कहना है कि यूक्रेन ने 800 ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो वहीं मलेरिया से मच्छर का ही डंक रक्षा करेगा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि मलेरिया के मच्छर का डंक ही इस बीमारी से रक्षा करेगा। और अगली खबर भी हिंदुस्तान के हवाले से ही है और ये सुर्खी है, तीज पर गूंजे सावन के गीत, झूलों पर झूली महिलाएं। महिलाओं ने सोलह श्रृंगार कर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की, कई जगह हुआ उत्सव का आयोजन। अब यह खबर है अमर उजाला के हवाले से, गाजियाबाद, चीनी मांझे से युवक की गर्दन कटकर लटकी, हड्डी तक कटी। दोस्त संग बाइक पर नोएडा से गाजीपुर जा रहा था युवक, तभी हुआ हादसा जिसमें उस युवक की मौत हो गई है। अमर उजाला से ही है ये अगली सुर्खी, बिना ठोस आधार के बी क्लास हिस्ट्री शीट स्वतंत्रता पर हमला। कोर्ट ने कहा, हिस्ट्री शीट खोलने पर गंभीरता से विचार करें पुलिस अधिकारी। एक और खबर है, ये है दैनिक जागरण के हवाले से। दैनिक जागरण लिखता है, जनता माफ नहीं करेगी सोनिया का पाप, शर्म बची है तो माफ करे, माफी मांगे कांग्रेस, ये कहना है अमित शाह का। गृहमंत्री ने कहा, कांग्रेस को रास नहीं आया वंदे मातरम का सम्मान। दैनिक जागरण के हवाले से ही ये अगली खबर है, यात्री की लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, दो कर्मचारी घायल, जांच में पिस्टल खाली साबित करने के लिए सेना नेता ने ट्रिगर दबाया। और दैनिक जागरण के हवाले से ही है ये अगली खबर, वर्षा और बिजली गिरने से प्रभावित परिवारों को 24 घंटे में दें मुआवजा। सीएम योगी ने जनहानि का लिया संज्ञान, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। और एक और खबर है जो हिंदुस्तान के हवाले से है,

बिजनौर में 7,355 पौधे लगाने वाले होमगार्ड का किया गया सम्मान। 6 होमगार्ड्स को नशा मुक्ति मित्र सम्मान से किया गया सम्मानित। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय

0: की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से

0: विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 01123301481 या 23717117 या 23717106 और 23314444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद

0: feet, the Asian Age writes that three UAE-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for three subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA तीन मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तिहानात दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज कराने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा, गंगोत्री, मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में सितंबर के महीने में मर्दुमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले के तहत आबादी के इंदराज का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल आज से खुद इंदराज का अमल शुरू हो रहा है। ये मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लद्दाख मुल्क में मरकज के जेर इंतजाम ऐसा पहला इलाका बन जाएगा जहां 1 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान आबादी के इंदराज का अमल के साथ ही मर्दमशुमारी 2027 का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुद इंदराज के अमल आज से शुरू हो रहा है। लद्दाख में मुकम्मल कवरेज के लिए तकरीबन 637 इंदराज के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मर्दमशुमारी के ऑपरेशन से मुतालिक अफसर अमित शर्मा ने बताया कि इस खित्ते में मौसम सरमा की सख्त सूरत हाल, मुश्किल रास्तों और लद्दाख तक महदूद रसाई की पेश नज़र सितम्बर के शेड्यूल का मनसूबा बनाया गया था। मर्दमशुमारी 2027 डिजिटल तरीके से की जा रही है। मकानात की फहरिस्त साजी का अमल 1 जून से 30 जून तक मुकम्मल कर लिया गया था। लेह लद्दाख से यंगशन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
2: जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल तरीके से खुद इंदराज का अमल आज से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। ये आने वाली मर्दमशुमारी के आबादी का इंदराज के अमल का हिस्सा है। हमारे जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि आज से मखसूस इलाकों में रिहायशियों को डिजिटल इंदराज के अमल के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज कराने की सहूलत फराहम की जाएगी। ये सहूलत जम्मू कश्मीर के 1115 गांव और 3 म्यूनसिपल्टियों उरी, गुलमर्ग और किश्तवाड़ के लोगों के लिए दस्तियाब होगी। मर्दमशुमारी के चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर अमित शर्मा ने कहा है कि हुक्काम इस मुहिम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने आबादी के इंदराज के अमल को मर्दमशुमारी का सबसे अहम मरहला करार दिया है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने UGC नेट इम्तिहान के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के तीन पेपर का दोबारा टेस्ट कराने का ऐलान किया है। इन तीनों पेपरों का इम्तिहान इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इन पेपरों में बहुत सी गलतियों के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी। NTA ने कहा है कि इंग्लिश का पेपर एक शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 9 सितम्बर को कराया जाएगा, जबकि उसी रोज कॉमर्स का पेपर 2 शिफ्ट में

0: सहपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा और सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एहलियत और पीएचडी प्रोग्राम्स के दाखिले के लिए 87 मजामीन में 22 से 30 जून तक यूजीसी नेट 2026 के इम्तिहानात मुनाकिद कराए थे। एनटीए ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि इन गलतियों की इंक्वायरी की जा सके। कमेटी ने सिफारिश की है कि एक मुनसिफाना और गलतियों से मुबर्रा इम्तिहान के मफाद में इन तीनों पेपरों का इम्तिहान दोबारा कराया जाना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों का एहतजाज आज 24वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा भर्ती के इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर अपना एहतजाज तेज कर रहे हैं। हुकूमत और तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का ताजा दौर आज शुरू हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी तलबा ने कल रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक एहतजाज मार्च निकाला और वजीर आला हेमंत सोरेन, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के पुतले नजर आतिश किए। तलबा ने रियासती सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और भर्ती के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों, जेपीएससी और जेएसएससी के इम्तहानात को मनसूख किए जाने की अपनी मांग को दोहराया और भर्ती के इम्तहानात में बेजाब्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। इसी दौरान रियासती सरकार ने मुजाकरात के जरिए इस मसले को हल करने की अपनी एक और कोशिश का आगाज किया है और इस सिलसिले में आज दोपहर 2 बजे मुजाहरा करने वाले तलबा को बातचीत के लिए मधु किया है। तलबा को अपने कानूनी मुशीरों के साथ बातचीत में शामिल करने की भी इजाजत दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि अगर सरकार तलबा की मांगें पूरी करती है तो एजिटेशन खत्म करने की जानिब इकदाम किए जा सकते हैं, वरना एहतजाज जारी रहेगा। तलबा ने 20 अगस्त को वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने का पहले ही ऐलान कर दिया है, लेकिन कतई फैसला देवेंद्रनाथ महतो की सेहत और आज की बातचीत के नतीजे पर मुनसिर होगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि उसकी विशाखापट्टनम की तमाम परवाजें आज से भोगापुरम में वाकई अलूरी सीताराम राजू बैन अल-अक्वामी हवाई अड्डे से चलाई जाएंगी। एक प्रेस रिलीज में एयर इंडिया ने बताया कि वो भोगापुरम और दिल्ली के दरमियान हफ्तेवार 14 परवाजें जारी रखेगी। 77,342 मुरब्बा मीटर पर मुहित ये नया टर्मिनल मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करता है। हुकूमत ने कहा है कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक 18.66 लाख करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ मुख्तलिफ वजारतों के बुनियादी ढांचे के 396 प्रोजेक्टों को मंजूर करने के लिए सिफारिश की गई है। इसके लिए कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इन प्रोजेक्टों में 256 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 198 प्रोजेक्ट जेर नफाज हैं। उसने मजीद कहा है कि इन प्रोजेक्टों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG मैकेनिज्म के जरिए कदर कीमत का अंदाजा लगाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मगरबी बंगाल के गंगोत्री और उड़ीसा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी इस तरह के हालात रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश का इम्कान है। उसने ये भी कहा है कि अगले 2 दिन से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजीरे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है, जबकि इसी तरह के हालात मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में भी रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में शदीद बारिश का इम्कान है क्योंकि आज खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव और शदीद हो सकता है, जिससे शिमाली जिलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। महकमे मौसमियात IMD ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और शिमाली उड़ीसा में कई मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दरियाओं में तुगयानी और लाखों लोगों के मुतासिर होने के पेश नजर रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी आज सैलाब से मुतासिरा भद्रक और जाजपुर जिलों का फजाई जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सैलाब से मुतासिरा इलाकों में सूरत हाल खराब है। कई शुमाली जिलों के

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: पूंछ जिले में मंडी तहसील के राजपुरा गांव में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए 12 दिन तक चलने वाली सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान शुरू होगी। ये यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी और रक्षाबंधन को इख्तिताम पजीर होगी। हुकाम ने पूंछ राजौरी और राहदारी रास्तों पर सख्त कसीर सतही सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी है। ये यात्रा पूंछ जिले के मंडी तहसील में राजपुरा गांव में वाक़ भगवान शिव के कदीम बुद्ध अमरनाथ मंदिर में श्रावण के मानसून पवित्र महीने के दौरान हर साल मुनक़िद होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के आज सुबह पूंछ के सरहदी जिले की जानिब जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। राजौरी और पूंछ के सरहदी जिलों के राहदारी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते दशनमी अखाड़ा जैसे ठहरने के मकाम के नजदीक तलाशी और तस्दीक की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। अकीदतमंदों के दस्ते पुलिस मुहाफिजों की निगरानी में पेश कदमी करेंगे। जिला इंतजामी और मकामी इदारों ने वाटर प्रूफ खेमों और कम्युनिटी किचन, पार्किंग और हिफ्जान सेहत मकाम समेत सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की साबिक चैंपियन और नवे दर्जे की खिलाड़ी पीवी सिंधु आयरलैंड के सूफिया नोबेल का सामना करेंगी, जबकि खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले राउंड में स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स का मुकाबला करेंगी। शाम में भारत के आयुष शेट्टी मर्दों के सिंगल्स के जुमरे में चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन ओशिक यूकी के खिलाफ खेलेंगे। मर्दों के डबल्स के जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पहले ही एक बाय हासिल करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के खिलाफ गाले बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। भारत ने कल के खेल के अख्तितम पर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अभी क्रीज पर ही हैं। इससे कबल देवदत्त पुडिकल ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए 167 रन का स्कोर किया, जबकि KL राहुल ने 82 और ध्रुव जुवेल ने 51 रन का शानदार स्कोर किया। मर्दों की हॉकी में आज नीदरलैंड्स में वाग्नेर हॉकी स्टेडियम में भारत की टीम सेकेंड पूल के डी के अपने मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। इसका मकसद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे गुमराह कुन लेबलिंग और सारिफीन के हुकूक से मुतालिक बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। ये नंबर्स हैं 011-233-10481, 011-2371-7117, 011-2371-7106। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 अता करेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि अवार्ड्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब में पेंशन मित्रा से मुतालिक किताबचा और मुल्क की सतह पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC मुहिम 5 के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को खसूसियत के साथ नुमाया किया है कि नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और मसनूई जहानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों

0: शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए यूजीसी नेट इम्तिहानात दोबारा मुनक्किद कराएगी। झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात ने ओडिशा, गंगोत्री, मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। और श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक ऐसे गाने से करने जा रहे हैं जो मस्ती, उल्लास और त्यौहार का दूसरा नाम बन चुका है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ, बेफिक्र सा मिजाज, सावन का महीना और भांग के रंग में डूबे हिंदी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स राजेश खन्ना और मुमताज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1974 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आपकी कसम के इस सदाबहार गाने की। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की शरारत भरी आवाज़ें और आनंद बख्शी जी के लिखे वो कमाल के बोल।

आपकी कसम, इस फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत और धुन आर डी बर्मन की थी। श्रोताओं, अगले गीत से पहले ये संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। श्रोताओं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही सीधे रूह में उतर जाते हैं। साल 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बदलते रिश्ते, और इस फिल्म में जितेंद्र, ऋषि कपूर और रीना रॉय की बेमिसाल अदाकारी थी। लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा था जिसने प्यार करने वालों को एक नया मुहावरा दे दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का शानदार संगीत, अनजान साहब के लिखे बेहद खूबसूरत बोल और महेंद्र कपूर साहब के साथ अलका याग्निक, लता मंगेशकर की आवाज़, जी हाँ, इसमें अनजान साहब के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और ये गाना जब बजता है तो लगता है जैसे हवाओं में मोहब्बत की महक बिखर गई हो। एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका से वो खूबसूरत इकरार। तो आइए गोल्डन हिट्स के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये दूसरा शानदार गीत।

भाई वाह, हवाओं में रोमांस की महक तो बिखरी चुकी है, लेकिन अब वक्त है पैरों को थोड़ा थिरकाने का और घुंघरुओं की उस झंकार को महसूस करने का जो सीधे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। श्रोताओं, 80 के दशक का आखिरी दौर और बड़े पर्दे पर थिरकते हुए सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर और अपनी कातिल आँखों और ज़बरदस्त क्लासिकल डांस के लिए मशहूर दामिनी यानी मीनाक्षी शेषाद्री, साल 1989 की सुपरहिट पारिवारिक फिल्म बड़े घर की बेटी का ये गाना आज भी जब कहीं बजता है तो हर कोई झूम उठता है। एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जादुई जोड़ी का संगीत और मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की वो बेमिसाल जुगलबंदी, जहाँ एक तरफ पायल छनकती है और दूसरी तरफ ढपली बजती है। तो चलिए इस गोल्डन हिट्स के कारवां में जोड़ते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में भी आपने सुना मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल को, संतोष आनंद के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत। और अब वक्त है एक कॉमर्शियल ब्रेक का।

0: चंदन का एहसास।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, पायल की छनछन के बाद अब कानों में गूंज रही है नदी की वो पवित्र कलकल जो सीधे हमें हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में ले जाती है जहां सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार थी। अब हम रुख कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट जमाने के उस ऐतिहासिक दौर का जब शोमैन राज कपूर साहब अपनी फिल्मों में देश की मिट्टी की खुशबू पिरोया करते थे। साल 1960 की एक कालजयी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म के एक बेहद खूबसूरत दृश्य में जहां बैकग्राउंड में पवित्र गंगा पवित्र नदी बह रही है, अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी पानी की लहरों के बीच थिरकती है और अपने प्यार का एक अनोखा इकरार करती है। शंकर जयकिशन का वो जादुई संगीत, हसरत जयपुरी साहब के लिखे बोल और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की खनकती हुई सुरीली आवाज़, एक ऐसा गाना जिसे सुनकर आज भी दिल मचल उठता है।

वाह भाई वाह, जिस देश में गंगा बहती है, उस पवित्र और मासूम प्यार के बाद अब हमारे दिल की धड़कनें हो चुकी हैं थोड़ी तेज़। और हो भी क्यों ना, आखिर अब हम आ पहुँचे हैं आज के इस रूहानी सफ़र के आखिरी और सबसे धमाकेदार पड़ाव पर। श्रोताओं, साल 1989 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोशीले। फिल्म में सनी देओल, अनिल कपूर, श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री की जबरदस्त स्टार कास्ट थी। लेकिन जब इस फिल्म में आरडी बर्मन यानी हमारे चहेते पंचम दा ने अपना संगीत फूंका तो पूरा देश झूम उठा था। आज के हमारे इस फिनाले सॉन्ग में एक तरफ है बॉलीवुड के ही मैन यानी सनी देओल और दूसरी तरफ है हमारी चुलबुली हवा हवाई श्रीदेवी। और जब पर्दे पर ये जोड़ी हो तो बैकग्राउंड में आवाज़ भी उतनी ही कड़क होनी चाहिए। जी हाँ, एक बार फिर किशोर कुमार और लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए इस धमाकेदार गीत को।

आशा भोसले और उषा मंगेशकर के गाए फिल्म जोशीले के इस गीत के साथ ही आज का एक कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। इस समय प्रातः के 9:15 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
1: संत कबीर नगर जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान विधायक खलीलाबाद अंकुरा तिवारी, विधायक मेहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी और जिलाधिकारी आलोक कुमार समेत अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं व गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रगान के साथ अमर शहीदों को नमन किया। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को संविधान, देश की एकता, अखंडता और जन सुरक्षा के प्रति पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प दिलाया। पुलिस लाइन व कैंप कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी उन्होंने संदेश दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सेवा पदक, प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निर्धारित मामलों का फीडबैक भी लिया। संत कबीर नगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला जज ने अपनी माता के नाम पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माँ सृजन का प्रतीक है और वृक्ष भी जीवन व सृजन का आधार है। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 40 पूर्व सैनिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। डीएम ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर चक्र विजेता सत्यवान सिंह के नाम से नवनिर्मित सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। संत कबीर नगर में भूजल सप्ताह के तहत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से भूजल संरक्षण जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भूजल संरक्षण आज प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वर्षा जल संचयन को अपनाने, तालाबों और जलाशयों को स्वच्छ रखने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। संत कबीर नगर में पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बीते दिनों कारागार स्थित महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अध्यक्षा ने महिलाओं की सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। संत कबीर नगर में संभावित बाढ़ एवं तटबंधों के कटान से बचाव को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। एडीएम ने सभी तटबंधों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत चौपाल, शिविरों की व्यवस्था, बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, नौकाओं का सत्यापन, विद्युत व्यवस्था मजबूत करने और आपातकालीन रास्तों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर पहुंची प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग विजयलक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। प्रभारी मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बीते दिनों संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, पाकशाला, अस्पताल और महिला बैरक का जायजा लेते हुए साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा बंदियों की समस्याओं की जानकारी ली। संत कबीर नगर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कोपिया शिव मंदिर स्थित झारखंडी शिव मंदिर और बाबा कुबेरनाथ शिव मंदिर बखिरा का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, यातायात, सड़क सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को कांवड़ मार्गों पर सतर्क निगरानी और नियमित भ्रमण के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले में पुलिस

0: शासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
1: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास का महीना है, जिसमें श्रद्धालुगण कांवड़ लेकर नदियों से घाटों से जल भरकर मंदिरों में भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संत कबीर नगर पुलिस ने प्रशासन तंत्र को मैन 3 जोन बनाए हैं, जो तीनों धनघटा, महदावल और खलीलाबाद से। साथ ही इसमें 8 हमने सेक्टर बनाए जो हमारे थानों के स्तर पर रहेंगे। इसके अलावा हमने 31 QRT की स्थापना की, प्रत्येक थाने पर 2-2 QRT अलग से रहेगी। साथ में CCTV कैमरे से पूर्ण 30 की कांवड़ निगरानी होगी घाटों पे, मंदिरों के अंदर और रूट पे।
2: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ में सावन के पावन मास में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। हापुड़ में भक्ति और आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला। जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर के जरिए शिव मंदिरों और ब्रज घाट पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इसके अलावा जनपद की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। जनपद में छपकोली स्थित प्राचीन शिव मंदिर और ब्रज घाट गंगा घाट पर कांवड़ियों एवं शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसको देखकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव का जय घोष किया गया। कांवड़ यात्रा को प्रशासन द्वारा शिव भक्तों की आस्था और विश्वास को कायम रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन किया गया।
4: जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई। उसमें प्रथम स्थल हमने छपकोली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रज घाट लिया। हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा भक्तिमय माहौल था।
3: सावन मास शिव भक्ति के लिए खास माना जाता है। वहीं कांवड़िया हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। वहीं जनपद हापुड़ के ब्रजघाट से भी जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंचे और जल लेकर अपने गंतव्य के लिए पहुंचे। हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट सहित हापुड़ शिवमय दिखाई दिया। वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा रहा। जनपद की सीमाओं को सील करते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा जनपद में CCTV कैमरे लगवाकर कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। गंगा तट पर नाविकों और गोताखोर लगाए गए। सड़कों के एक साइड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया, जबकि दूसरी साइड से हल्के वाहनों को निकलवाया गया। भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया, ताकि किसी को कोई समस्या न हो सके।
5: कावर में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बढ़िया। एक रोड चल रहा है, एक रोड कांवड़ियों के लिए खाली है। वहीं से ये हमारी कांवड़ हरिद्वार से लेकर पलवल तक जाएगी।
3: जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अस्पताल ले जाते समय पुलिस की पिस्तल छीनकर भाग रहे 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। हापुड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने सिंचाई विभाग में आयोजित बैठक में कहा कि नीट परीक्षा लीक होने के बाद CJP के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ है। जो छात्रों की मांगे थी उनको पूरा किया गया है। पेपर के आरोपी जेल में है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दों पर कहा कि राम मंदिर के लिए देश और विदेश से चंदा दिया जाता है और इस तरह की घटना निंदनीय है। प्रदेश सरकार ने इस पर SIT गठित की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। पूर्व सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने के भी निर्देश दिए। जनपद हापुड़ में खाद्य विभाग ने टोडलपुर सिंभावली की तरफ से आ रही पनीर लेकर एक गाड़ी को पकड़कर पनीर के 2 नमूने संग्रहित किए गए। पनीर ड्रमों में भरा हुआ था, जो कि असुरक्षित तरीके से भंडारित था, जिसकी मात्रा लगभग 200 किलोग्राम थी, जिसको JCB से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कर दिया गया। पनीर की कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बाबूगढ़ छावनी में सिलाई प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई किट एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किए गए। जनपद हापुड़ की मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता भी की, साथ ही उन्हें समूह से जोड़कर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जनपद हापुड़ में जनपद के प्रभारी मंत्री KP मलिक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अटल पार्क में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों, युवाओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभारी मंत्री KP मलिक ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि है। बीते 14 अगस्त को आजादी के विभाजन की विभीषिका पर देश के विभाजन के समय हुए नरसंहार

0: आर में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम
1: बासमती

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत इस वक्त आप सुन रहे हैं रजनी टॉक के गाए रोहिलखंडी लोकगीत। और श्रोताओं, यह है कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव

0: 14.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 10 बज चुके हैं और इस समय है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे का। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और इस कार्यक्रम में अब मेरे सहयोगी के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, आ गए हैं हमारे भैया।
1: जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह।
0: तो सभी श्रोताओं को हम दोनों की ओर से प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। तो चरणजीत जी, हमारे जो भी श्रोता साथी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना, तो उन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर।
1: जी हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 यानी 9457078288।
0: तो लिख भेजिए अपना व्हाट्सएप मैसेज हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, और उसी के साथ साथ अपना नाम, पता और अपनी फरमाइश भी लिख करके हमारे इस नंबर पर आप हमें भेज दीजिएगा। हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के नगमे। तो चरणजीत जी, पहला जो गीत हमने कार्यक्रम का लिया है वो लिया है हमने फिल्म कर्तव्य से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, वर्मा मलिक के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने इस गीत की फरमाइश करके हमें भेजी है। तो सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास आया है, कहाँ से आया चरणजीत जी?
1: जी हाँ, ये मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से और लिखने वाले हैं कमला रानी, बोधराज खोलवाल, गीतिका खोलवाल, भानु प्रकाश और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये एक और मैसेज है गांव दूल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, लिखने वाले रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और छाबड़ा परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचा है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लिखने वाले मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये मैसेज मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और भेजा गया है गांव दूल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: और इसी के साथ साथ मेरे हाथ में चरणजीत जी कुछ पत्र भी हैं जो पत्रों के माध्यम से हमारे पास फरमाइश आई है। ये आई है ग्राम बगबड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम की ओर से। मॉडल टाउन करनाल से हमें पत्र लिखा है सुधीर नूतन, जग्गी दुआ, संदीप गुगलानी और किरण ठाकुर ने। इसी क्रम में ये अगला पत्र हमें मिला है पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। यह पत्र आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से फरमाइश कर रहे हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। और शेरपुर कलां गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। और इसी गीत के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। इन्होंने हमें पत्र लिखा है जसपुर उत्तराखंड से।
1: और राजवीर, ये जो पत्र आपने पढ़े हैं तो जो पत्र हमें अब तक प्राप्त हुए वो तो हमने शामिल कर लिए, लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप भी अपने पत्रों के माध्यम से फरमाइश भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है पत्र भेजने के लिए कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद,
0: पिन कोड है 246763। तो आप अपना पत्र हमें इस पते पर हमारे पास भेज सकते हैं और अगले कार्यक्रम में आपका पत्र शामिल हो सकता है। तो ये अगला मैसेज जो और मैसेज आए हैं कहाँ से?
1: जी हाँ, एक और ये मैसेज हम तक पहुंचा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जनपद बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर का ये मैसेज। और अगला मैसेज राजवीर?
0: हाँ, ये मैसेज हमारे पास आया है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और जालना शहर से फरमाइश कर रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है आप सभी की पसंद पर फिल्म कर्तव्य का ये गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना वर्मा मलिक की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कर्तव्य में लता मंगेशकर को वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और चरणजीत जी, अब जो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाने वाले हैं, वो गीत हमने कौन सी फिल्म से लिया है, और ज़रा इस गीत के बारे में हमारे श्रोताओं को
1: जी
0: बताओ।
1: हाँ, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगला गीत हम लेने वाले हैं फिल्म यादगार से। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर ने। इंदिवर का गीत है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। और राजवीर, देखिएगा, जैसे ही हम अपने गीत से अब कार्यक्रम के में आगे बढ़े हैं, तो और फिर से एक बार हरे से सितारे ये टिमटिमाने लगे, और
0: जी
1: व्हाट्सएप की जो
0: हाँ,
1: भेजने गति है वो बहुत तेज़ हो गई है।
0: बहुत सारे मैसेज हमारे स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन मैसेज पढ़ने से पहले मैं मेरे हाथ में कुछ खत हैं, मैं उनको पढ़ना
1: बिल्कुल
0: चाहूँगा। और ये मैसेज ये पत्र हमारे पास आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक और मीका बिरक का। और ये फरमाइश हमें मिली है गाँव गाधा रोना हरिद्वार उत्तराखंड से, मदनगिरी, विमलागिरी, बलराम, भारत, सोनिया, मधु, रमन और दिव्यागिरी की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्र हमें मिला है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। महादेव घाट अम्बलेश्वर से पत्र हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से ये पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अनोखेलाल मौर्य, सुंदरदेव मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। और ये जो मैसेज अब पढ़ने के लिए
1: जी हाँ, ये मैसेज हम तक पहुंचा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इसके साथ ही हमारे पास मैसेज पहुंचा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे। ये मैसेज हम तक पहुंचा है गांव जुझेला थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर से। भेजने वाले राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, सायना महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से, हाँ राजस्थान से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। इसी क्रम में एक और मैसेज हमें मिला है, ये मैसेज हमारे पास आया जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से। रूपेश संघई, महेश संघई और प्रज्ञेश संघई के साथ में है प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। मैसेज आया है हमारे पास, ये मैसेज हमें मिला है आर्य नगर कोहका भिलाई से, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल की ओर से। साथ में है धमदा ग्राम सुखरी कलां से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमें मैसेज भेज रहे हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। इसके साथ ही ये मैसेज हम तक पहुंचा है आकोट से। भेजने वाले विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और

0: चिरंजीव डाबेरा।
1: इसी के साथ चरणजीत जी, मेरे पास ये कुछ पत्र भी हैं। ये पत्र हमारे पास आया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप की ओर से। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। गौतम नगर जिला नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। और इसी गीत की फरमाइश की है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ, बिट्टल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने। तो पेश आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म यादगार का ये गीत।

0: जी कल और कल्याण जी ने। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म जीवन मृत्यु से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा है गीत है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं। ये सबसे पहले हम कुछ पत्रों को शामिल कर लेते हैं चरणजीत जी। ये पत्र हमारे पास आया है श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा की ओर से। ये फरमाइश हमें मिली है दिव्यांशु यादव, केशव यादव, हर्षवर्धन यादव की ओर से। और इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है चांदपुर बिजनौर से। और इसी गीत के ख्वाहिशमंद हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। ये पत्र हमारे पास आया है बड़ा बोम्बो गांव सुपाई साई से, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा प्रकाश और देवेंद्र जी की ओर से। फरमाइश कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी गव्या और भाई सुच्चा सिंह पाठक। मलोट कैंप पंजाब से पत्र हमें मिला है सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी की ओर से। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। और इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है गांव और पोस्ट राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान ने।
1: और ये फरमाइश हम तक पहुंची है बुंदगी रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर से अंश टोंक, देव टोंक, साकेत चौक और राजेंद्र की ओर से। ये मैसेज हम तक पहुंचा है रेलगाड़ी श्रोता टोली नजीबाबाद एवं कोटद्वार उत्तराखंड से, महबूब सैफी, मोहम्मद यूसुफ, विनय कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फरमान। ये मैसेज हम तक पहुंचा है पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर जनपद बिजनौर से एम ताहिर और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना का सनावद से हम तक पहुंचा है। सनावद से ही ये मैसेज शेख मूसा मोहसिन, राजकुमार और परिवार के अन्य सदस्यों का। हमारे पास रिपीट मैसेज जो पहुंच रहे हैं राजवीर, हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि आप एक बार मैसेज भेजने के बाद प्रतीक्षा करें, हम हर चंद कोशिश करेंगे कि आपके मैसेजेस को।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैसेजों का सिलसिला थोड़ा यहीं पर रोक लेते हैं। मेरे हाथ में कुछ खत, मैं इनको पढ़ लेता हूँ चरणजीत जी।
1: जी,
0: और ये अगला जो खत हमें मिला है, ये खत हमारे पास आया है ग्राम नंगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और देवा की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवी से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से हैं दुर्गा राम साहू। मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद से फरमाइश की है गीता रानी वर्मा, अनिता वर्मा, मेघा वर्मा, नैना वर्मा, अमित वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और सुरेंद्र वर्मा ने। ये अगला पत्र हमारे पास आया है ग्राम नजीमपुर तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, योगेश कुमार और कुमारी उमेश की ओर से। फरमाइश कर रहे हैं परिमहल काजगंज से आबाद खान, असलम सैफी, शमशुल कमर, इरफान कुरैशी, कलीम अंसारी और खिल्लू मास्टर। मीरा सराय बदायूं से हैं जमीर खान और आफरीन खान। एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर से फरमाइश की है संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे ने। और सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। ये फरमाइश हमारे पास आई है फुलांग निज़ामाबाद तेलंगाना से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद एच डी जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद फुरकान। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत।

0: जीवन मृत्यु। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के इस गीत के लिए संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। हम एक बार फिर से अपने श्रोताओं को यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं। जो भी श्रोता अभी नए कार्यक्रम से जुड़े हैं और चाहते हैं अपनी पसंद का गीत सुनना इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें अपनी फरमाइश लिख करके भेज दीजिएगा। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म सिंदूर से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की, आनंद बख्शी का गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं।
1: जी हाँ, ये मैसेज है नई बस्ती

0: खालसा जिला अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर, नूतन, रामानंद कश्यप। ये मैसेज कारावल नगर दिल्ली से लिखने वाले हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और परिवार के अन्य सदस्य। एक मैसेज हम तक पहुंचा है व्हाइटफील्ड बंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और परिवार के अन्य सदस्य। दुबिहा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। अगला मैसेज दिव्यांशु यादव, हर्षवर्धन यादव, आशुतोष यादव, वसुंधरा यादव ने ये मैसेज भेजा है गांव खेड़की, जनपद बिजनौर से। ये मैसेज हम तक पहुंचा है आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबेराम ने। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से मैसेज भेजने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा और परिवार के अन्य सदस्य।
1: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी और सन्नो साबरी ने। ये मैसेज आया है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार की ओर से। ये फरमाइश मिली है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार की दिल्ली शहर मोरी गेट से। अगला मैसेज है नारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव का। फरमाइश कर रहे हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदी और अंजलि। ये मैसेज है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की ओर से। सुनना चाह रहे हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आपने हमें मैसेज किया है पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में फिल्म सिंदूर का ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में।
2: जी हाँ, और यह गीत तुम्हारे कार्यक्रम आपका है, आप ही के लिए है, क्योंकि सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों के माध्यम से।
1: दो बूंद पानी ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाजें हैं परवीन सुल्ताना, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की, कैफी आजमी और बाल कवि बैरागी का लिखा है गीत है और धुन है जयदेव की। और इस गीत को सुनना चाहा है
2: जी।
1: इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं डिस्ट्रिक्ट पश्चिम।

0: सिंह भूम चोबासा झारखंड से। शिवा गो प्रेम गो पर मुझे लगता है कि ये मैसेज हम एक बार पढ़ चुके हैं
1: जी
0: चरणजीत
1: हाँ
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: है ना। कोल सिटी बरका खाना से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। फरमाइश
1: ये
0: कर रहे हैं
1: मैसेज
0: रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से।
1: लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है, मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से, गुलाम हसन, निशाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली, अब्दुल रहमान और मदीहा। इसके साथ ही अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
0: गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। ग्राम धनसनी नजीबाबाद जनपद बिजनौर से हैं मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र कुमार प्रजापति, मुकेश, राजू, राजकुमार और राधेश्याम प्रजापति।
1: जेवरा
0: फरमाइश
1: हिसार से हमें फरमाइश कर रहे हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण और इनके भ्याण परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचा है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी, नई बस्ती गंज डुंडवारा से। ये मैसेज हम तक पहुँचा है हितेंद्र दास का और लिखा है इन्होंने हमें ये मैसेज आसाम से। बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है।

0: और जिया ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। गनगोला दातागंज जिला बदायूं से ये मैसेज इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान, अरहान खान ने हमें मैसेज लिख भेजा है।
1: और अगला मैसेज हमारे पास आया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की ओर से। फरमाइश कर रहे हैं डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। और इसी के साथ जुड़े हैं सारिमपुर बक्सर से राज एच डी अंसारी, आजमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। फरमाइश की है ज़िला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया ने। और ये अगला मैसेज हमें मिला है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। ये मैसेज हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और चौटाला हरियाणा से फरमाइश कर रहे हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर दो बूंद पानी फिल्म से ये गीत।

0: आजमी और बाल कवि बैरागी का लिखा ये गीत था और संगीत जयदेव का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नागिन से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, राजेंद्र कृष्ण का गीत है और संगीत हेमंत कुमार का। इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है, ये फरमाइश हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की ओर से। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और निधि निखिल वर्मा। ये मैसेज हमें किया है, इन्होंने नाम कहाँ लिखा है अपना, सिर्फ फरमाइश लिखी है। ये मैसेज हमारे पास आया गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता की ओर से। अगला मैसेज हमें मिला है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का। ये मैसेज हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, सबरीन परवीन और माहिरा नूर की ओर से। फरमाइश कर रहे हैं, इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की ओर से। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से फरमाइश की है मन भवन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी बाई बागरी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वन्ना कुमार और बिट्टू कुमार ने। और ये अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया चरणजीत जी?
1: ये मैसेज है निज़ामुद्दीन, रऊफ़ अहमद, अरसलान, हन्नान, महक, और महक के साथ ये मैसेज है शेरकोट जनपद बिजनौर से।
0: जी
1: अगला मैसेज प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू का, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से
1: ये मैसेज मोहल्ला अफगान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और परिवार के अन्य सदस्यों का।
0: जी हाँ। और ये मेडिकल MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से हैं डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर ऋषिता साहनी और डॉक्टर प्रियंका मोदी, इनके साथ में हैं बरका काना से नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तिकार इब्राहिम।
1: ये मैसेज हम तक पहुंचा है मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर मोहन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज, सरिता गौतम, शबनम अनवार, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से।
0: जी
1: अगला मैसेज हम तक पहुंचा है तहसील रोड गंज डुंडवारा से KH राही,
0: गुड़िया
1: गुड़िया
0: बेगम,
1: बेगम, वकील
0: वकील प्रेमी
1: प्रेमी
0: और
1: हमार
0: हमाद जमीर की
1: जमीर।
0: ओर से। तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म नागिन का ये गीत।

लता मंगेशकर को भी आप सुन रहे थे फिल्म नागिन में। राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के लिए धुन तैयार की हेमंत कुमार ने। और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य, आशा भोसले, शरद कुमार और साथियों की। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत आर डी बर्मन का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। ये मैसेज हमारे पास आया है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यवानंद की ओर से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। ये फरमाइश हमें मिली है ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े और उत्तम जमदाड़े की ओर से। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर और सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। ये फरमाइश हमारे पास आई है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की ओर से, पश्चिम सिंह भूप, चाईबासा, झारखंड से। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। ये अगला मैसेज हमें मिला है डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री की ओर से। फरमाइश कर रहे हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और ये फरमाइश हमारे पास आई है पंकर कड़वा जिला यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे और अनुश्री धनश्री बुरांडे की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल और पूरे ही जिंदल खुशदिल परिवार ने। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से साहिबा खातून, नूरजहां खातून, साजिया खातून, नाजिश जहां, फूल जहां और के फुलवरा की ओर से। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर द ग्रेट गैम्बलर का ये गीत।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। अब इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति। आगे के कार्यक्रम लेकर अब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे चरणजीत सिंह।

हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये पहला गीत उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम दीदार। गीत लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: इस प्यारे से गीत के साथ श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोस्तों, दीदार की बात हमने इस कार्यक्रम में आपके साथ की और दीदार के लिए तो बहुत ही कुछ कहा जाता है। देखिएगा, दीदार यूँ तो हमें सीधी सी बात समझ में आती है कि सामने वाले को देख लेना, उसका सामने आ जाना, उसके होने का एहसास होना। लेकिन फिर भी दीदार के लिए अगर शायराना अंदाज में कुछ बात करें तो वो ये हो सकती है कि एक उसके दीदार को आंखें तरसती रहती हैं, एक उसके दीदार को आंखें तरसती रहती हैं, बस हर वक्त उनको देखने की बात ये कहती है।

कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे हमको तुमसे प्यार है फिल्म के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा देव कोहली ने, संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने। दोस्तों, जीवन एक ऐसा कर्म क्षेत्र है जहां कुछ लोग अकेले ही सब कुछ करना पसंद करते हैं, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय किसी ना किसी का साथ भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी को मिलकर जिया जाए। और देखिएगा, वास्तव में ज़िंदगी को मिलकर जीने में जो मज़ा है, जो खूबसूरती है, वो और कहाँ। तो ज़िंदगी को एक खेल की तरह तो समझे, लेकिन अगर किसी के साथ मिलकर खेलें तो बड़ा लुत्फ आता है।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और कुमार सानू को फिल्म बेखुदी के प्यारे से गीत में, जिसे लिखा सुरेंद्र साथी ने, संगीत दिया नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम में अब एक ब्रेक।
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
2: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं।
1: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
3: यूपी 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल यूपी 112 नंबर 1 सेवा अनेक।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीतों के साथ प्यारी प्यारी बातों का भी आप लुत्फ उठा रहे हैं। और देखिएगा कि जब जीवन में हम अकेला महसूस करते हैं तो किसी का साथ हमारी हर तरह की कमी को पूरा कर देता है। और जब जीवन में कमियाँ कम होती दिखाई देती हैं, किसी का साथ हमें दिखाई देता है, तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं और जो हमने सोचा होता है उसे हम पाने की हर चंद कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं किसी का साथ मिलने के बाद हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं।

अभी आपने सुना अलका याग्निक और हरिहरन को फिल्म तुम आए के इस गीत में। गीत रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत राजू सिंह का था। श्रोताओं, कार्यक्रम का अब अंतिम गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम नगीना।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर या अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय संजय।

0: मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
1: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
0: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
1: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
1: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
0: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।

0: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
2: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
0: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर

0: साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
1: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
2: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
3: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
0: सुमेश, सुमेश बेटा, उठो, स्कूल का समय हो गया है।
2: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
0: क्या कहा, बुखार है? अरे, तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे, तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
2: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
0: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
2: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
0: लो, ये रहा थर्मामीटर। चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
2: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
0: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
2: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
0: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
2: जी दादी।
4: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
5: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
2: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
5: अरे अरे अरे, अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
0: जी।
5: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
0: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
2: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
0: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
5: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
2: जी दादाजी।
4: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।

0: ये नाटक अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
2: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
3: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
4: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
3: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा। <ता-दा-टन>।
1: जी।
0: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
2: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग यह तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
7: यस सर।
6: साहब इसको हंटर मारो।
7: साहब।
6: जी सर।
7: साहब।
5: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
8: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अति

0: अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हूल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
0: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: Amen. तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी, ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
3: नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो।
2: चलो हटो, आउट
3: साहब,
2: आउट
3: साहब, साहब
2: आओ। ऐसे नहीं मानेगा
3: साहब, मत करो साहब।
2: चल सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब,
2: इसको हंटर मारो।
3: साहब।
4: जी सर।
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।

0: भाई कान्हो
1: जी भैया,
0: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
1: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
0: क्या हुआ?
1: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
0: क्या कानो, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
1: हाँ भैया,
0: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
1: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
0: तो फिर
1: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
0: हाँ ठीक कहा तुमने।
1: हाँ
0: ऐसा ही करेंगे।
1: जी भैया।
2: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिद्धो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
2: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
3: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिद्धो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिद्धो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीन जब्त
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
6: सही बोले, सही
5: कहे। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
7: हाँ सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
6: तो भैया सही बात
7: कह रहा है।
5: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती
7: है।
5: भाइयों, भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
8: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: अब करो या मर जाओ,
8: अब करो या मर जाओ।
5: अबुआ राज, अबुआ तिसुम,
8: अबुआ राज, अबुआ तिसुम,
5: अबुआ राज।
2: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
3: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया।

0: like of what I say. Fire!
1: भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कानू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कानू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में। हमारे दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक का प्रसारण किया जाएगा आज रात्रि 9:30 पर।

नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत सुगम संगीत में कलाकार रुचि अग्रवाल से भजन आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। विविधा के अंतर्गत चांदीपुरा वायरस संक्रमण कारण लक्षण और रोकथाम के उपाय विषय पर भेंटवार्ता में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के जौहर से बातचीत करेंगे अंकित सैनी। ये भेंटवार्ता आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 6:05। कार्यक्रम में बाजरा में समसामयिक कार्य विषय पर भेंटवार्ता में कृषि विज्ञान केंद्र नगीना की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवांगी से बातचीत करेंगे हिमांशु रंजन। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:15। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के क्रम में दी जाएगी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, महिला शक्ति केंद्र, नारी शक्ति योजना और वन स्टॉप सेंटर की जानकारी शाम 5:00। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में चंद्रदत्त सुयाल से गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम परिवार जगत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। कार्यक्रम में पौधरोपण अभियान कितने कारगर, इस विषय पर परिचर्चा में प्रतिभाग करेंगे रश्मि अग्रवाल, विक्रांत शर्मा, सुशील राजपूत। परिचर्चा का संचालन करेंगी ज्योतिपाल। शास्त्रीय संगीत में कलाकार शिशिर कानाधर चौधरी से वायलिन वादन आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 12:05 पर। तबले पर संगत करेंगे संतराम। कल यानी मंगलवार को प्रातःकालीन प्रसारण सभा में लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल का प्रसारण रहेगा 9:15। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे 7:31 पर। स्वास्थ्य चर्चा में आंखों में होने वाले रोग, कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी दी जाएगी 7:05 पर। खेती की बातें में पशुओं में थनेला रोग व रोकथाम की जानकारी दी जाएगी 7:10 पर। रामचरित मानस गान का प्रसंग आप सुनेंगे 6:30 पर। और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 6:05। तो श्रोताओं, ये थी कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं कलाकार शिशिर कानाधर चौधरी से वायलिन वादन। राग है मूलतानी, विलंबित व द्रुत 3 ताल। तबले पर संगत कर रहे हैं संतराम।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे कलाकार शिशिर कानाधर चौधरी से वायलिन वादन, राग था मुल्तानी विलंबित व द्रुत तीन ताल। तबले पर संगत कर रहे थे संतराम। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। मिडडे मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, गीत संगीत के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे दिलों का हाल। तो शुरुआत करते हैं इस दिल के हाल जान लेने वाले प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने सुना मन्ना डे और साथियों को फिल्म श्री 420 के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। दोस्तों देखिएगा, दिल की जो बात है वो दिलवाला कह तो देता है, लेकिन उसे सुनने वाले के लिए भी उसके पास दिल होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, किसी की बात को दिल से सुनने में, दिल से समझने में और दिल में उतारने में बड़ा दिल चाहिए होता है। और दिल की बात जब किसी से साझा की जाती है तो एक कारवां आगे बढ़ता है, और वो कारवां तभी अपनी मंजिल पर पहुंचता है जब कोई राही, हमराही उसके साथ हो।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म संजोग का गीत। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत मदन मोहन ने दिया था। दोस्तों देखिएगा, दिल का हाल कई तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जताया जाता है। अपने अपने दिल का हाल हर कोई बताता है अपने अपने अंदाज में, लेकिन गाकर और एक तरह से किसी शायराना अंदाज में जो बात कही जाती है वो बड़ी सहजता के साथ हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है। और देखिएगा, जिंदगी में हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है और कुछ को तो मंजिल पर पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है और कुछ वेट एंड वॉच करते हैं, यानी प्रतीक्षा करते हैं कि कब एक अच्छा अवसर आएगा वो अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। लेकिन ये जिंदगी है ना, ये चलती का नाम है।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

0: किशोर कुमार और महेंद्र कपूर को आपने सुना फिल्म चलती का नाम जिंदगी के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा नूर देवासी ने और संगीत दिया किशोर कुमार ने। इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में अब लेते हैं एक ब्रेक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिडडे मेलोडी में। और गीत संगीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं दिल की कुछ प्यारी प्यारी सी बातों के साथ। और देखिएगा, दिल जो है वो बागवान हो जाता है जब सामने वाला खूबसूरत अंदाज में अपनी दिलकश अदा को दिखाता।

है व्यक्त करता है। और देखिएगा, किसी का मिलना उसके मिलने से पहले ही कुछ इस अंदाज में नजर आने लगता है।

की आवाज में। गीत रचना इंदिवर की थी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और देखिएगा गीतकार यूं कहें कि कवि की कल्पना कितनी गजब की थी कि जिसे देखा नहीं उसे अपने आसपास महसूस किया और उसे व्यक्त कर दिया कि उससे कैसे घुले मिले हैं। और एक कवि की कल्पना कुछ इस अंदाज में।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गुमनाम का ये गीत। गीत रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत शंकर जयकिशन का था। देखिएगा दोस्तों, कोई अपने पास होता है तो उससे बड़े खुशनुमा अंदाज में हम बात कर लेते हैं, कोई थोड़ा दूर होता है तो उसके बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, दिल के हाल को अलग अलग अंदाज़ों में बयां किया जाता है। और जब कभी कोई पास होकर रफ्तार रफ्तार समय गुजार कर दूर जाने लगता है तो उससे भी हमारे दिल की भावनाएं कुछ ऐसी व्यक्त की जाती हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सबूत के इस प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ

0: सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि यह समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के 3रे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3रे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The government will soon constitute a high-powered committee on banking in achieving the vision of a Vikasit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the 2-day public sector bank conclave in New Delhi today. She added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. Ms. Sitharaman expressed hope that the outcomes of the discussions will provide valuable substantive inputs to the committee as it formulates its recommendations on the future.

0: अलग अलग बैतुल खला, पीने के पानी की सहूलत, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर वगैरह समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की हैं।
1: ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।
0: नाग पंचमी का त्यौहार आज पूरी रियासत में रवायती अंदाज में अकीदत और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर रियासत के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने भगवान शिव से दुआ की कि हर घर और आंगन खुशी, अमन और खुशहाली से मुनव्वर हो। उन्होंने नागपंचमी को एक मुकद्दस त्यौहार के तौर पर बयान किया जो फितरत, बकाए बाहमी और शिवत्व का पैगाम देता है। इस दरमियान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही अकीदतमंदों और कांवड़ियों की बड़ी भीड़ वाराणसी पहुंच रही है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: नागपंचमी और सावन महीने के तीसरे सोमवार के मौके पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान शिव की मंगला आरती की गई। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्शन पूजा के लिए आए हुए कांवड़ियों और अकीदतमंदों का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार और जज्बाती इस्तकबाल किया गया। बाराबंकी के रामनगर में वाक़े श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर के दरवाजे जैसे ही खुले वहां अकीदतमंदों की भीड़ लग गई और पूरा कॉम्प्लेक्स बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी बड़े शिव मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की कतारें देखी जा रही हैं। पीलीभीत में जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने सावन के सोमवार पर भारी भीड़ और रास्ते बदलने की वजह से दर्जा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। अग्निवीर भर्ती रैलियां रियासत के 6 जिला मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में मुनक्किद की जाएंगी। भर्ती रैली आज 17 अगस्त को मेरठ में शुरू होगी जो 14 अप्रैल को अयोध्या में इख्तिताम पजीर होगी। एक हालिया जायजा मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने उम्मीदवारों की रिहाइश, सिक्योरिटी और भर्ती की जगहों पर भीड़ और ट्रैफिक के इंतजाम के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट इम्तिहान के 3 मजामीन अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए दोबारा इम्तिहान का ऐलान किया है। यह फैसला इन मजामीन में गलतियों की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद किया गया है। NTA ने कहा कि 9 सितंबर को अंग्रेजी मजमून सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, उसी दिन कॉमर्स का मजमून सहपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और सोशियोलॉजी का मजमून 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। नतायज काउंसिल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ये मालूमात देते हुए काउंसिल ने कहा कि हाई स्कूल के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट इम्तिहान में 20,855 उम्मीदवारों ने शिरकत की जबकि इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इम्तिहान में 21,227 उम्मीदवार शरीक हुए। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मशरकी और मगरबी डिवीज़न के कई मकामात पर तेज़ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी के पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मंदाकिनी नदी रामघाट पर खतरे के निशान को उबूर कर चुकी है। पानी की बढ़ती हुई सतह के पेश नज़र इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम परिवार जगत और मैं हूं आपके साथ आपकी साथी दीप्ति माहेश्वरी। श्रोताओं, रिमझिम फुहारे, चारों तरफ फैली मखमली हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और मोर का वो मनभावन नृत्य। जी हां, आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं आजकल चल रहे सावन महीने की। ये महीना हमारे दिलो दिमाग को ताजगी से सरोबार कर देता है। सावन यानी प्रकृति का उत्सव, सावन यानी जीवन का नया उल्लास। कहते हैं सावन के महीने में जब अंबर से पानी बरसता है तो धरती खुशी से झूम उठती है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत सावन में हम धरती माँ को क्या उपहार दे सकते हैं? इस सावन का सबसे सुंदर और सच्चा उपहार है पौधारोपण। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मौसम में जो भी पौधा लगाया जाता है वो जरूर पनपता है। इसलिए श्रोताओं, हमारा आप सभी से आग्रह है कि इस सावन के महीने में पौधारोपण अवश्य कीजिए। दोस्तों, हमारी संस्कृति में सावन और सनातनी परंपरा का गहरा नाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें हम नटराज भी कहते हैं, जो स्वयं प्रकृति के रक्षक हैं। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और हरी पत्तियां प्रिय हैं। इसका सीधा संदेश यही है कि परमात्मा को पाना है तो प्रकृति से प्रेम करना होगा। आज जब हम शहरीकरण के कारण कंक्रीट के जंगलों में घिरते जा रहे हैं, तब इस पावन सावन के महीने में सिर्फ हरी चूड़ियां पहनना या हरे कपड़ा पहनना काफी नहीं है। असली सावन तभी आएगा जब हम अपने हाथों से धरती पर हरियाली की नई चादर बिछाएंगे, अर्थात पौधारोपण करेंगे। श्रोताओं, एक छोटा सा पौधा लगाना सिर्फ मिट्टी में गड्ढा खोदना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सांसों का अकाउंट खोलना है। आज हम जो पौधा लगाएंगे, कल वो बड़ा होकर किसी थके हुए राहगीर को छांव देगा, पक्षियों का बसेरा बनेगा और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देगा। आज के समय में जब प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, तो पौधारोपण कोई शौक नहीं बल्कि हमारी जरूरत और जिम्मेदारी दोनों बन गया है। श्रोताओं, इस सावन के महीने में आप पौधारोपण अवश्य कीजिए। सावन के महीने में पौधारोपण करना क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा कार्यक्रम में अभी आगे करेंगे, किंतु लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। दोस्तों जरा सोचिए, इस सावन में अगर हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि एक पेड़ अपने नाम का और एक पेड़ देश के नाम का अवश्य लगाएंगे, साथ ही साथ अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर या अपने माता पिता की याद में एक पौधा जरूर लगाएं। जब आप उस नन्हे पौधों को रोज पानी देंगे, उसे बढ़ता हुआ देखेंगे, तो जो आत्मिक सुख आपको मिलेगा उसकी तुलना दुनिया के किसी भी ऐशो आराम से नहीं की जा सकती। पीपल, नीम, बरगद, तुलसी या जामुन, जो भी पौधा आप

0: पसंद हो उसे लगाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं, उसके बड़े होने तक एक माता-पिता की तरह उसकी देखभाल भी करें। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि धूप बहुत तेज है, छाव कहाँ मिलेगी? अगर पेड़ ना बचाए तो सांस कहाँ मिलेगी? धूप बहुत तेज है, छाव कहाँ मिलेगी? अगर पेड़ ना बचाए तो सांस कहाँ मिलेगी? आओ इस सावन एक नया संकल्प उठाएं, धरती माँ के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाएं। आओ इस सावन में एक नया संकल्प उठाएं, धरती माँ के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाएं। तो देर किस बात की, इस बरसात के मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच किसी नजदीकी नर्सरी से एक सुंदर पौधा ले आइए और उसे धरती माता को सौंप दीजिए। याद रखिए, एक पौधा लगाना केवल मिट्टी में एक पौधा रोपना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन, हरियाली और स्वच्छ हवा का बीज बोना है। प्रकृति मुस्कुराएगी तो हमारा जीवन भी मुस्कुराएगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। क्या पौधा लगा देना ही हमारी जिम्मेदारी पूरी कर देता है? बिल्कुल नहीं। पौधे को पानी देना, उसकी सुरक्षा करना, उसे पशुओं से बचाना और समय-समय पर उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसे लगाना। हर वर्ष हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ पौधारोपण अभियान चलाते हैं। हजारों लाखों पौधे लगाए जाते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, संकल्प लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कितने पौधे वास्तव में वृक्ष बन पाते हैं? क्या पौधारोपण के बाद उनकी नियमित देखभाल हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे पौधारोपण अभियान केवल एक दिन की गतिविधि बनकर तो नहीं रह गए हैं, या सचमुच पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्थायी बदलाव ला रहे हैं? इन्हीं सवालों पर आज की हमारी परिचर्चा केंद्रित है, जिसका विषय है पौधारोपण अभियान कितने कारगर। इस परिचर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि पौधारोपण अभियानों की सफलता को हम किस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं और एक लगाए हुए पौधे को एक मजबूत छायादार वृक्ष में बदलने के लिए समाज और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका क्या हो सकती है। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी परिचर्चा, पौधारोपण अभियान कितने कारगर। प्रतिभागी हैं श्रीमती रश्मि अग्रवाल, विक्रांत शर्मा, सुशील राजपूत। संचालन कर रही हैं ज्योति पाल।
1: एक पौधा केवल मिट्टी में रोपा गया पौधा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बोया गया एक भरोसा है। मानसून आते ही जगह जगह पौधारोपण अभियान शुरू हो जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, सामाजिक संगठन और आम नागरिक सभी बढ़ चढ़ कर पौधे लगाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, संकल्प लिए जाते हैं और बड़ी संख्या में पौधा लगाने के लक्ष्य तय किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल पौधे लगा देना ही पर्यावरण संरक्षण है? कितने पौधे वास्तव में पेड़ बन पाते हैं? लगाए गए पौधों की देखभाल कौन करता है? पानी सुरक्षा और उचित स्थान की व्यवस्था कितनी होती है? और क्या हमारे पौधारोपण अभियान का मूल्यांकन केवल लगाए गए पौधों की संख्या से होना चाहिए या उनके जीवित रहने की दर से? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। पौधारोपण अभियान कितना कारगर है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उनकी न जाने कितनी किताब पर्यावरण पर लिखी गई हैं, जिन पर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले हैं। उनके साथ हैं सुशील राजपूत जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ पर्यावरणविद भी हैं। पर्यावरण से जुड़े अनेक संगठनों में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पेड़ों को लगाने का, लोगों को जागरूक करने का। साथ ही साथ विक्रांत शर्मा जी हैं, जिन्हें पर्यावरण प्रहरी के नाम से जाना जाता है। तो जब वो पर्यावरण प्रहरी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं पेड़ों के लिए उनका जीवन पूरी तरह से समर्पित है। उन्हीं का जीवन नहीं, बल्कि उनके पुत्र, उनकी पत्नी, पूरे परिवार ने ही अपना जीवन पर्यावरण को सौंप दिया है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रश्मि जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में पौधारोपण अभियान पर्यावरण के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है?
2: देखिए, अभियान चल रहा है। मैं
1: जी
2: इसको बिल्कुल तो नहीं कह सकती कि नकार नहीं सकती कि ये

0: पूरी तरह से फलता फूलता नहीं है। लेकिन ये भी मैं कहूंगी कि जो जैसे तहसील में आके पेड़ इकट्ठे हो गए 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, उनकी हालत मैंने खुद देखी है। वो कई कई दिन तक वहाँ पड़े रहते हैं और पड़े पड़े उनकी हालत खराब हो जाती है, वही पेड़ जाकर लग जाते। कितने सारे पेड़ हैं मैंने ही जाके दोबारा से देखे हैं कि कोई एक पेड़ भी वहाँ नहीं चला जहाँ उन्होंने 500, 600, 700 पेड़ लगाए थे। तो मेरा कहना यह है कि सरकार लगाए, कोई संस्था लगाए या कोई भी पेड़ को लगाए, आप गिनती निर्धारित मत करें। ये सिर्फ कागज भरने के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पैसा कि भाई इतना पेड़ जो लाएगा वो उसका इतना पैसा है, जो लगाएगा उसका इतना पैसा है। अब वो मत करिए, आप ये करिए कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो फले।
1: विक्रांत जी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: वृद्ध वृक्षारोपण अभियान हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी 35 करोड़ का लक्ष्य था हमारे यूपी में, लेकिन हमें इसमें देखना होगा कितना स्पेस है, क्या संसाधन है, क्या हमारे परिवार इन्हें पालने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया जाता है और बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बाद उसे पंचायत स्तर पर बांट देते हैं, अन्य विभागों में बांट देते हैं, जो विभाग कोई मतलब नहीं रखते उनको भी चला जाता है, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी देते हैं, निजी कंपनियों को भी दे देते हैं। जैसा कि अभी रश्मि बहन जी ने बताया कि इस तरह का हाल मेरा भी देखा हुआ है, तो पौधों की स्थिति खराब हो जाती है। वन विभाग होता है सामाजिक वानिकी विभाग, अब कुछ समय से उन्होंने वाटिकाएं बनानी प्रारंभ की हैं, एक कर्मचारी भी रखा जाता है, उनमें वास्तव में पेड़ पल रहे हैं और वो कारगर भी होते हैं, ये मैंने देखे। लेकिन हम इतना बड़ा डेटा में हमें नहीं लगता क्योंकि पब्लिक जागरूक नहीं होगी। इसमें तीन पक्ष हैं, एक सरकार की मंशा मुझे हमेशा अच्छी लगती है, सरकार अच्छी मंशा से प्रयास करती है लेकिन डेटा बहुत ज्यादा ले लेती है। उसके बाद दूसरा पक्ष आता है स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन कार्यक्रमों तक ही बस सीमित होकर रह जाते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद लौट के नहीं आते, पालने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा पक्ष है आम समाज, जिसके घर के पास पौधा लगा है उसे वहाँ पे पानी देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम समाज भी उस पौधे पे ध्यान नहीं देता क्योंकि सरकारी मशीनरी तो हमेशा एक बार पौधा लगवा दिया उसका हमेशा ध्यान नहीं रख सकते, तो आम समाज को ध्यान रखना होगा। मेरी इसमें सिर्फ एक राय है कि यदि हम लोग परिवारों को तैयार करें, प्रति परिवार मान लिया यूपी की 25 करोड़ की लगभग जनसंख्या है तो 5 करोड़ परिवार लगभग यूपी के बनते हैं, अगर प्रति परिवार हम एक पौधा सौंपे और उन्हें इंसेंटिव देने को तैयार हो सरकार की ओर से, चाहे तो आर्थिक रूप से दें या सामाजिक रूप से दें, किसी तरह का प्रोत्साहन दें और उनसे कहें आप कम से कम एक पौधा पाल के हमें देंगे इस तरह का, तो ये पौधे पल सकते हैं। 5 करोड़ परिवार हैं तो 5 करोड़, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे परिवार भी होते हैं कहते हैं नहीं भाई हम तो एक पौधा नहीं हम 5 पौधे पालेंगे, और कोई परिवार एक पौधा भी तैयार नहीं होगा लगाने को, तो एवरेजन 5 करोड़ पेड़ हर हालत में पल जाएंगे क्योंकि परिवार पालने को तैयार है। तो हमें सबसे पहले या समाज को या सरकार को ध्यान देना होगा कि जितने हमारे परिवार हैं हमारे प्रदेश में हमारे देश में, उन परिवारों को तैयार करके परिवार के आधार पर पौधे की जिम्मेदारी दें, तब शायद पौधे चल पाएंगे, नहीं इतना बड़ा अभियान सफल नहीं हो पाता है।
1: सुशील जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि रश्मि जी ने कहा पौधारोपण हो रहा है पर ये ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन सा पौधा किस मिट्टी में लगाया जाए और कहां पर लगाया जाए, तो ये कितना जरूरी है?
3: जितना भी पौधारोपण होता है तो ये हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता ही है कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति की जरूरत है, उसी प्रजाति के पौधे यहाँ पर लगते हैं, कोई एरोटिक प्लांट्स यहाँ पर नहीं आते हैं, उतना तो होता है और सीजन भी क्योंकि बरसात का में ही लगते हैं। देखिए इस समय जो प्लांटेशन का वृहद कार्यक्रम हो 12 जुलाई को रखा गया, 12 जुलाई एक बहुत ही अच्छा समय है, 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन 12 जुलाई तक बारिश आ जाती है तो वो बहुत अच्छा समय है, और इसको अच्छा बनाने के लिए सरकारी स्तर पे योजना शुरू की तो सारे देश में उसका बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ और बहुत अच्छे से उसको माँ के प्रति सम्मान और कैसे हम लोग एक वृक्ष को पालन पोषण कर सकते हैं इसमें वृहद काम हुआ है। इसके बाद अब 2 साल बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये टारगेट लिया और उसको प्लांटेशन कराया है। ये निश्चित रूप से 35 करोड़ प्लांट ना जिए लेकिन फिर भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट्स का जिएगा। इसके अलावा सामाजिक स्तर पे संघ द्वारा प्रेरित संगठन एक बहुत बड़ा काम कर रहा है जिसने बीजारोपण से वृक्षारोपण, इसके बाद अगस्त में प्रकृति वंदन का कार्यक्रम, वृहद लेवल पे वो कार्यक्रम होते हैं, केवल वृक्षारोपण ही नहीं वृक्षारोपण कूड़ा प्रबंधन और जल संरक्षण तीनों विषय पे बहुत अच्छे से काम करें, ऐसा बहुत जल्दी इसका प्रभाव आने वाला
1: है। विक्रांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी पौधे को बड़ा होने तक कितने वर्षों तक देखभाल करनी चाहिए?
2: देखिए पौधे पे निर्भर करता है कौन सा पौधा है, मान लिया नीम है जी। नीम का पौधा आपको कम से कम 7-8 साल तक केयर करनी पड़ेगी। आप दूसरी तरफ आप पिलखन के पौधे को आप लेके जा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 साल तक,

0: आप केयर करनी होगी।
1: अच्छा
0: उधर बरगद का पौधे के लिए अलग एज है, अशोक के पौधे के लिए अलग एज है, लेकिन एवरेजन रूप से फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। जब तक 4 साल तक हम पौधे पे हमें निगाह रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई कारण बनते हैं। कई बार लकड़ी काटने वाले उन्हें काट के ले जाते हैं छोटी मोटी लकड़ी समझ के, कई बार कुछ जंगली पशु होते हैं वो उनसे शरीर की खुजली मिटाते हैं तब पौधा गिर जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान होता है, पता नहीं समाज में इतनी जागरूकता नहीं आई है, वो लोग आग लगा देते हैं पौधों में। आप ये देखेंगे जिस समय गर्मी आती है उस समय इतनी आग लगाई जाती है, आप रोड साइड में देखें और उसमें बहुत पौधे मर जाते हैं, झुलस जाते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि भाई जितना इसमें एक पौधे के अंदर नीचे जमीन में घास में अरबों परिवार पलते हैं, एक मुट्ठी मिट्टी अगर पूरी समृद्ध है तो 14 अरब बैक्टीरिया उसमें होता। आपने आग लगा दी, मिट्टी सारी जल गई, अरबों खरबों कीट पतंगे जीव पौधे जी। सब मरते हैं।
1: ये बात आपने बहुत अच्छी बताई।
2: तो ये हमें अपने बच्चों को पहले सिखाना पड़ेगा। मैंने अपनी संस्था की 20 महिलाओं से कहा कि आप अपने घर का सारा पॉलिथीन प्लास्टिक कुछ भी पन्नी पुन्नी कुछ भी है उसको आप 2 लीटर 1 लीटर की बोतल में ठूस ठूस के भरिए, कटिंग कर बोतल को टाइट करके भर दीजिए और 150 बोतल तैयार करनी है आपको एक महीने में। मेरी महिलाओं ने 150 बोतल तैयार की। हमने बाजार की दुकान वालों से भी मंगाई प्लास्टिक की, 2 भैया मंगाई। मंगाने के बाद हमने तहसील में उससे एक बेंच बनवाई है, बनी हुई है, 6 बंदे बैठ सकते हैं उस बेंच पर। उसका SDM ने उसकी उद्घाटन किया था, बहुत सुंदर बेंच बनी है, उसमें नीचे वो पूरी बोतल लगी है, वो बोतल चमक रही है। तो पता उससे क्या हुआ, ये मेरा जब काम किया प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, वहां से फोन आया, उससे क्या हुआ कि 1.25 महीने की पॉलिथीन सड़क पर नहीं गई।
3: ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सीमेंट लगा, बहुत अच्छी है,
2: थोड़ा सीमेंट लगा जी। और इतनी सुंदर वो बेंच बनी और काफी सारी हमने 1 महीने में खत्म की।
3: बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है,
2: मैनेज हो
3: वो बन जाती है,
2: बन गया।
3: और इको ब्रिक के रूप में ये यूज हो जाता है। स्कूल के बच्चों को बताएं और विक्रांत जी जैसे लोगों का उदाहरण दें।
4: मेरे ख्याल से किसी के भी घर में 12-13-15 पन्नियां तो डेली की फिक्स है।
0: पॉलिथीन के लिए मैं आमतौर से प्लास्टिक को कहता हूँ अच्छी सेविका है परंतु बुरी स्वामी है। हम लोगों ने इसको स्वामी बना लिया। हम जब भी बाजार जाएंगे बिना थैले के जाएंगे, पॉलिथीन लेके आएंगे। हम लोग ऑनलाइन बहुत बहुत ज्यादा परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन में। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर का देखा है, उनकी किताबें मेरे पास आती हैं और बिल्कुल एक बासी पेपर में लिपट के आती हैं, बिल्कुल साफ सुथरी एकदम आ जाती है। तो जब उसकी किताब आ सकती है तो अन्य बुक्स क्यों नहीं आ सकती बिना प्लास्टिक रैपर के, या अन्य सामान क्यों नहीं आ सकता। इस पे कंपनीज को भी ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना होगा। अब इसकी प्रॉब्लम ये होती है प्लास्टिक जिनमें ना जब इस समय 1970 के आसपास ज्यादा प्रयोग होनी शुरू हुई तो इसने अरबों खरबों पेड़ भी बचाए हैं। रैपिंग करने के लिए कागज लगता था, गत्ता लगता था, वो पेड़ों से आता था, अच्छी सेविका के रूप में साबित हुई। उसके बाद हमने इस पे अति कर दी, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ बहुत जरूरी है वहाँ हम प्रयोग करें, नहीं तो जब तक हम त्याग पूर्वक भोग करना प्रारंभ नहीं करेंगे हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते।
4: आते हैं पौधारोपण पर। सुशील जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए देश तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है चारों तरफ, लेकिन उसमें बलि चढ़ रही है पेड़ों की, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
3: कि पुरानी पेड़ों को जहाँ तक बचाने की बात है तो गवर्नमेंट इसमें काफी प्रयास करती है, लेकिन हमें हमेशा दुनिया में जो तरक्की है उसके समकक्ष होना ही होता। अगर हम उसके समकक्ष नहीं होंगे तो आप भी देख ही रहे हैं कि संसार के समीकरण किस तरह से बदलते हैं। हमारे अपने वेद वाक्य भी यही हैं कि हमें वृक्षारोपण और वृक्षों का पालन पोषण करना चाहिए। 10 कुएं एक तालाब के बराबर होते हैं, 10 तालाब एक सरोवर के बराबर होता है और 10 सरोवर एक पुत्र के पालन के बराबर होते हैं और 10 पुत्रों का पालन एक वृक्ष के पालन के बराबर होते हैं, ऐसा वेद वाक्य है। तो हमें अपनी संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम करते हुए और जैसा विक्रांत जी ने भी बताया कि त्याग की भावना होते हुए हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए चीजों का, लालच में वो नहीं करना चाहिए। पेड़ों का कटान जहाँ आवश्यक है तो वहाँ आवश्यक है।
4: विक्रांत जी जैसे हम पौधारोपण तो कर रहे हैं लेकिन एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत टाइम लगेगा और हम वही 100 साल 150 साल पुराना पेड़ हम काट रहे हैं, क्या उसकी क्षतिपूर्ति हो रही है वो नया पौधा लगाकर?
0: नहीं, असंभव। एक वृक्ष 100 साल का वृक्ष, हजारों शाखाएं
4: जी,
0: और आप उसके बदले में अगर 10,000 पौधे भी लगा दें तो एक पौधा एक वृक्ष एक शाखा के बराबर होता है। पौधा पेड़ सिर्फ एक काम नहीं करता कि कार्बन एब्जॉर्ब करे और ऑक्सीजन दे, वो वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी करता है, वो आपके पतंगों को पक्षियों को सबको पालता है। उसके एक पेड़ में हजारों तरह की स्पीशी रहती है, वो खरबो बैक्टीरिया रहते हैं, सारी ही पृथ्वी बैक्टीरिया के बेस पे चल रही है। बैक्टीरिया है सारा जीवन है, नहीं तो नहीं चल सकता। सबसे ज्यादा बायोमास भी प्रकृति

0: ने बैक्टीरिया को दिया। इंसान तो 0.00001% पे आता है बायोमास में, 80 साल का या 100 साल का, मतलब ऐसे समझ लीजिए आपने दादा को मार दिया और पोता सामने रख दिया तो कैसे संभव है? दादा का अनुभव, दादा ने कितना छत्र छाया दी हुई थी, वो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हाईवे की बात आती है, देखिए हाईवे जो है ना, एक देश की नसें होती हैं, जहाँ आप प्रसिद्ध देश का विकास होता है, तो हाईवे की आवश्यकता तो देश को है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। कि जिधर आपको लग रहा है कि मैंने एक अभी कुछ साल पहले एक घटना पड़ी थी कनाडा की, वहां पे एक रास्ते में पेड़ आ रहा था तो उन्होंने रास्ता ही बदल के दूसरी तरफ को कर दिया। तो जहां आपको लग रहा है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है, विरासती पेड़ है, या यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ औषधीय पौधे हैं या काटे जाने नहीं चाहिए, वहां पे आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा अपना। लेकिन आपको हाईवे को इस तरह से बनाना होगा कि न्यूनतम क्षति हो।
1: हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते पुराने पेड़ों की नए पेड़ लगाकर, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बचाएं। मैं सुशील जी से और रश्मि जी से सवाल पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए मेरे घर में बहुत थोड़ी सी जगह है, मेरे घर में भी और मेरे घर के बाहर भी, और मुझे बहुत शौक है कि मैं भी पर्यावरण में इतनी सी साझेदारी करूं और बहुत सारे पेड़ लगाऊं, तो मैं कैसे लगा सकती हूं? बहुत कम शब्दों में आप हमें बताएं।
2: इसका एग्जाम्पल जो विक्रांत जी का टेरेस है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
1: अच्छा,
2: उन्होंने अपने टेरेस पे कितना अच्छा गार्डन और किचन गार्डन बनाया है, उसको देख के भी आप अनुभव ले सकते। सीमेंट के कट्टे में खाद भर के उसमें सब्जी लगा सकते हैं, तमाम प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनमें लगा सकते हैं, घर के बहुत सारे आजकल वेस्टेज निकलते हैं उसमें लगा सकते हैं। सबसे एक बहुत अच्छा गार्डन आप छोटी सी जगह में तैयार करा सकते हैं।
1: मैं विक्रांत जी से भी जानना चाहूंगी कि टेरेस पर कैसे उन्होंने छोटी जगह में इतने सारे प्लांट
2: गार्डन को अगर विक्रांत जी बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: देखिए मेरा मानना हमेशा रहा है, हम अगर घर में गमले वगैरह रखते हैं तो हम अपना पीने का पानी जो 0.01% है हम उसको बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम पीने का पानी उसमें लगाते हैं। उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ उपयोगिता ज्यादा हो, रिटर्न ज्यादा आए। तो उसमें आप किचन गार्डन, छत पे आपके पास अच्छा खासा स्पेस होता है, थर्माकोल के डिब्बे भी आ जाते हैं उसमें आप लगा सकते हैं, आप पुराने ड्रम ले सकते हैं उन्हें बीच में से काट के उनकी क्यारी बना सकते हैं, थोड़ा वजन भी कम रहता है। मैंने तो खैर पूरी एक नान टाइप की बना ली है छत पे चारों ओर, उसमें काफी कुछ हो जाता है। अब तो उसमें भी अधिकतर मैं ये नई नई पौधे लगा देता हूँ, पीपल पेलखान, ये अभी मैंने बहुत सारे सहजन के बीज, आम के बीज सब उसी में लगाए हैं। जब छोटी छोटी पौध आ जाएगी तो उसको वापस, कनक चंपा के भी उसी में लगाए हैं तो उसको फिर थैलियों में लगाएंगे, बड़ा करेंगे, तो अब तो वो भी अधिकतर उसी यूज में आने लगे। लेकिन हाँ, वहाँ पे गिलोई भी होती है, बहुत प्रयोग करना चाहिए। आपके पास जितना भी स्पेस हो मैक्सिमम प्रयोग करना चाहिए, उपयोग उसमें करना चाहिए। बाजार में आपको पता ही है अधिकतर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है
1: जी।
0: तो जहर तो पेट में जाए, उस जहर से बचने के लिए आप घर पे जो भी मिले, गर्मियों में
1: जी जी जी
0: धनिया नहीं होता तो मैंने धनिया का क्या करा, एक छोटे छोटे थर्माकोल के लंबे पतले से पीस मिल गए किसी के, शायद LED में आए थे, उसमें मिट्टी लगाई, खाद वगैरह लगाई और उसमें बीज लगा के बिल्कुल जो ऊपर क्यारी बनाई है उसके नीचे स्पेस है ना, नाट टाइप का है तो जिससे छत खराब ना हो तो ऊपर उठी हुई है तो उसकी छांव में रख दिया, वहाँ बहुत बढ़िया धनिया हुआ। तो इस तरह से आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रयोग करें और प्रयोग उस जगह करें क्योंकि आपका पीने का पानी, आप ये ध्यान करें।
3: हाँ, जैसे मेरे तो बाथरूम से निकला बाथटब काफी टूट गया था तो उसको कूड़े में रख दिया,
1: बहुत स्पेस होता है।
3: मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे यहाँ अभी समर सेविल लगा तो उसमें से बहुत सारी मट्टी निकली, रेत वाली, फेंकना नहीं है, इस बाथटब में भर दो। तो मैंने उसको भरवा दिया। अब भरवाने के बाद में 3 सीजन तो मैं सब्जी की ले चुकी, अब जो है पुदीना बोया है उसमें मैंने। अस्पताल से एक पेड़ कट के मेरे घर आ गया, वो तो मैं जरूर सुनाऊंगी बात। बहुत बड़ा पेड़ था चंपा का, उसका टूट था मतलब, तो मैंने भी सोचा बेकार है, मैंने भी कूड़े में डलवा दिया। फिर मेरे दिमाग में क्या आई कि इसको मैं थोड़ा सा मट्टी में लगा के इसमें गमले सजा दूंगी, टांग दूंगी। मैंने उसे मट्टी लगा दिया, 4 महीने के बाद पत्ती निकल, मैं तो नाचू खुशी की मारी क्योंकि मैं तो उसको कूड़ा समझ रही थी। और आज वो चंपा का पेड़ बन गया, वो अच्छी मट्टी मिली, वो पनप गया।
1: एक संदेश जो हमारे श्रोताओं के लिए आप देना चाहेंगे पौधारोपण के ऊपर?
2: वृक्षारोपण में सभी को इंटरेस्ट लेना चाहिए,
0: सभी माता देव की ना बने, कुछ माता यशोदा भी बने। कि पौधा किसी ने भी लगाया, आपको उसे पालना है।
3: आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाइए पेड़ लगाना को पालना कैसे करते हैं।
1: आप सब स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी पौधारोपण पर। धन्यवाद
4: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे एक परिचर्चा, पौधारोपण अभियान कितने कारगर। आशा करते हैं आपको ये परिचर्चा

परिचर्चा अच्छी लगी होगी। इस परिचर्चा के माध्यम से हमने जाना कि पौधे लगाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब पौधे लगाने तक सीमित ना रहें बल्कि उन्हें सहेजें, संवारें और वृक्ष बनने तक उनका साथ निभाएं, क्योंकि हरियाली तभी कायम रहेगी जब हमारा संकल्प पौधे से आगे बढ़कर उसकी परवरिश तक पहुंचेगा। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको भिन्न भिन्न जानकारियां देते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं अमृत लाल नागर जी की जन्मतिथि के बारे में। ये दिन हिंदी साहित्य में बेहद ही गौरवमयी है।

थी, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर महारत हासिल की। इतिहास, पुराण और समाजशास्त्र को ऐसा घोला कि जब उनकी कलम से मानस का हंस और खंजन नयन जैसी कृतियां निकली तो पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने सूरदास और तुलसीदास जी के जीवन को जिस जीवंतता के साथ उपन्यासों में उतारा वो मिसाल आज भी बेजोड़ है। वे एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने समाज के सबसे साधारण इंसान को अपनी कहानियों का नायक बनाया। उनकी अद्भुत साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने साहित्य को केवल लिखने के लिए नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी समाज की बुराइयों पर प्रहार करने और इंसानी मूल्यों को बचाने में लगा दी। 23 फरवरी 1990 को भले ही वो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अपनी कालजयी रचनाओं अमृत और विष और बूंद और समुद्र के जरिए वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। साहित्य के इस अमृत को हम सभी आकाशवाणी सदस्यों की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से हमारा सबका कोटि कोटि नमन। इसी जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमें पत्र अवश्य लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर 246763। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। दोबारा से नोट कर लीजिए 9457078288। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद्रदत्त सुयाल की आवाज़ में गढ़वाली लोकगीत।

0: इस गढ़वाली गीत के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम बासमती

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है लोक गायक चंद्रदत्त सोयाल की आवाज़ में ये गढ़वाली लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, और कार्यक्रम में आपने सुने लोक गायक चंद्रदत्त सोयाल की आवाज़ में गढ़वाली लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: Good afternoon. This is Akashvani and

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3rd दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के 2rd दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है। डूबे कर्ज की स्थिति न्यूनतम

0: स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
1: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र

0: स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है, अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। नई फिल्मों से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, जीवन में अगर नएपन का एहसास ना हो तो जीवन नीरस सा हो जाता है। फिर चाहे वो हमारे दिन में घटित होने वाली घटनाएं या कार्यक्रम ही क्यों ना हो, फिल्म संगीत ही क्यों ना हो, या फिर किसी से मिलना जुलना ही क्यों ना हो, अगर हमारे जीवन में नएपन का एहसास होता है तो जीवन में एक रंगत छाई रहती है, एक उम्मीद सी बनी रहती है ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने की।

अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में फिल्म बाजीराव मस्तानी का प्यारा सा गीत। गीत रचना सिद्धार्थ गरिमा और नासिर फराज की थी और संगीत संजय लीला भंसाली का था। दोस्तों,

नए और पुराने के बीच के भेद को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कोई दिल से कुछ अगर पुराना भी दे तो कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। अरे कुछ और नहीं तो कम से कम जज्बातों में कुछ नएपन और ताजगी का एहसास ज़रूर होगा।

0: आगम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हम हर दिन अपने डेली लाइफ स्टाइल में कई ऐसे काम करते हैं जो केवल और केवल रिपीट होते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में नएपन का तो एहसास हो ही नहीं रहा, सब कुछ नीरस सा दिखाई देता है। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। यानी हम हर दिन अपने लाइफस्टाइल में 10-20% भी अगर कुछ हटकर करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो फिर देखिएगा क्या रंगत आती है हमारी डेली लाइफस्टाइल में।

अभी आपने सुना फिल्म तेरी मर्जी का ये गीत विस्पी की आवाज में, गीत रचना श्याम अनुरागी की और संगीत चार्ल्स श्रीनिवासन का। दोस्तों देखिएगा, नएपन की हम बात कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले ही एक नएपन का एहसास जरूर हुआ होगा आपको भी स्वाधीनता दिवस के रूप में। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 15 अगस्त 2026 को हमने फिर से स्वाधीनता दिवस की खुशियों को नए अंदाज में मनाया। और देखिएगा, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये तो हर दिन और भी जवान होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ के युवाओं में जोश, यहाँ के युवाओं में दिलों में आग अभी बाकी है।

अभी आपने सुना फिल्म ब्लैंक का ये गीत रोमी और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा सोनल प्रधान ने और संगीत भी सोनल प्रधान ने ही दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में नएपन की बात करते करते हम आ चुके हैं लगभग अंतिम पड़ाव पर और एक गीत का समय अभी बाकी है और इस गीत को हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन नएपन की एक बात और साझा कर लें कि देखिएगा कि कभी भी कुछ भी पुराना नहीं होता अगर हमारी समझ और हमारी सोच नहीं है। तो हमें अपनी समझ और सोच को हमेशा तरोताज़ा रखना है, दूसरे की भावनाओं का हमेशा सम्मान देना है और नएपन का एहसास जगाने के लिए अपने मन को तरोताज़ा रखना है, नएपन की भावनाओं को हमेशा तरजीह देनी है।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में आपने सुना है अक्टूबर फिल्म का गीत, जिसे लिखा स्वनंद किरकिरे ने और संगीत दिया शांतनु मैत्रा ने। दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्याकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नई योजनाएं चल रही हैं उनके विषय में। श्रोताओं हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार लगातार प्रयासरत है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर एक आत्मविश्वास से भरा एक जीवन जिएं और समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाएं। उसी क्रम में श्रोताओं आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला शक्ति केंद्र या नारी शक्ति योजना और वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी योजना के बारे में। तो श्रोताओं आइए पहले बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में। तो श्रोता हम आपको बता दें कि ये योजना भारत में एक सरकारी योजना है जो निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई तरह की सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाना है। इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संकटग्रस्त महिलाओं, चाहे उनकी आयु, वर्ग, जाति या शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, इन सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। ये योजना एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो जरूरतमंद महिलाओं को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न सहायता सेवाएं के अंतर्गत आमतौर पर परामर्शदाताओं, वकीलों और चिकित्सा कर्मियों सहित पेशेवर की एक समर्पित टीम होती है जो महिलाओं की सहायता के लिए मिलकर काम करती है। ये अवसर श्रोताओं अपनी पहुंच बढ़ाने और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हैं। ये योजना महिलाओं को हिंसा से उबरने के लिए सहायता प्राप्त करने तथा आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बनाने में सशक्त अपनी जो भूमिका है उसको बनाती है, और साथ ही महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और उनको आगे बढ़ाने और हिंसा के जोखिम को कम करने के लिए मदद प्रदान करती है। ये योजना महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मूल कारणों को दूर करके सम्मान और संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो श्रोताओं ये तो बात हुई वन स्टॉप सेंटर की, और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। श्रोताओं ये योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी सन 2017 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू की गई, और श्रोताओं ये लाभकारी और बड़ी ही कल्याणकारी योजना है। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं देश की गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, प्रसव के दौरान मजदूरी की नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति करना और उन्हें उचित आराम व पोषण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अक्सर आर्थिक तंगी के कारण जो गरीब महिलाएं हैं श्रोताओं, वो गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक और प्रसव के तुरंत बाद मजदूरी करने पर मजबूर होती हैं, जिससे वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए इस DBT योजना की शुरुआत की गई थी। इसके फायदों की अगर हम

बात करें तो इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने लिए पौष्टिक आहार खरीद सकें। और वर्तमान में संशोधित नियमों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, किस्तों में दी जाती है श्रोताओं। और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे बच्चे के रूप में बेटी के जन्म होने पर 6,000 की एक मुश्त राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये योजना न केवल मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने में मददगार साबित हो रही है बल्कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर देश में सुरक्षित महत्व की गई एक नई नींव रख रही है। और श्रोताओं आइए बात करते हैं महिला शक्ति केंद्र की। तो श्रोता हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा नवंबर 2017 में शुरू की गई ये एक क्रांतिकारी पहल है जिसे अब मिशन शक्ति के सामर्थ्य अपघटक के तहत जिला स्तरीय हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने का मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करना था ताकि वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकें। इसके फायदों की अगर हम बात करें तो श्रोताओं ये ग्रामीण महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका अनूठा सामुदायिक मॉडल है जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना और NCC जैसे कॉलेजों के युवा छात्र स्वयंसेवक सीधे आकांक्षी जिलों और गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक करते हैं। इसके अलावा ये केंद्र जमीनी स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और वन स्टॉप सेंटर जैसी अन्य बड़ी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर संकटग्रस्त गरीब और शोषित महिलाओं को त्वरित न्याय, सुरक्षा और आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित कराता है।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में एक आवश्यक सूचना सुनिए। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर से प्राप्त सूचना के अनुसार अलका निवासी ज्ञान विहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर दिनांक 20 जुलाई सन 2026 से लापता है। इनकी उम्र करीब 24 वर्ष है। इनके बारे में कृपया कोई भी जानकारी मिलने पर इस नंबर पर सूचित करने की कृपा करें 9627778922। नंबर एक बार फिर से सुने 9627778922। दूसरी सूचना इस प्रकार से है। नंदिनी कुशवाहा पुत्री कृष्ण अवतार निवासी मोहल्ला भवन कस्बा वथाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर दिनांक 24 जुलाई सन 2026 से लापता है। इनके बारे में कृपया कोई भी जानकारी मिलने पर इस नंबर पर सूचित करने की कृपा करें 9454403139। नंबर एक बार फिर से सुने 9454403139। तीसरे गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी इस तरह से है कि कशिश रानी निवासी ग्राम भज्जावाला थाना धामपुर जिला बिजनौर दिनांक 23 जुलाई सन 2026 से लापता है। गुमशुदा का हुलिया इस प्रकार से है। उम्र लगभग 18 वर्ष कद 5 फुट 2 इंच रंग गोरा शरीर औसत। इन्होंने लापता होते वक्त नीले पीले रंग का टॉप व नीले रंग का पजामा व पैरों में हवाई चप्पल पहनी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें 9454403129। नंबर एक बार फिर से सुने 9454403129। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। तो श्रोता हम आपको बता दें कि आज रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और रात 10:30 पर होगा आपके फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गीत संध्या फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम होगा रात 8 बजे और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रुचि अग्रवाल के गाए भजन श्रोताओं आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर। छाया गीत ये कार्यक्रम होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आज आप सुनेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के जौहर से अंकित सैनी की बातचीत। विषय होगा चांदीपुरा वायरस संक्रमण कारण लक्षण व रोकथाम के उपाय। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे डॉक्टर शिवांगी कृषि वैज्ञानिक शस्य विज्ञान केंद्र नगीना से हिमांशु रंजन की बातचीत। और अब से थोड़ी देर बाद 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज क्रम होगा गपशप अड्डा क्रैश कोर्स पैसा वसूल और लव स्टोरी। तो श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। और आइए अब एक नजर डालते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम

खेल दर्पण। आपकी फरमाइश होगा रात 10:30 पर। शेरी नशिस्त ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। प्रतिभागी होंगे श्री अब्दुल हई, सुश्री मेहनाज खानम, सुश्री दानिस्ता गजल और शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे मेहराज बिजनौरी। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सनवर अली खां की गाई गजलें। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक विषय पर डॉक्टर चंद्रभानु, प्रधान वैज्ञानिक जैविक कृषि प्रणाली विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेरठ से प्रमोद सिंह की बातचीत। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र, शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: बातें हो दिल से तो यादें बन जाती हैं,
1: थोड़ी सी हंसी हो तो शामें सुहानी हो जाती हैं,
0: और जब मिल जाए अपनों जैसा एक अड्डा
1: तो हर बात खास बन जाती है।
0: गुड इवनिंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज की शाम स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी, और मैं हाजिर हूँ स्टूडियो में मरियम के साथ लेकर आपका हमारा हम सब का फेवरेट प्रोग्राम युववाणी।
0: तो रेडी हो जाइए अपनी रेडियो वाली महफिल के लिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं बताएंगे
1: बल्कि हम आपको भी बातों में शामिल करेंगे, क्योंकि आज है मंडे, यानी के अपने लिसनर्स से लाइव कनेक्ट होने का जरिया।
0: जी हाँ दोस्तों, उसके लिए बस आपको नोट कर लेना है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो कि है 9457078288, और आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ प्रोग्राम में, क्योंकि ये है गपशप अड्डा।
1: तो मरियम, जब हमारे दोस्त हमें सुन ही रहे हैं इतने प्यार से, तो हम उन्हें बता देते हैं कि आज का प्रोग्राम होने वाला है एकदम भरपूर एंटरटेनमेंट।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आज हम अपने एंटरटेनमेंट के पिटारे में लेकर आए हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट्स गपशप अड्डा, बूझो तो जानी, कुछ खास है आज, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, लव स्टोरी और साथ में बूस्टर के डोजेस।
1: तो बिना कोई देरी किए दोस्तों, सेगमेंट बूझो तो जाने का सवाल आपसे ये है कि फिल्म शोले में जय का किरदार किस अभिनेता ने अदा किया था?
0: जिसका जवाब आपको देना है दोस्तों हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट्स में। तो मोनिका, जब तक हमारे दोस्त हमें सही जवाब देते हैं, तब तक हम सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
8: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
7: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
9: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1 से अनेक।
10: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के

0: आप बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: चिंटू यार, मैं बहुत देर से एक बात सोच रहा हूँ। यार
4: क्या सोच रहा है बता, तभी तो पता चलेगा क्या सोच रहा है।
3: यार मेरा वो बात सोच के ना दिमाग इतना खराब है कि मैं तुझे क्या बताऊं यार।
4: अच्छा तू दिमाग मत खराब कर, मुझे बता, मैं दूंगा उसका जवाब तुझे।
3: चल तो एक बात बता चिंटू, ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं यार?
4: अबे भाई ये तो बहुत सिंपल है यार। देख, अगर मरीज लोग ऑपरेशन करना सीख गए तो डॉक्टर लोगों की तो वार्ड लग जाएगी ना।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: तो चलो मोनिका, अब शुरू करते हैं हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट गपशप अड्डा।
4: बिल्कुल, और देख लेते हैं हमारे साथ हमारे पहले कौन से दोस्त जुड़े हैं।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: जी, नमस्कार। आपका नाम?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और मैं आपके नजीरा में कॉल लगा रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। और
0: जी
1: मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, रायपुर,
0: जी
1: लाइक
0: जी
1: छत्तीसगढ़ श्रोता रेडियो श्रोता सम्मेलन है, तो बहुत बड़ा शहर रेडियो श्रोता सम्मेलन है। तो आज मैं ट्रेन के इंतजार कर रहा था, स्टेशन बैठे अपने की रायपुर जा रहा हूँ रेडियो श्रोता सम्मेलन में। तो
0: जी
1: आकाशवाणी ने बहुत कुछ सिखाया, तो आकाशवाणी के मिलने के लिए जा रहा हूँ। रेडियो श्रोता सम्मेलन हो रहा छत्तीसगढ़ में,
0: अरे वाह, ये
1: लाइक
0: तो बहुत
1: छत्तीसगढ़।
0: अच्छी बात है। और हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम्स भी लगातार सुनते हैं। तो
1: हाँ,
0: आप आज
1: प्रोग्राम
0: हमें
1: सुनते
0: बताइए।
1: हैं,
0: जी
1: इसीलिए बस रेडियो श्रोता सम्मेलन बनाया जाता है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसकी श्रोता है में एक जगह मिलाया बनाया जाता है, क्योंकि श्रोता हर श्रोता आएंगे
0: जी
1: तो उनपे इकट्ठे हुए सब मिले जुले हैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। सबका मिलना भी हो जाएगा, ये सम्मेलन बहुत ही अच्छा होगा। तो आप हमें बता दीजिए
1: बहुत
0: आज
1: बड़ा
0: आप।
1: सम्मेलन है,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: सम्मेलन है ये, तो
0: जी
1: बागपत में छोटा हुआ था इससे रायपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ
0: जी
1: सिलाई
0: जी
1: में।
0: जी जी सतीश जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, अपनी पसंद का?
1: आ जाओ, मेरे दोस्त से दो बात कर लो। ले हेलो करो। हेलो,
0: जी जी
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार। आपका नाम?
1: जी मैम, मैं दिनेश राठौर बोल रही हूँ।
0: जी, दिनेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, बढ़िया है, अपने हाल चाल सुनाइए।
0: जी, यहाँ पर भी सब बहुत अच्छे हैं। तो दिनेश जी, आप हमारे प्रोग्राम्स कब से सुनते हैं?
1: मैं प्रोग्राम तो मैम आपके बहुत दिन से सुन रहा हूँ, बहुत
0: जी
1: सालों से। मैं
0: जी जी
1: भी छोटा सम्मेलन जा रहा हूँ।
0: जी चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप साथ में सम्मेलन को एंजॉय कीजिए और सबसे मिलिए। चलिए, अब आप अपनी फरमाइश का एक गीत बता दीजिए जो आप अभी सुनना चाहते हैं।
1: मैडम जी, मुझे गाना सुनना, चांदनी फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी
1: बस दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ,
0: जी
1: गाने
0: बिल्कुल
1: बोलना
0: बिल्कुल
1: लगे
0: लीजिए।
1: सावन की फिरोज दो
0: जी
1: आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी जी
1: और
0: धन्यवाद।
1: दिनेश हैं, अभी तो बात करी थी, और जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। श्रोता सम्मेलन में मैं आ रहा हूँ, तो सब मिलिए श्रोता सम्मेलन
0: जी
1: में।
0: जी जी चलिए फिर सतीश जी, धन्यवाद आपका कॉल करने का। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: धन्यवाद मैडम।

0: काली रात, काली बिल्ली और लोगों के दिमाग में झट से एक ही ख्याल, अरे बिल्ली रास्ता काट गई।
1: क्यों मरियम, क्या स्टूडियो आते वक्त किसी बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया था क्या, जो तुम्हारी जुबान पर ये काली बिल्ली का नाम आ गया?
0: नहीं मोनिका, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं ना, उनके साथ कभी ना कभी ये हुआ तो जरूर होगा।
1: हाँ ये तो हो सकता है। तो दोस्तों आप अब हमें बताइए, अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई हो तो क्या आप भी ऐसे ही रिएक्ट करते?
0: लेकिन आज आपकी और हम सब की ये सोच चेंज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन उन्हीं ब्लैक कैट्स के नाम है जिन्हें अक्सर हम बिना वजह बदनाम कर देते हैं।
1: बिल्कुल मरियम, जैसा कि तुमने अभी कहा भी था कि आज का दिन है ब्लैक कैट्स के नाम पर। अब हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों असल में आज है ब्लैक कैट अप्रिसिएशन डे, जो हर साल 17 अगस्त यानी के आज ही के दिन मनाया जाता है।
0: मोनिका, हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि भाई मनाया तो जाता है 17 अगस्त को, ठीक है समझ गए, लेकिन पर्पस भी तो होगा ना। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, इस दिन का पर्पस है ब्लैक कैट्स के साथ जुड़ी नेगेटिव मिथ्स को कम करना और उनके लिए अवेयरनेस और एप्रिसिएशन को बढ़ाना, यानी लोगों को जागरूक करना।
1: और दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दिन की शुरुआत किसने की थी? तो हम बता देते हैं कि ब्लैक कैट अप्रिसिएशन डे को वाइन एच मॉरिस ने 2011 में अपनी बहन जूडी की याद में शुरू किया था, क्योंकि वो ब्लैक कैट्स को बहुत पसंद करती थी।
0: अच्छा चलो मोनिका, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई ब्लैक कैट आ जाए तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा?
1: पहले तो मैं बोलूंगी हेलो मैडम, और अगर वो मुझे इग्नोर करके चली गई ना तो मैं पर्सनली ऑफेंड भी हो जाऊंगी।
0: क्या बात कही है मोनिका, क्योंकि भाई बिल्ली के एटीट्यूड के सामने तो हम सब फेल है ना।
1: लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों,

0: सिर्फ आज ही नहीं, एनिमल्स को अप्रिशिएशन पूरी लाइफ चाहिए होता है।
1: तो आज इस दिन पर एक सिंपल सा मैसेज है दोस्तों, किसी एनिमल को सिर्फ उसके कलर या किसी पुरानी मान्यता की वजह से जज नहीं करना है हमें।
0: और ब्लैक कैट्स अनलकी बिल्कुल नहीं होती, वो बस ब्लैक कैट्स ही होती हैं।
1: और हर एनिमल डिजर्व करता है काइंडनेस, केयर एंड रिस्पेक्ट।
0: तो अगर आज कहीं कोई ब्लैक कैट दिखे,
1: तो रास्ता नहीं, बस हमें अपनी सोच बदलनी है।
0: वैसे वैसे वैसे
1: वैसे मोनिका, तुम्हें पता है ब्लैक कैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
0: क्या,
1: रात में उसको ढूंढना।
0: बहुत बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो दोस्तों आज के कुछ खास है आज में बस इतना ही। अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सेगमेंट लव स्टोरी की तरफ।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
0: आज की लव स्टोरी है एक मुलाकात जो जिंदगी बन गई, और ये है मरियम की आवाज में। चलिए आपको सुनवाते हैं इस लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 1।
1: दोस्तों कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें बस एक पल की होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी साथ चलता है। ये कहानी है दो अजनबियों की। कुणाल एक ऐसा लड़का जो हर पल को तस्वीरों में कैद करता था, और जानवी एक ऐसी लड़की जो हर बात पर मुस्कुराती थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने दर्द को कभी किसी से नहीं कहती थी। कौन ये जानता था कि बारिश की एक शाम इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। कुणाल अपने कैमरे के साथ बस स्टॉप पर खड़ा बारिश की तस्वीरें ले रहा था, तभी तेज हवा चली और एक नीले रंग की डायरी हवा में उड़कर सड़क पर जा गिरी। जानवी कहती है, अरे मेरी डायरी। इससे पहले कि डायरी पानी में भीगती, कुणाल दौड़कर उसे उठा लेता है और कहता है, अरे शायद ये आपकी है। जानवी कहती है, थैंक यू, अगर ये खो जाती ना तो बहुत कुछ खो जाता। कुणाल कहता है, अच्छा क्या ये इतनी जरूरी है? क्या इसमें कोई खजाना छुपा है? जानवी उससे कहती है, नहीं खजाना नहीं, लेकिन इसमें कुछ यादें हैं, और यादें दोबारा नहीं मिलती। कुणाल कहता है, हाय मैं कुणाल। जानवी कहती है, हेलो मेरा नाम जानवी है। अरे मेरी बस आ गई। कुणाल उसे पूछता है, तो अब? जानवी कहती है, अब अगली बस का इंतजार। दोस्तों इंतजार ना कभी कभी अजनबियों को भी दोस्त बना देता है, और वही हुआ। दोनों बातें करने लगे, कभी बारिश पर, कभी तस्वीरों पर, और कभी जिंदगी पर। एक दिन कुणाल और जानवी एक कैफे में मिलते हैं। बातों बातों में 2 घंटे कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। वापस जाते वक्त जानवी ने डायरी अपने बैग में रखी, लेकिन शायद एक छोटा कागज वहीं टेबल पर रह गया। कुणाल की नजर उस पर गई और उसने वो पेपर उठाया, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं इस शहर में सिर्फ 1 साल के लिए हूँ। वो लाइन पढ़कर कुणाल बहुत हैरान हो गया। इतने में जानवी वापस आई और बोली, कुणाल एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। और ये कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन जानवी अपनी डायरी वहीं भूल जाती है। कुणाल डायरी खोलता है, पर डायरी के बीच से एक पुरानी फोटो गिर जाती है, जिसमें जानवी किसी लड़के के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है। क्या जानवी सच में शादीशुदा थी? ये उस तस्वीर के पीछे कोई और सच छुपा था। जानने के लिए जरूर सुनिएगा इस कहानी का दूसरा एपिसोड।
0: बिल्कुल दोस्तों, लव स्टोरी के और सारे राज आपको अगर सुनने हैं और उनसे पर्दा हटाना है, तो आपको रोज हमारे प्रोग्राम सुनने होंगे। क्यों मरियम?
1: बिल्कुल मोनिका,
0: अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल की तरफ।

दोस्तों हाजिर है क्रैश कोर्स पैसा वसूल में। आज का टॉपिक चेस ग्रैंड मास्टर। तो चलिए आपको सुनवाते हैं। सोचिए एक ऐसी गेम जिसमें ना बॉल है, ना बैट, ना स्टेडियम की जरूरत, ना कोई दौड़ रहा है और ना ही कोई फिजिकल स्ट्रेंथ दिखानी है। फिर भी एक छोटी सी 64 खानों वाली बोर्ड पर दो प्लेयर्स के बीच में पूरी वॉर चल रही होती है। इस वॉर में हथियार होते हैं प्यादे, घोड़े, हाथी, ऊंट और राजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेस यानी के शतरंज की। आज के हमारे क्रैश कोर्स पैसा वसूल में हम जानेंगे कि ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं, क्या ग्रैंड मास्टर बनना सच में मुश्किल होता है। तो चलिए आज के क्रैश कोर्स में चेस की चाल नहीं, ग्रैंड मास्टर बनने की पूरी जर्नी को समझते हैं। दोस्तों ग्रैंड मास्टर कोई नया टाइटल नहीं है। फाइड यानी के वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने ऑफिशियल इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल 1950 में एस्टेब्लिश किया था। 1950 में सिस्टम आज जैसा बिल्कुल नहीं था। फाइड ने उस वक्त अपने डिसीजन से 27 इलीट प्लेयर्स को टाइटल अवार्ड किया था। टाइटल के लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन बाद के डिकेड्स में डेवलप हुआ और आज ग्रैंड मास्टर बनना एक प्रॉपर मैथमेटिकल और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। इतना दिमाग नहीं घुमाना है, चलिए इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 पॉइंट्स नहीं चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने, 2500 पॉइंट्स नहीं बल्कि 2500 फाइट रेटिंग। अब देखिए रेटिंग और टूर्नामेंट पॉइंट्स दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए टूर्नामेंट में आप गेम्स खेलते हैं, उसमें 6 पॉइंट्स स्कोर करते हैं तो ये आपका टूर्नामेंट स्कोर है। लेकिन फाइट रेटिंग आपकी चेस प्लेइंग स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग रेटेड प्लेयर्स को हराते हैं तो रेटिंग बढ़ सकती है। यानी कि पॉइंट्स बताते हैं टूर्नामेंट में आपने कितना स्कोर किया और रेटिंग बताती है कि आपकी प्लेइंग स्ट्रेंथ किस लेवल की है। अब ग्रैंड मास्टर जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है नॉर्म। ग्रैंड मास्टर नॉर्म का मतलब है आपने किसी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर लेवल परफॉर्मेंस दिखाई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पॉइंट्स बनाए और आपको ग्रैंड मास्टर नॉर्म मिल गया। नहीं, आपने किसके अगेंस्ट वो पॉइंट्स बनाए हैं ये मैटर करता है और फाइट के प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस भी फुलफिल हुई या नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्म के लिए रिक्वायर्ड प्लेयर फील्ड में कम से कम 1/3 ओपोनेंट्स ग्रैंड मास्टर होनी चाहिए और मिनिमम 3 ग्रैंड मास्टर होने चाहिए। अब इस पॉइंट पर आकर ग्रैंड मास्टर जर्नी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जनरली प्लेयर को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म कंप्लीट करने होते हैं, मतलब कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट, ग्रैंड मास्टर लेवल परफॉर्मेंस, एक नॉर्म, फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट, ग्रैंड मास्टर लेवल परफॉर्मेंस, दूसरा नॉर्म और फिर तीसरा नॉर्म। लेकिन इसके साथ ही प्लेयर को रिक्वायर्ड 2500 स्टैंडर्ड रेटिंग लेवल भी अचीव करना होता है। तो आपको एट द एंड एक फॉर्मूला याद रखना है, 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स प्लस 2500 स्टैंडर्ड रेटिंग इक्वल्स टू ग्रैंड मास्टर टाइटल क्वालिफिकेशन। और ये टाइटल तभी प्रोसेस होता है जब सारी रेगुलेटरी कंडीशंस फुलफिल हों और फाइड अप्रूवल भी हों। दोस्तों इंडिया का नाम चेस की हिस्ट्री में बहुत स्पेशल है। इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। आनंद ने इंडिया में चेस को पॉपुलरिटी दी और बाद में वर्ल्ड चैंपियन भी बने। आज की डेट में इंडियन चेस में आपको गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, विदित गुजराती, आर वैशाली जैसे वर्ल्ड क्लास नाम सुनने को मिलते हैं। इंडिया के लिए चेस आज सिर्फ और सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्टिंग आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। दोस्तों ग्रैंड मास्टर टाइटल की डिफिकल्टी समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक नाम आप याद रखिए, डी गुकेश। जी हाँ, गुकेश ने सिर्फ 12 साल 7 महीने और 17 दिन की एज में ग्रैंड मास्टर टाइटल अचीव किया था। गुकेश की स्टोरी यही बताती है कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि इयर्स ऑफ ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन चाहिए। फाइट की ऑफिशियल टाइटल डेटाबेस में 2026 में भी नए ग्रैंड मास्टर टाइटल्स अप्रूव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल

0: इंडियन प्लेयर आर्यन वार्ष्णेय का ग्रैंड मास्टर टाइटल 2026 में अप्रूव्ड हुआ है। फाइट प्रोफाइल में उनका स्टैंडर्ड रेटिंग 2538 लिस्टेड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलने के बाद रेटिंग 2500 पर फ्रीज नहीं हो जाती। अब जाहिर है शायद आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, वो ये कि ग्रैंड मास्टर बनने के बाद क्या जर्नी यहीं खत्म हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली रियल रेस तो तभी शुरू होती है। 2500 पर ग्रैंड मास्टर बनना एक अचीवमेंट है, लेकिन 2600, 2700, 2800 ये रेटिंग्स चेस के इलीट लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जब हम 2800 के आसपास की रेटिंग की बात करते हैं ना, तो हम चेस के एब्सोल्यूट लीजेंड्स की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, चाहे जिंदगी हो या शतरंज का खेल, हर चाल कुछ ना कुछ सिखाती है। जीत हो या हार, जो आगे बढ़ता रहता है वही असली बाजी जीत जाता है। आज के क्रैश कोर्स पैसा वसूल में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले क्रैश कोर्स पैसा वसूल में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।

0: वापस आएंगे आप मुस्कुराएं।
1: हेलो हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ माँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? कैसी हो?
2: मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है?
1: बस मेरा ना उनसे झगड़ा हो गया है। मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ।
2: झगड़ा हो गया? अरे झगड़ा तो होता ही रहता है, इसमें घर आने की क्या जरूरत है बेटा?
1: नहीं, मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है उनसे और मुझे घर आना है। मैं आज ही घर आ रही हूँ।
2: अरे बेटा शांत हो और मेरी बात सुन। झगड़ा तो तेरे उस पागल पति ने किया है ना, तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तो रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए वहां आ जाती हूँ।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
1: चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम में आगे हमारे कौन से दोस्त की कॉल हम तक आ पहुंची है।
2: हेलो।
4: जी हेलो।
2: नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी?
4: हाँ जी हेलो मुझे वो हेलो फ्रेंड मैम जी आदाब।
2: जी आदाब, आपका शुभ नाम?
4: मैं जिला रामपुर ग्राम खेतांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
2: जी वसीम जी, कैसे हैं आप?
4: एकदम अच्छे मैम, आप बताएं आप कैसे हो? स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
2: हम बहुत अच्छे हैं और स्टूडियो में सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
4: देखिए मैम, सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हम तो यही कामना
2: जी
4: करते हैं कि
2: बिल्कुल
4: सभी स्वस्थ रहें। जी
2: बिल्कुल वसीम जी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारा प्रोग्राम सुनते रहें।
4: आपका प्रोग्राम से तो आपके चैनल से तो काफी पुराना नाता है। 2008 से आपके चैनल के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, सारे बाकी पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं हर कार्यक्रम में।
2: बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे सभी कार्यक्रम बहुत दिल से सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो वसीम जी, आपकी कॉल लगी है कार्यक्रम गपशप अड्डा में, तो आपको कैसा लग रहा है हमसे जुड़कर?
4: लगभग 8 साल के बाद आपसे हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बात हो रही है तो काफी खुशी महसूस हो रही है।
1: ये तो काफी अच्छी बात है और आप हमारे बहुत पुराने लिसनर्स हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ इतने पुराने टाइम से जुड़े हैं और हमें उम्मीद है कि आपको भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपकी कॉल इतने टाइम बाद हमारे साथ जुड़ गई, आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाए हैं।
4: जी मैम धन्यवाद, काफी अच्छा लग रहा है और आपसे बात हो गई तो मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा।
1: जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी। तो आज आप बताइए, आपकी फरमाइश पर आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए?
4: जी मैम दो लाइन है आपके लिए।
1: जी,
4: इस जमाने से बहुत अलग हैं आप, इस जमाने से बहुत अलग हैं आप, वो बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास हैं आप।
2: वाह वाह वाह
4: हमारे लिए
2: भाई,
4: तो वो वक्त ही हसीन है जब दिल से याद करते वक्त मुस्कुरा लेती हो आप।
2: क्या बात है वसीम जी, मुझे सच में सुन के बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छा लगा। क्यों मोनिका?
1: बिल्कुल, अरे आपकी शायरी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब इसी बात पर आपके लिए एक गीत, जो आपकी फरमाइश है वो हम आपको सुनवाएंगे, तो आप उसकी लाइंस

0: बता दीजिए
1: और मैं कहना चाहूंगी, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश
0: जी।
1: की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं आपकी जिंदगी के लिए।
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह वाह,
1: बात है
0: बहुत
1: वसीम
0: बहुत
1: जी।
0: बहुत बहुत अच्छा है जी वसीम जी
1: मैम
0: जी
1: देखिए, रामपुर से

0: चलिए दोस्तों, अब शामिल करते हैं अगले कॉलर को. हमारे साथ कौन जुड़े हैं? हेलो.
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
0: जी जी नमस्कार. आपका नाम?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ.
0: अरे वाह, तनुश्री महाराष्ट्र से. कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम सब बहुत अच्छे हैं. और तनुश्री, आप हमारे प्रोग्राम्स कब से सुनती हैं?
1: मैम सच बताओ तो मैं आकाशवाणी अब जनवरी से ही सुनने लगी हूँ.
0: जी, तो मतलब आप हमारे नए दोस्त बने हैं.
1: हाँ मैम, पर हाँ ये दोस्ती है उम्र भर टिकेगी अब.
0: जी जी जी जी ये सुन के तो हमें बहुत खुशी हो रही है, और हमें नया दोस्त मिल गया ये सुन के भी बहुत खुशी हो रही है. और आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपकी कॉल हम तक जुड़ चुकी है?
1: बहुत खुशी हो गई है, बहुत मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती.
0: हम आपकी आवाज से सुन पा रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है.
1: जी
0: तो कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स?
1: मैम अच्छे लगते हैं, और ये यूनी फोनिंग कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया लगते हैं.
0: जी जी जी तो चलिए आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है लुटेरा, और गाने के बोला हवा की झोंकियां आज मौसमों से रूठ गए, बुलों की हस्तियां आज भोरे आज रूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं बदल का हाल जरा, सवार लो सवार.
0: जी जी जी जी जी आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है. तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर.
1: मैं दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ.
0: बिल्कुल लीजिए.
1: पहले पापा डेडिकेट रहेगा, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी, राकेश जी.

0: शिमला से रमेश प्रजापति जी है और आसाम से भाई अमोल भट्टाचार्य और लाइव सुन रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए जाएगा।
1: चलिए चलिए आपको सुनवाते हैं, आपके दोस्तों को डेडिकेट करते हैं सबके लिए लुटेरा फिल्म का सवार लो। धन्यवाद
0: ओके बाय
1: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था एक सवाल। फिल्म शोले में जय का किरदार किस अभिनेता ने अदा किया था? जिसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन जी ने।
1: अब जान लेते हैं सही जवाब भेजने वालों के नाम, जो है मुकेश कश्यप, पुंजाजी नावाकर, संजय मार्कंडे, राहुल पाल, नाजमुल हुदा जावेद, बालकराम वर्मा, शेषराव चौहान, अरुणा चौहान, हीरामणि वर्मा, चंद्रभान राजवाड़े, सुदर्शन शाह, जॉन डिकेस्ट्रो, अजीत भावसार, सुरेश राठौर, महक जैदी, अनिल विनोचा, सत्यवीर हांडा, रहत साहब और दिनेश वर्मा। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते अब देख लेते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन से जुड़े हैं।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्ते। किनसे बात हो रही है हमारी?
2: मैं लतीफ अमरेना कश्मीर से।
0: लतीफ जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा है मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम सभी बहुत अच्छे हैं और पूरा आकाशवाणी परिवार बहुत अच्छा है। लतीफ जी, आपकी कॉल लगी है सेगमेंट गपशप अड्डा में, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़कर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।

0: आपने इतनी दूर से कश्मीर से हमें कॉल लगाई है, तो ये सुन के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर तक भी लोग हमें सुन रहे हैं।
1: हाँ हाँ मैं तो रोजाना सुनता हूँ आपकी कार्यक्रम में, मुझे बहुत पसंद भी आते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, क्योंकि जब हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ते हैं और हमारे प्रोग्राम सुनते हैं उनको अच्छे भी लगते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है हमें आप लोगों से बात करके।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है, कार्यक्रम बहुत अच्छा जाता है। मैं सुनता हूँ वो प्रोग्राम, संडे वाला प्रोग्राम भी सुनता हूँ जो पत्र के लिए। धन्यवाद।
0: आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं उसके आपका बहुत शुक्रिया लतीफ जी। तो आज आप कौन सा गीत हमसे सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है पत्थर की फूल, उसमें लता मंगेशकर की आवाज में कभी तो छलियां लगता है।
2: चलिए फिर आपको सुनवा दें आपकी फरमाइश पर, ये कभी तो छलिया लगता है।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। हम खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नचबबा पिन कोड 246763।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियाँ आने वाले प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी मरियम जैदी
0: और मोनिका सैनी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित

शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

इकाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं

मीटर था 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो आपके ठीक होंगे और भैया खेती किसानी भी अच्छी चल रही होगी, और साथ ही भैया जो आपने अन्य व्यवसाय कर रखा है भैया, चाहे वो भैया डेयरी व्यवसाय हो, मुर्गी पालन हो, सुकर पालन हो, मछली पालन हो, भैया सब ठीक ठाक चल रहा होगा। और भैया देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये श्रावण मास चल रहा है भैया, आज उसके जो शुक्ल पक्ष है उसकी भैया पंचम तिथि है, और भैया आज के दिन हम मनाते हैं नाग पंचमी। तो इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। वर्षा ऋतु में खेतों और आसपास के क्षेत्रों में सांपों का निकलना अधिक होता है, इसलिए भारतीय परंपरा में नागों के प्रति सम्मान और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश भी इस पर्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। किसान भाइयों के लिए नाग पंचमी का विशेष महत्व है। खेतों में पाए जाने वाले कई सांप, चूहों और अन्य हानिकारक जीवों को खाते हैं, इस कारण वे फसलों को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए खेत में सांप दिखाई देने पर उसे मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें, और यदि भैया संभव हो तो प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की सहायता लेना भी जरूरी होता है। तो यह दिन नाग देवताओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और श्रद्धा प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही सर्प दंश का भय दूर होता है, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और प्रकृति के जीवों के प्रति अहिंसा का भाव जागृत होता है। तो ये तो बात हुई भैया आज के जो हम नाग पंचमी मना रहे हैं, ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। और भैया अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं खेती किसानी की ओर। और भैया हम बात कर रहे थे कि भैया हमारे किसान भाइयों का जो व्यवसाय है भैया वो ठीक ठाक चल रहा होगा, और भैया क्योंकि देखो बरसात का मौसम ऐसा होता है कि भैया इसमें हमें अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत होती है, चाहे भैया हम अपनी सुरक्षा की बात करें, अपने पशुओं की सुरक्षा की बात करें, या भैया जो हमारी फसलें खेतों में खड़ी हैं, चाहे भैया वो गन्ने की फसल हो, या भैया हमारे खेत में जो हमने खरीफ ऋतु में अपने खेत में चाहे वो धान की फसल है, या भैया कोई दलहनी फसलें अगर हमने अपने खेतों में बोई है, तो इस समय भैया रोग और खरपतवार का खतरा हमारे खेतों में अधिक रहता है। तो इस समय भैया हमें अपने खेतों में अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैया देखो सही समय पर अगर हम अपने खेत का निरीक्षण करेंगे तो भैया हमारे खेत में जो रोग हैं, कीट हैं, या भैया जो खरपतवार हैं, उनका हम सही तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। और भैया देखो आगे आज जो हम किसान भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आए हैं भैया, वो बहुत महत्वपूर्ण है भैया, उसका नाम है ई फार्मर रजिस्ट्री। किसान भाइयों, आज के समय में सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं को सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में फार्मर रजिस्ट्री शुरू की गई है। इसे एग्री स्टॉक का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। किसान भाइयों, फार्मर रजिस्ट्री में किसान की पहचान, उसके खेत और कृषि से संबंधित आवश्यक जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज इसमें भैया किया जाता है, और किसानों को एक विशिष्ट फार्मर आईडी यानी कि भैया किसान पहचान संख्या दी जाती है। सरल भाषा में अगर इसको समझें तो जिस प्रकार आधार कार्ड किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान का काम करता है, ठीक उसी तरह फार्मर आईडी कृषि क्षेत्र में किसान की डिजिटल पहचान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार के पास किसान और

0: की कृषि भूमि से संबंधित सही एवं प्रमाणित जानकारी उपलब्ध हो और किसानों को विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं, सेवाओं, ऋण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी हो। साथ ही भैया, फार्मर रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान की जानकारी अलग अलग योजनाओं में बार बार देने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्री स्टैक के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं की पहुंच को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि ऋण, कृषि इनपुट, बाजार संबंधी सेवाओं, कृषि सलाह तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाती है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान की पहचान के साथ उसकी कृषि भूमि की जानकारी को भी जोड़ा जाता है। इसमें खेत का विवरण, भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी तथा किसान के स्वामित्व या खेती से जुड़े विवरण दर्ज किए जाते हैं। केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार फार्म रजिस्ट्री को किसानों के खेतों के रिकॉर्ड से डिजिटल रूप से जोड़ा जाता है ताकि योजनाओं और कृषि सेवाओं के लिए किसानों की पात्रता को अधिक आसानी से निर्धारित किया जा सके। अब भैया सवाल ये आता है कि फार्मर रजिस्ट्री में कौन कौन किसान भाई आवेदन कर सकते हैं? तो सामान्य रूप से वे किसान जिनकी कृषि भूमि या खेती से संबंधित जानकारी राज्य के भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध हो, फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण हमारे किसान भाई करा सकते हैं। भूमि के मालिक किसान इसके प्रमुख लाभार्थी हैं। संयुक्त भूमि या कई खातेदारों वाली जमीन के मामले में भी भूमि रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित किसानों की जानकारी दर्ज की जा सकती है। और साथ ही भैया, जिन किसानों के नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं उन्हें विशेष रूप से अपना फार्मर आईडी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पंजीकरण के लिए अगर आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसानों को सामान्यतः अपना आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और भूमि से संबंधित दस्तावेज यानी भूमि रिकॉर्ड की जानकारी तैयार रखनी चाहिए। राज्य की प्रक्रिया के अनुसार खसरा, खाता संख्या, सर्वे नंबर अथवा भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य विवरण की जानकारी भैया इसकी आवश्यकता हो सकती है। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री में भूमि की पहचान के लिए गांव का कोड, सर्वे नंबर, भूमि का क्षेत्रफल और मालिक का विवरण जैसी जानकारी का उपयोग किया जाता है। एक बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि किसान भाई अपना मोबाइल नंबर भी सही रखें, क्योंकि डिजिटल पंजीकरण और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में मोबाइल नंबर महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर बदल गया है तो सत्यापन के दौरान समस्या आ सकती है। इसलिए किसानों को अपने आधार और अन्य दस्तावेजों के नाम तथा विवरण सही होने की भी जांच कर लेनी चाहिए। साथ ही भैया, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री का आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध है। इस पोर्टल पर फार्म रजिस्ट्री से संबंधित सुविधाएं, नामांकन की स्थिति, फार्मर डिटेल्स देखने और अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में किसान स्वयं उपलब्ध ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण करने का प्रयास कर सकते हैं। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी हो तो वो अपने नजदीक के CSC सेंटर या संबंधित कृषि विभाग के अधिकृत केंद्र कर्मचारी की सहायता ले सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर CSC के माध्यम से लॉगिन की सुविधा भी दिखाई गई है। तो किसान भाई इस तरह से अपनी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो करा सकते हैं और एक यूनिक कोड भैया आपको प्राप्त होगा, तो भैया उसे भी हमारे किसान भाई संभाल कर रख सकते हैं। तो ये तो बात हुई फार्मर रजिस्ट्री की, और भैया अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ ही जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ही जरूरी संदेश और अब चलते हैं भैया फिर से खेती किसानी की ओर और भैया चर्चा करते हैं पर्यावरण संरक्षण में किसानों की सहभागिता पर। किसान भाइयों, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो यह विषय केवल पेड़ लगाने या प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है। पर्यावरण का सबसे सीधा संबंध हमारी खेती किसानी से है। किसान की पूरी खेती मिट्टी, पानी, हवा और मौसम पर निर्भर करती है। अगर मिट्टी स्वस्थ है, पानी पर्याप्त है और मौसम अनुकूल है, तभी खेत में अच्छी फसल पैदा होगी और किसानों के घर में खुशहाली आएगी। किसान भाई, अगर मान ले कि खेत की मिट्टी की उर्वरता लगातार कम हो जाए, सिंचाई के लिए पानी कम होता जाए और मौसम का मिजाज लगातार बदलता जाए, तो हमारी खेती कैसे सुरक्षित रह सकती है? इसलिए पर्यावरण को बचाना वास्तव में अपनी खेती और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। हमारे किसान भाई खेती में कई ऐसे काम करते हैं जिनका सीधा संबंध पर्यावरण से है, जैसे खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखना। किसान भाई, यदि मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरक का प्रयोग करें, खेत में गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग बढ़ाएं तो मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रह सकती है। स्वस्थ मिट्टी में फसल की जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं, पानी को रोकने की क्षमता बढ़ती है और किसान को अच्छी पैदावार प्राप्त करने में मदद मिलती है। किसान भाइयों, इसी के साथ किसानों के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आज कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए पानी का सही उपयोग करना आवश्यक है। किसान भाई, खेत में जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का हमारे किसान भाई अगर अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो भैया निश्चित ही पानी की बचत की जा सकती है। खेतों में मेड़बंदी, वर्षा जल का संचयन, खेत तालाब और छोटे जल संरक्षण ढांचे बनाकर बारिश के पानी को खेत में रोका जा सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें खेत में कम से कम रसायनों का प्रयोग करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों को फसल अवशेष जलाने से भी बचना होगा। धान की पराली या अन्य फसल अवशेष जलाने से धुआं और हानिकारक गैस

0: फसलों और सब्जियों को क्षेत्र तथा बाजार की परिस्थितियों के अनुसार फसल चक्र में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पशुपालन करने वाले किसान पशु के गोबर और कृषि अवशेषों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही पशुओं के रहने की जगह की साफ सफाई और अपशिष्ट के उचित निपटान से गांव के आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हम किसान भाइयों की भागीदारी आवश्यक है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई पर्यावरण संरक्षण में किसानों की सहभागिता विषय पर। और भैया, उम्मीद है जो हमारे किसान भाई हैं इस बात को समझ गए होंगे। और भैया, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और भैया, आज हम किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर आए हैं, हम हमारे जो समसामयिक कार्य चल रहे हैं। तो आज की जो हमारी जानकारी का विषय है वो है बाजरा में समसामयिक कार्य। इस संबंध में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिवांगी, जो कि वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान विभाग कृषि विज्ञान के नगीना जिला बिजनौर में। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत। किसान भाइयों, मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, मंडवा, ये सब मोटे अनाजों की मुख्य फसलें हैं और मोटे अनाजों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हम ऐसे ही एक विषय पर जानकारी लेने आ पहुंचे हैं डॉक्टर शिवांगी जी से मिलने, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान विभाग कृषि विज्ञान के नगीना जिला बिजनौर में। और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है बाजरा में समसामयिक कार्य। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: मैम, जैसे कि आज का हमारा विषय है बाजरा में समसामयिक कार्य, तो मैम, मोटे अनाजों में बाजरे का क्या महत्व है, इसके बारे में किसान भाइयों को कुछ बताइए आप।
1: जी, बाजरा एक समय में हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग था। बाजरा एक बहुत ही ऐसा अनाज था जो हम जाने भर हम लोग अपने हमारे जो बड़े रहते थे वो लेते थे। हमारे खेतों का एक अभिन्न अंग था। समय के साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़े, ये चीजें कहीं पीछे छूट गईं।
0: जी,
1: और जिस जगह हम लोग अपनी दिनचर्या को लेके खड़े हैं, जिस तरह से हमारे बीच रोगों ने अपनी जगह बना ली है, उन चीज़ों का सामना करने के लिए हमें वापस इसका हाथ थामने की ज़रूरत है और बाजरे को अपने जीवन में, अपने खाने में जगह देने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कि बाजरे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अच्छा मैम, अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे की खेती कब से कब तक किसान भाई कर सकते हैं और इसका आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है?
1: सभी किसान भाई जो हैं वो जो बाजरे का बोने का सही समय है। बाजरा एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो कि गर्म और शुष्क जलवायु की फसल है। तो इसको हमारे क्षेत्र में आप 15 जून के बाद से लेके 15 जुलाई के बीच में बो सकते हैं, ये इसका सही समय है। बस ये ध्यान रखना है कि बुआई के समय अत्यधिक वर्षा ना हो, इसलिए मौसम का पूर्व अनुमान देखते हुए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए बाजरे की बुआई का समय देखने के लिए। एवं अगर इसकी बात कर लें आर्थिक महत्व की, तो जैसा मैंने बोला कि जो लोग आजकल की जैसी दिनचर्या है उसमें जिस तरह की डायबिटीज, हार्ट जैसी बीमारियां आ रही हैं, लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तो इंसान दूसरे विकल्प की तरफ जा रहा है, उपभोक्ता चीजें खोज रहा है। इसलिए किसान के लिए ये सबसे अच्छा समय है इस अपॉर्चुनिटी को, इस समय बाजरे को अपने खेत में जगह देने का, बाजरे को अपने फसल चक्र में जगह देने का। जैसे कि जब उपभोक्ता और किसान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, जब उनकी जैसी जरूरत है वैसा सप्लायर भी होगा, तो शायद सही रेट मिल सके, सही चीजें मिल सके, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके। तो बाजरे के लिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बाजरे की बिस्किट्स आ रहे हैं, बाजरे के स्नैक्स और आ रहे हैं, नमकीने आ रही हैं, लड्डू आ रहे हैं, लोग रोटी के लिए आटा ले रहे हैं। तो ये चीजें किसान को भी ध्यान में रखनी है कि उपभोक्ता खोज रहा है चीजों को, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं लोगों को, बीमार लोगों को सलाह या फिर फिट लोगों को भी और फिट होने के लिए ये सलाह दी जा रही है कि आप मिलेट्स का जैसे कि बाजरे को अपने खाने में लेके आइए। तो किसान भाइयों से यह आग्रह है कि उपभोक्ता को तभी मिल पाएगा जब अन्नदाता उसे उगाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसान भाइयों के लिए, आप बाजरे को का समन्वय जरूर करें अपनी खेती में।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें, व्यावसायिक दृष्टि से देखें,

0: या फिर हम सेहत से जोड़कर इसको देखें तो इसका सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा मैम, जैसे कि आज का हमारा विषय है बाजरे में समसामयिक कार्य, तो अगस्त का महीना हमारा चल रहा है, तो बाजरे में हमारे किसान भाई सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य करें जो इस समय महत्वपूर्ण है?
1: इस समय जो बाजरा होता है वो आपका 30 से 35 दिन का हो चुका होता है
0: जी
1: अगस्त में, अगर आपने समय से बुआई कर रखी है। तो जो आपकी दूसरी खुराक है यूरिया की, वो उसका समय हो चुका होता है। जो आपने फास्फोरस यानी डाया और पोटाश और जिंक की मात्रा बुआई के समय दे दी है एवं यूरिया की एक डोज बुआई के समय दे दी है, ये दूसरी डोज देने का समय है। बाजरा एक ऐसी लंबी लांग की फसल होती है और उसको अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है अच्छी उपज के लिए।
0: जी
1: तो जो दूसरी डोज है आपके यूरिया की, उसका एकदम सही समय है अगस्त। इसमें लगभग किसान भाइयों को 60 से 70 किलोग्राम यूरिया
0: जी
1: प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, या फिर अपने बिजनौर के हिसाब से बात करें तो 5 से 6 किलो बीघा के हिसाब से किसान दे सकता है। तो ये पहला कार्य है जो कि पोषण तत्व प्रबंधन में यानी खाद देने के लिए किसान के लिए बिल्कुल सही है।
0: जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने बताया कि इस समय जो है यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग किसान भाई इस समय कर सकते हैं। अच्छा मैम, बाजरे की हम बात करें तो बाजरे में क्या खरपतवार भी हमारे किसान भाइयों को परेशान करते हैं?
1: जी हिमांशु जी, ये जो समय है वो जैसे कि फसल के लिए बहुत अच्छा है, मॉनसून सीजन है,
0: जी
1: उसी तरीके से खरपतवारों के लिए का भी ये बहुत प्रिय सीजन है,
0: जी
1: बहुत प्रिय मौसम है। जब खूब अच्छी वर्षा होती है इस समय, आपने पोषक तत्व, जैसा हमने पिछले अभी बात की पिछले सवाल में, कि पोषक तत्व भी आपने भरपूर दे रखे हैं,
0: जी
1: नमी भरपूर है, तो जिस तरह हमारी फसल खुश होके बढ़ रही होती है उसी तरीके से हमारे खरपतवारों के लिए भी अनुकूल होता है ये मौसम,
0: जी जी
1: और वो बड़ी तादाद में इस समय जमाव लेते हैं और बढ़ते हैं खेत में।
0: जी
1: लेकिन ये हमारी फसल के लिए बहुत एक तरीके से नेगेटिव चीज़ है जो कि उसको पीछे कर देती है। तो फसल का ही हिस्सा कहीं ना कहीं खरपतवार ले रहे होते हैं,
0: जी
1: साथ ही साथ रोग और कीट का भी प्रकोप ज़्यादा होता है जिस खेत में आपकी खरपतवार होते हैं। तो
0: जी
1: किसान भाइयों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे अच्छा समय जो होता है वो आपने पहली निराई गुड़ाई बुआई के कुछ समय बाद, जब अच्छी जमाव ले लिया है पूरी तरीके से फसल ने, तब आपने किया। और ये जो समय है आपका अगस्त का, लगभग आप ये जो मान लें 35-40 दिन के आसपास, तो दूसरी निराई गुड़ाई का सबसे उपयुक्त समय ये होता है। तो किसान भाई चाहें तो अपनी खुरपी वगैरह से निराई गुड़ाई कर लें, या फिर एक छोटा कल्टीवेटर से, अगर आपने पंक्ति से बो रखी है अपनी फसल तो छोटे कल्टीवेटर से निराई गुड़ाई कर सकते हैं।
0: जी
1: साथ ही साथ एक पे एक फ्री जैसा एक फायदा होता है, किसान ये काम कर तो रहा होता है खरपतवार नियंत्रण के लिए, लेकिन उस पे फसल पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इस कार्य का होता है। जो हमारी जड़ें हैं उसमें जब ये कार्य हो रहा होता है तो इसकी वजह से जड़ों को पर्याप्त हवा मिलती है, पौधा अच्छा होता है एवं हम कल्ले खूब निकलते हैं। तो कल्ले निकलने में बहुत मदद करता है ये कार्य, और साथ ही साथ हम इस कार्य से खरपतवार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई बाजरे की फसल में खरपतवारों को निराई गुड़ाई की सहायता से कम कर सकते हैं। अच्छा मैम, इस समय अगर हमारे किसान भाई देखें तो वर्षा का ये हमारा मौसम चल रहा है, तो बाजरे के खेत में हमें क्या क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि इस समय हमारी फसल अच्छी उपज देने लायक हो जाए?
1: जी सभी किसान भाइयों को इस समय ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि बाजरे को नमी तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, उसको प्रिय है नमी, लेकिन जल भराव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है बाजरा।
0: जी
1: बाजरा गर्म एवं शुष्क जलवायु की फसल है, तो पानी जब आपका लगता है, यदि 24 घंटे से ऊपर पानी खड़ा हो गया आपके बाजरे के खेत में, तो जड़ों को नुकसान, पौधे का सड़ना, तेजी से बीमारियों का फैलना, जो आपकी कवक जनित बीमारियां होती हैं वो ऐसे इस स्थिति में बहुत तेजी से फैलती हैं। और साथ ही साथ जब सही तरीके से हवा का आवागमन नहीं होता है आपकी जड़ों में, तो बाजरा एक ऐसी फसल है कि वो बहुत तेजी से पीछे हटेगी। अब तो एक किसान को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि पानी नमी तो रहे, लेकिन अगर अधिक वर्षा हो गई है तो उससे पहले ही किसान को तैयारी करनी चाहिए कि नालियाँ साफ हो, नालियों से पानी की निकासी हो सके। तो इस चीज का ध्यान रखें कि पानी ऐसे बाजरे के खेत में बिल्कुल ना खड़ा हो सके।
0: बिल्कुल, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था हमें

0: खेत में करनी है। अच्छा मैम, बाजरे की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन पर भी कुछ विशेष ध्यान देना होता है?
1: बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो बाजरे की फसल है वो एक लंबी लांग की फसल है, खूब लंबी होती है। किसान उसको चारे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, तना पत्ती, इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, लंबी होती है। तो इसमें उर्वरक प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी। तो पहली, उर्वरक प्रबंधन में सबसे पहला जो चीज ध्यान में रखने की है, सबसे पहले मिट्टी की जांच करा लें, उसके आधार पर संस्तुति लेके आप पोषक तत्व प्रबंधन करें। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो किसान भाई देसी खाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। देसी खाद कुछ हद तक देखा जाए, अगर यदि आपने शुरुआत में देसी खाद अच्छे से मिला ली तो आप आधे से ज्यादा समस्याओं को, उर्वरक प्रबंधन की समस्याओं को या अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंतित हैं उनपे हल, उनपे विजय पा लिया है आपने।
0: जी जी जी।
1: तो देसी खाद की बात कर लें तो आप लगभग 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर यानी 12 बीघे में, या ऐसे बात कर लें तो 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा, जो बिजनौर का हमारा बीघा है, देसी खाद की इस्तेमाल करना चाहिए।
0: जी।
1: बुआई के समय आपको DAP, MOP का इस्तेमाल करना चाहिए। जो डाया है आपकी वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा एवं जो MOP है वो 5 किलोग्राम प्रति बीघा होनी चाहिए। एवं इसके साथ पहली जो आपकी यूरिया होती है वो भी आपको देनी होती है, लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। साथ ही साथ एक पोषक तत्व जिसको, जो कि आप इस्तेमाल करते भी हैं और ध्यान में रखना चाहिए, कि जिंक सल्फेट जरूर देना चाहिए। 1 से 1.5 किलोग्राम आपका बीघे के हिसाब से बुआई के समय दें। यदि किसी प्रकार से किसान से छूट भी जाता है तो जो पहली टॉप ड्रेसिंग आप कर रहे हैं उसमें आप जिंक सल्फेट जरूर दें।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो मिट्टी की जांच के बाद ही उर्वरकों का प्रबंधन करेंगे। और साथ ही आपने जिंक सल्फेट के विषय में बताया, जो कि हमारे किसान भाई उसको छोड़ देते हैं, तो उनका भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल अपने खेतों में करेंगे। अच्छा मैम, क्या कुछ ऐसे कोई कीट या रोग हमारी बाजरे की फसल में लगते हैं? अगर लगते हैं तो किसान भाई उनका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, कोई भी फसल है तो उसकी अच्छी उपज लेने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए कीट और रोग एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसपे विजय पाना बहुत जरूरी है। यदि वहां हम जीत गए तो शायद आखिरी तक हमने बाकी चीजें, सस्य क्रियाएं भी सही कर ली, तो शायद हम अच्छी फसल लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं।
0: जी।
1: तो अगर हम बात कर लें बाजरे में प्रमुख रोग जो होते हैं, वो है जो आपका सबसे पहला प्रमुख रोग जो बाजरे में आता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जो कि कहते हैं हरा कान रोग के नाम से प्रचलित है, या जोगिया भी कहते हैं कई कुछ क्षेत्रों में। इसमें ऐसा होता है कि यदि आप पत्ती के निचली सतह पे देखेंगे तो फंगस सफेद रुई जैसी, जैसा कुछ दिखता है।
0: जी।
1: जो बाद में बाली आती है वो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, गुच्छे के रूप में पत्ती होती है, झाड़ू जैसी दिखाई देती है, और बाद में आके उनपे दाने नहीं बनते हैं। इसको समझने की जरूरत है कि ये एक फंगस जनित रोग है, जो अगस्त से सितंबर के दौरान जो हवा चलती है उसमें जो नमी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि उससे फैलता है। तो किसान भाइयों को अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं, एक तो निरंतर इस समय खेत पे जाना बहुत जरूरी होता है, या आप जाते हैं और ऐसा कोई पेड़ दिखता है तो तुरंत उसको हटा के नष्ट कर दें, कुछ दूर ले जाके आप गाड़ सकते हैं या किसी भी तरीके से उसे नष्ट करके अलग कर दें, जैसे कि वो और ना फैले।
0: जी।
1: दूसरे प्रमुख रोग की बात कर लें तो वो चेपा रोग कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब फूल आने के समय जो बालियां होती हैं उनमें गाढ़ा चिपचिपा सा, एक शहद जैसा लसला सा तरल पदार्थ टपकने लगता है।
0: जी।
1: बाद में यही तरल पदार्थ जो होता है सूख के काले दानों का रूप ले लेता है। हम देखते हैं बाजरे में जो दाने होते हैं वो उभरे हुए और काले दिखाई दे रहे होते हैं।
0: जी।
1: तो ये भी कैसे फैलता है, जब सितंबर के महीने में लगातार रिमझिम सी बारिश होती है, लगातार वाली जो की बारिश होती है, बादल छाए रहते हैं, इस मौसम, ये मौसम सबसे प्रतिकूल माना जाता है इस बीमारी को फैलने के लिए। तो इसके लिए भी जब ये आपको कहीं दिखाई दे कि आपकी वो लसलसा पदार्थ आ रहा है तो ऐसे पौधे को तुरंत नष्ट करना ही एक इसका उपाय है, जो कि सबसे अच्छा जैविक और कम लागत का उपाय है, जो कि किसान जब देखे तभी शुरुआत कर सकता है। दूसरी बात, अब हम कीटों की बात कर लें, ये हमारे कुछ मुख्य रोग थे जो कि बाजरे में लगते हैं। तो अगर हम बात कर लें कीटों की, तो कीटों में इस मौसम में तना छेदक का, स्टेम बोरर का, आपके धान में भी स्टेम बोरर का बहुत प्रकोप रहता है।
0: जी, जी,
1: तो इसी तरीके से तना छेदक हमारे बाजरे को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

0: होता है इस मौसम में। इसमें क्या होता है कि जो सुंडी होती है वो तने में घुसकर उसे खोखला कर देती है। जो पत्तियों पर कतार होते हैं छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे होते हैं, ऐसी जो बीज की गोब होती है, अगर तना छेदक किसी पौधे में लगा हुआ है, यदि आपने बीज की गोब से उसको खींचेंगे तो वो चूंकि अंदर से खोखला हो चुका होगा इसलिए वो आराम से निकल आएगा। ये एक किसान देख सकता है इस चीज को, फिर धीरे धीरे पीला पड़ के पौधा वो सूख जाएगा आपका। तो ये एक मुख्य बीमारी है जो कि कीटों से बाजरे को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा कीट है। और अगस्त सितंबर एक ऐसा मौसम है जिस समय ये बहुत तेजी से फैलती है। इसके लिए क्लोरेंटा नीली प्रोल नाम का केमिकल आता है, दवाई आती है 18.5% SC में, उसकी 150 ml प्रति एकड़ के दर से मात्रा में हम छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं अपनी फसल का।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई अपनी बाजरे की फसल में कीट से और रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बाजरे में समसामयिक कार्य विषय पर। और मैम चलते चलते क्या कुछ कोई संदेश या कुछ ऐसी बात जो रह गई हो किसान भाइयों से कहने से, तो आप कुछ संदेश किसान भाइयों को देना चाहती हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं चलते चलते एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि अपनी फसल पे जब निराई गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करें, क्योंकि इस समय क्या होता है आपके अगस्त सितंबर के महीने में बारिश अच्छी होने की वजह से मिट्टी ढीली होती है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसे में आपकी लॉजिंग की समस्या यानी फसल गिर जाने की समस्या एक गंभीर समस्या है।
1: जी,
0: गिरी हुई फसल में हवा और धूप नहीं लगने के कारण फंगस का हमला जो होता है वो बहुत तेजी से हो सकता है, जिसमें दाने काले पड़ना, कड़वा होना, ये सारी प्रमुख समस्याएं सामने आती हैं। तो यदि कोई भी किसान भाई है, यदि मिट्टी अच्छे से चढ़ाया है तो ये लॉजिंग की समस्या कम से कम होगी। यदि किसी प्रकार से हो भी जाए तो सबसे पहले ध्यान रखें पानी को 24 घंटे से पहले ही खेत से निकाल दें। दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि पौधे को सहारा कर खड़ा करें। यदि आप पानी निकाल देंगे तो सबसे पहली चीज है पानी निकालने से मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाएगी एवं जड़ों को तुरंत हवा मिलने लगेगी। दूसरी चीज, यदि फसल हरी और लचीली है तो उसको सहारा देकर खड़ा कर देंगे। यदि बालियां नहीं आई हैं, जो वानस्पतिक अवस्था है उसमें आपकी फसल है, तो इस समय पौधा में बहुत लचीलापन होता है
1: जी।
0: तो ऐसे में क्या होता है कि वह धूप निकलने पर खुद ब खुद 3 से 4 दिन में ऊपर उठकर खड़ी हो जाती है। यदि बालियां आ जाती हैं तो भारी होने के कारण पौधा खुद सीधा नहीं हो पाता है। ऐसे में किसान भाई क्या करें, 4 से 5 पौधों को आपस में मिलाकर रस्सी से बांध दे, एक गुच्छा बनाकर सीधा खड़ा कर सकता है
1: जी।
0: तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ध्यान रखें किसी तरह की फंगल डिजीज ना आए फंगस से, साथ ही साथ जो पीछे हम लोगों ने शस्त्रक्रियाएं कही हैं, जो जिन पे चर्चा की है, वो समय पे करें तो मुझे लगता है कि किसान को कोई नहीं रोक सकता है बाजरे की बंपर फसल लेने से।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया किसान भाई को, और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, मेरा राम राम।
1: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये जानकारी जिसका विषय था बाजरे में समसामयिक कार्य, और देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी आप सभी को दी। और भैया इस जानकारी से आप लाभ जरूर कमाएंगे, और भैया देखिए लाभ एक और चीज से होता है भैया, वो है गीत संगीत, वो है मनोरंजन। तो भैया ज्यादा देर न करते हुए आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं सेठपाल सिंह आर्य व साथियों की गाई ये प्यारी सी रागनी।

वेद शास्त्र तर ढूंढ लिए। किसान भाई, अभी आपने सेठपाल सिंह आर्य व साथियों की आवाज में प्यारी सी रागिनी सुनी, और भैया उम्मीद है कि आपका खूब मनोरंजन हो गया होगा। और भैया देखो, अब घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है भैया कि और बातचीत की इजाजत नहीं दे रही, तो उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम? कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद। पिन है भैया 2467763। इस पते पर हमें भैया आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और साथ ही भैया एक हमारा व्हाट्सअप संदेश नंबर है भैया, आप उस पर भी व्हाट्सअप संदेश भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 9457072888। तो भैया ये है हमारा व्हाट्सअप संदेश नंबर, आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। और अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अपने आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वायरस को लेकर के। जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा कि गुजरात राज्य में एक ही दिन में 22 बच्चों की मौत हो गई इस चांदीपुरा वायरस से। तो क्या है ये चांदीपुरा वायरस, क्या इसका इतिहास है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस प्रकार से उसका रोकथाम की जा सकती है, क्या इसका उपचार है, इन सभी बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एसके जौहर को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: जी सर, सबसे पहले तो यही हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि चांदीपुरा वायरस क्या है, और जैसे कि हर वायरस की एक अपनी कहानी होती है, एक इतिहास होता है कि किस वजह से उसका यह नाम पड़ा,
1: जी
0: चांदीपुरा वायरस के बारे में भी हम आपसे यही सब अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे।
1: जी चांदीपुरा वायरस एक दुर्लभ, तेजी से फैलने वाला और खतरनाक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस के मायने हैं राइबो न्यूक्लियर एसिड। ये वायरस इस्तेमाल करता है अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में, तो इसलिए जो इसकी श्रेणी है वो आरएनए वायरस की है। इसकी खोज की अगर मैं बात करूं तो पहली बार सन 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में इसकी खोज हुई। गांव के नाम पर ही इसका नामकरण चांदीपुरा वायरस हुआ। इसका इतिहास लगभग 6 दशक पुराना है। 1965 में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा पहली बार इस वायरस की खोज की गई। डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप उस समय बहुत ज्यादा था, तो वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए रक्त के नमूनों में दो व्यक्तियों के रक्त के नमूने में अलग किस्म का वायरस पाया गया, जिसे आइसोलेट किया गया, यानी उसको पृथक किया गया और इसका नामकरण किया गया। ये वायरस रेबिडो विरेडे परिवार से संबंधित है। इसी परिवार में रेबीज वायरस भी आता है, और इसकी बनावट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो शेप है वो बुलेट के आकार की, यानी गोली के आकार का ये चांदीपुरा वायरस होता है।
0: जी अच्छा सर, जैसे वायरस की एक तो कहानी हो गई कि किस प्रकार से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा एक महाराष्ट्र के गांव के ऊपर,
1: जी
0: अब किस तरह से इसका प्रसार होता है,
1: जी
0: या जैसे अब बात कहें कि जब 1965 में महाराष्ट्र में ये पाया गया
1: जी
0: तो इसके प्रसार के पीछे की क्या कहानी निकल के आई।
1: जी तो जहां तक इसके प्रसार का प्रश्न है तो ये मुख्य रूप से सैंड फ्लाई, जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं,
0: जी
1: फ्लेबेटोमाइन इसका अंग्रेजी नामकरण है, या किलनी, मच्छर जैसे एडीज इजिप्टी के काटने से ये चांदीपुरा वायरस फैलता है। ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और बच्चों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करके एक्यूट एंसिफेलाइटिस सिंड्रोम यानी मस्तिष्क ज्वर का कारण बनता है।
0: जी
1: इसका चिंताजनक पहलू वो ये है कि संक्रमण के पश्चात 24 से 72 घंटे के अंदर रोगी गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, और खास बात यह है कि इसकी ना तो कोई दवा है और ना ही कोई स्वीकृत वैक्सीन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस अपने स्वरूप में तेजी से बदलाव कर रहा है। आईआईडी यानी इम्यूनिटी इंफ्लेमेशन एंड डिजीज में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये वायरस भारत में दूसरी बार बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बनकर उभरा है।
0: अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया इसके प्रसार में कि ये छोटे बच्चों में ज्यादा
1: जी
0: दिखाई देता है, इसका सर क्या कारण है कि बच्चों में ही दिखाई देता है या बड़ों में कम दिखाई देता है या वयस्कों में, एडल्ट में नहीं होता है।
1: जी देखिए, जैसे कि हर वायरस की एक प्रकृति होती है,
0: जी
1: नेचर है, उसके प्रसार का भी नेचर है, और वो घातक और मारक वो किस एज ग्रुप में होता है, तो इसकी जो घातक और मारक क्षमता है वो इसी वर्ग में सर्वाधिक है। यानी अगर ये बड़े लोगों में, एडल्ट्स में अगर इसका संक्रमण फैलता है तो वो अधिक प्रभावी नहीं होगा, वो निष्प्रभावी होता है। तो बच्चों में इसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये अपना प्रसार या संक्रमण सबसे ज्यादा इन बच्चों में ही होने के कारण ये अपना जो अटैक है ये 9 माह के बच्चे से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के

0: बच्चों में अधिक मारक क्षमता होने के कारण इसका अत्यधिक प्रसार होता है।
1: ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है या केवल मक्खी से ही कि मच्छरों से ही पॉसिबल है कि ह्यूमन में आएगा?
0: इस तरह का अभी तक वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस तरह से तो नहीं पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि हम जानवरों के संपर्क में आते हैं
1: जी
0: तो हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, अपनी साफ सफाई करनी चाहिए, या फिर ऐसे स्थानों पर जिन स्थानों पर इसका संक्रमण अधिक हो रहा है तो उन स्थानों पर अपने छोटे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
1: जी अच्छा सर, जैसे अभी बात आ रही है कि ये मक्खी मच्छरों से फैलता है,
0: जी
1: तो क्या कोई स्पेसिफिक मौसम, टेम्परेचर, क्लाइमेट इस टाइप का होता है कि ये उसी में एक पर्टिकुलर टाइम में ही अपना ज़्यादा अटैक करता है?
0: जी निश्चित रूप से। देखिए कि सबसे ज्यादा आप महसूस करते होंगे कि जितनी हमारे वायरसेस हैं
1: जी
0: इस चांदुरा के अलावा भी, उन सबका जो प्रसार होता है वो जो वर्षा काल है उसमें सबसे ज्यादा होता है। यानी आप ये मानिएगा कि जून मध्य से लेकर और अक्टूबर के अंत तक ये जो काल है ये वर्षा काल है, तो इसमें जगह जगह जल भराव होता है, नालियां उफनती हैं, नालियों में गंदगी का अधिक दिखाई देती है, अधिक गंदगी नालियों के अंदर। तो ऐसे में इस तरह के मौसम में जहां पर उमस होती है और ये जो बरसाती मौसम होता है, तो इसमें इसके फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये जो काल है वर्षा ऋतु का, इसमें इसके प्रसार का, इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे तो देखा जाए तो जो बरसात का मौसम होता है गर्मी से राहत दिलाता है, बहुत सुकून देने वाला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोगों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, उसमें सबसे ज़्यादा ये बरसात के मौसम में देखने को मिलता है।
0: जी
1: अच्छा सर, अब बात आती है इससे इन्फेक्टेड हो गया कोई पर्सन, ह्यूमन बच्चा,
0: जी,
1: तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या हमें किन लक्षणों के आधार पर हम या डॉक्टर ये तय करते हैं कि जो पेशेंट है उसको ये चांदीपुरा वायरस से वो अफेक्टेड है?
0: जी चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के लगभग 36 घंटे के पश्चात इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। आप किसी भी अन्य वायरस की बात करेंगे तो उसका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी एक काल होता है जिसके बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं। वो काल 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का इस तरह से होता है। लेकिन इसकी चांदीपुरा वायरस की जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 36 घंटे के पश्चात ही इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आरंभिक लक्षण की अगर मैं बात करूं तो आरंभिक लक्षणों में हमें तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, ऐंठन, दस्त, शरीर और मांसपेशियों में तीव्र पीड़ा, ये लक्षण आरंभिक लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहां तक के जो लक्षण हैं वो सब कॉमन वायरसेस के हैं, तो इससे चांदीपुरा वायरस की पहचान अलग से नहीं की जा सकती। अब इसकी पहचान होती है जब इसके गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो गंभीर लक्षणों में बार बार चक्कर आना, बेहोशी, दौरे, मिर्गी जैसे झटके, व्यवहार में बदलाव, मानसिक स्थिति में परिवर्तन, एन्सेफेलाइटिस, दिमाग में सूजन जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए, यानी इन गंभीर लक्षणों का अगर उपचार न किया जाए, तो फिर ये जानलेवा साबित हो सकता है। और यही गंभीर लक्षण इसको अन्य वायरसेस के लक्षणों से अलग भी करते हैं। तो ये संक्रमण चूंकि बहुत तेजी के साथ फैलता है और इस वायरस की जो मृत्यु दर है वो 56 से 75% तक होती है, तो जैसे जैसे लक्षण बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे रोगी बच्चों को खांसी भी बढ़ने लगती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और निमोनिया तक के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दें या फिर एन्सेफेलाइटिस या दिमागी बुखार और तीव्र बुखार और बेहोश

0: के दौरे अगर आने लग जाएं, तो ये समझना चाहिए कि रोगी अब गंभीर हो चुका है और अब उसका इलाज घर पर नहीं हो सकता, उसको निसंदेह तुरंत हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना जरूरी हो जाता है।
1: जी, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि शुरुआती लक्षण तो हर बुखार के एक ही होते हैं, इसमें थोड़े से कुछ डिफरेंट हैं, कुछ ज़्यादा लक्षण गंभीर लक्षण जो दिखाई देने लगते, तब डॉक्टर ये मान के चलते हैं कि उनको चांदीपुर वायरस हो गया।
0: जी,
1: अब जब हमारा पेशेंट चांदीपुर वायरस से ग्रसित हो गया
0: जी,
1: तो क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, या पेशेंट अपने आप से या खुद से अपने घर परिवार से एज ए प्रिकॉशनरी
0: जी
1: वो उपचार लेना शुरू कर दे, क्या उपचार इसका हो सकता है?
0: देखिए, इस वायरस की विडंबना यह है कि इसकी कोई खास एंटीवायरल दवा नहीं है या कोई प्रमाणिक वैक्सीन नहीं है,
1: जी,
0: इसलिए इसका उपचार केवल लक्षणों के अनुसार ही किया जाता है। जैसे बुखार कम करने की दवा, उल्टी रोकने की दवा, मांसपेशियों में अगर पीड़ा है तो उस पीड़ा को कम करने की दवा, या फिर रोगी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए तो ORS का घोल पिलाना, उसे रिहाइड्रेट करना, इससे शरीर को राहत मिलती है। ये मात्र घरेलू उपचार हैं जो हम आरंभिक लक्षणों के दौरान हम कर सकते हैं।
1: जी,
0: यदि तेज सिर दर्द, दिमागी सूजन और दौरे पड़ने आरंभ हो जाएं, तो फिर घर पर इलाज संभव नहीं है, रोगी को निश्चित रूप से अस्पताल में भर्ती करना ही होगा।
1: जी, हमारा लक्षण भी हो गए, उसका उपचार भी हो गया, और जैसे कि कहा भी गया है मेडिकल लाइन में कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर,
0: जी,
1: के बचाव इलाज से बेहतर है।
0: जी,
1: तो सर, इसके बचाव के या रोकथाम के लिए क्या क्या हम लोग या हमारी सोसाइटी, डॉक्टर्स लोग या पेशेंट्स के घर वाले क्या उपाय रोकथाम के कर सकते हैं?
0: जी जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो इस वायरस के संक्रमण को रोकना ही इसका एकमात्र उपचार है।
1: जी,
0: यानी हम किसी तरह से ये कोशिश करें कि इसका संक्रमण हो ही ना, और घर और आसपास की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें।
1: जी,
0: स्थान स्थान पर पानी जमा ना होने दें, नालियों में, कूलर में, गमलों की निरंतर साफ सफाई करें और पानी का बदलाव करते रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करना, बच्चों को साबुत आस्तीन के वस्त्र पहनाना। देखिए, अगर बच्चा साबुत आस्तीन के वस्त्र पहनकर रखेगा
1: जी,
0: तो वो सैंड फ्लाई बाइट नहीं कर पाएगी
1: जी,
0: वो एडीज इजिप्टी मच्छर बाइट नहीं कर पाएगा, किलनी बाइट नहीं कर पाएगी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। साथ ही साथ हम और अन्य रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं कि कीटनाशकों को हम छिड़काव कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जहां मिट्टी के घर होते हैं, वहां इसके संक्रमण की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि मिट्टी की दरारों में जो सैंड फ्लाई है, जो इसका मुख्य वाहक है, वो वहां पर पनपती है। बच्चों को कीट रेपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं
1: जी।
0: 9 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को संक्रमण वाले क्षेत्रों में जाने से रोकना चाहिए
1: जी।
0: साबुन पानी से बार बार हाथ धोने चाहिए, और यदि हमारे घर पर जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका यदि हम पालन करते हैं और हम इनके संपर्क में आते हैं, तो फिर उनके संपर्क में आने के पश्चात हमें अपनी साफ सफाई का खास ध्यान रखना होता है। विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, पानी की कमी ना हो इसके लिए ORS घोल निरंतर देते रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, चांदीपुरा वायरस के विषय में मैंने बताया कि एक बहुत ही गंभीर, दुर्लभ और तेजी से इसका संक्रमण फैलता है, तो इसलिए मेरा श्रोताओं को ये सुझाव है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समय अब वर्षा काल का चल रहा है
1: जी।
0: स्थान स्थान पर जल के भराव की स्थिति बनी रहती है, तो इनमें पानी को अधिक दिनों तक ठहरने ना दें। नालियों में हम DDT वगैरह का छिड़काव करें। वहीं चिकनगुनिया, डेंगू, चांदीपुरा वायरस के बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस काल में ये सारे वायरसेस बढ़ते हैं, तो साबुत आस्तीन के कपड़े पहनाना चाहिए बच्चों को, और कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, और सबसे अच्छा प्रयोग है मच्छरदानी का प्रयोग करना, और इन दिनों होने वाले वायरल संक्रमण

0: से खुद भी बचें और बच्चों को भी स्वस्थ रखेंगे तो हमारा ये समाज स्वस्थ होगा और आप सबको साफ सफाई के माध्यम से अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को स्वस्थ बनाएं, इसमें आपकी भागीदारी तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे।
1: निश्चित ही डॉक्टर साहब, चांदीपुर वायरस क्या है, इसके लक्षण, उपचार और रोकथाम विषय पर आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे सुनने वाले सभी श्रोता लाभान्वित होंगे। इसके लिए आप आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के जौहर से अंकित सैनी की बातचीत, जिसका विषय था चांदीपुरा वायरस संक्रमण, कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।

बेवफा से वफा इस फिल्मी श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत के बोल थे सावन कुमार के और संगीत था उषा खन्ना का।

जवानी दीवानी इस फिल्म में श्रोताओं आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को। गीत के बोल थे आनंद बख्शी और संगीत था आर डी बर्मन का। इसी के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब संप

होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात 10 होगा, भूले बिसरे गीत, और रात 10:30 पर श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गीत संध्या कार्यक्रम होगा रात 8:00 और 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म हिम्मत से कुछ गीत। रुचि अग्रवाल के गाये पूर्व प्रसारित भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर। कल रात 10:00 राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम आप सुनेंगे खेल दर्पण शेरी नशिस्त, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी होंगे जनाब अब्दुल हई, मोहतरमा मेहनाज खान व मोहतरमा दानिस्ता गजल, और शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे जनाब महराज बिजनौरी। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सनवर अली खां की गाई गजलें। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 6:50 पर। 6:05 पर कृषिगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बासमती धान की जैविक उत्पादन तकनीक विषय पर डॉक्टर चंद्रभानु प्रधान वैज्ञानिक जैविक कृषि प्रणाली विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेरठ से प्रमोद सिंह की बातचीत। युवावाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा दिल से दिल तक और लव स्टोरी। एक ही कलाकार कार्यक्रम में कल दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे पार्श्व गायक के। श्रोताओं ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैक चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में नई ईपॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को

0: बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का लखनऊ से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदेश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहाँ अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई। धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा। उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, कौशाम्बी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। कोटेदारों में लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को सही राह खाने के लिए सरकार की खेल संस्कृति को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
2: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान
0: DBT
2: के माध्यम से देगी।
0: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा है कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे

0: यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और 8 राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉ भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। सहारनपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। नागपंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पुष्प वर्षा से कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मार्कंडेय महादेव और महामृत्युंजय मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। नागपंचमी पर प्राचीन नागकुआं मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता और नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नागकुंड में दूध जल और लावा अर्पित करने की परंपरा निभाई गयी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, पीलीभीत, आगरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
2: कल भी भारी वर्षा का जो सदर्न पोर्शन है और तराई बेल्ट है, वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि लो प्रेशर धीरे धीरे मूव होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 20-21 को फिर से जो उत्तर प्रदेश के साउथ वाले हिस्से हैं, बुंदेलखंड, विंध्याचल रीजन से बहुत भारी वर्षा आने की संभावना हो सकती है। तापमान में जैसा कि 3-4 डिग्री की गिरावट हुई है, यही क्रम में कल भी रहेगा। बाकी परसों से हल्का हल्का खुलेगा, हालांकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला बनेगा।
0: प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में नई ईपॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक

0: समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुको गुड्डू,
3: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं रुचि अग्रवाल के गाए ये पूर्व प्रसारित भजन।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे रुचि अग्रवाल के गाए पूर्व प्रसारित भजन। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीब आपात केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संध्या।

किशोर कुमार को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था दुनिया, गीत के बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था आरडी परमन का। कार्यक्रम गीत संध्या का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में, बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की और फिल्म का नाम CID।

पत्थर के सनम इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मुकेश को। गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म पेइंग गेस्ट से। गीत के बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत

शंकर जयकिशन के संगीत के संगीत निर्देशन में श्रोताओं आप सुन रहे थे नीरज का लिखा गीत। आवाज थी मुकेश की और फिल्म का नाम था पहचान। कार्यक्रम गीत संध्या का अंतिम गीत श्रोताओं ये सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म फूल बने अंगारे से। गीत के बोल हैं अनजान के और संगीत बप्पी लहरी का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिम्मत फिल्म के गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिम्मत फिल्म के गीत। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत के बोल थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेडाल का था। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1441 कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा

0: विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट्रे होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट।

0: समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कोलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधार

0: कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंद्र भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul's test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network.

0: about the national flag and Vande Mataram. Over the past 5 years, Har Ghar Tiranga has grown into a nationwide expression of participation and pride. Every year brought new ways for people to connect with the Tiranga, and 2026 has seen the participation reach an especially broad and vibrant scale. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Flood situation continues to remain grim in North Odisha, with 6 districts affected and 126 villages still marooned amid rising rivers and continuing rainfall. More from our correspondent.
2: Floodwaters have affected 6 districts of Odisha, Keunsar, Bhadrak, Baleswar, Mayurbhanj, Jajpur and Kendrapada, with around 8 lakh people in 1,304 villages affected. The Baitarani, Brahmani and Salandri rivers continue to flow above danger levels. In flood-hit areas, people are facing acute shortages of food, drinking water and electricity, besides inadequate shelter. The threat from crocodiles, snakes and other poisonous reptiles has further added to their distress. Chief Minister Mohan Charan Majhi today conducted an aerial survey of Bhadrak and Jajpur districts and reviewed relief and rescue operations. The state's Water Resources Department says the situation may persist for another 4 to 5 days, while further rainfall is likely to add to the challenges. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand for tomorrow. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh tomorrow. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at stumps on day 3 of the first test in Gaul. Manasuthar led the wickets column for India with 4 scalps, while Ravindra Jadeja picked up 3. Jadeja became only the 4th player in Test cricket history to reach the milestone of 350 wickets and 4,000 runs. He's also the first Indian left-arm bowler to achieve the haul. For host, Sonal Dinusha scored his maiden Test century, while Niroshan Dikwela made 80. At the BWF World Championships in New Delhi, India's PV Sindhu and Ayush Shetty have advanced to the second round of their respective singles events. Women's doubles pair of India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand and men's doubles duo of M.R. Arjun and Hariharan have also cruised to the next round. And now before we end the bulletin, the headlines once again. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under electronic components manufacturing scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on exam reforms, directs NTA to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि यौम आजादी से कबल आईएसआई की हिमायत वाले शहजाद भट्टी दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत तकरीबन 7,900 करोड़ रुपए मालियत की 31 नई तजावीज को मंजूरी दी है। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने इम्तिहानी इस्लाहात के मौजू पर सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। वजीर तालीम ने सभी इम्तिहानात के तरीकाकार का जामे ऑडिट करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी। बीजेपी ने पार्टी अहदेदारों की नई कौमी टीम का ऐलान किया है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया टीम में शामिल अहम नाम हैं। कतर में रिहाइश पजीर भारतीय अब डाकखानों के जरिए यूपीआई से अपने घर रकम भेज सकते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में गाले टेस्ट की पहली इनिंग्स में भारत ने श्रीलंका को 284 रन तक महदूद करते हुए 178 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने इत्तला दी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने यौम आजादी से कबल आईएसआई की हिमायत वाले दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी ने नेटवर्क को तबाह कर दिया है। जनाब शाह ने बताया कि हुकूमत ने इस ग्रुप के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके मुमकिना हमलों के मंसूबों को भी नाकाम बना दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर तालमेल पर मबनी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए इस नेटवर्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के भारत के अज़्म की उम्दा मिसाल है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस महीने की 12 तारीख को रियासती पुलिस फोर्सेज के साथ मिलकर कई रियासतों में तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के जरिए हकीकी वक्त पर मबनी इंटेलिजेंस इश्तराक की बिना पर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी है। ये नेटवर्क यौम आज़ादी के आसपास खलल डालने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान 14 रियासतों से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 अफराद शामिल हैं। ISI की माली एयानत वाले इस ग्रुप से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। ये नेटवर्क मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम ISI की हिमायत वाला दहशतगर्द ग्रुप है, जो भारत में ग्रेनेड, IED, पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड किलिंग्स में मुलव्विस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस, दिफाई तनसीबात और मजहबी मकामात की रेखी के लिए मुकामी कारिंदों को रकम अदा करता था ताकि वो जासूसी के लिए CCTV कैमरे नसब कर सकें। शहजाद भट्टी नेटवर्क मामले में अब तक 80 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
3: हर घर तिरंगा मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। हर घर तिरंगा मुहिम के पांचवें साल ने एक तरफ जहां तिरंगे को लाखों भारतीयों के दिलों से जोड़ा, वहीं सरहद पार भारतीय भी तिरंगा लहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए यकजा हुए। मुल्कगीर पैमाने पर मनाई गई इस मुहिम ने शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाया, कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया और भारत के सकाफती विरसे को फरोग दिया। साल 2022 में शुरू हुई हर घर तिरंगा मुहिम अवामी शमूलियत वाली मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक के तौर पर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील से मंसूब रही। इस मुहिम ने हुब्बुल वतनी के मुनफरिद इम्तजाज के तहत कौमी परचम और कौमी गीत को यकजा किया। इस साल की मुहिम की खासियत लोगों का इसमें नित नए तरीकों से शामिल होना था। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों, सकाफती जुलूसों, स्कूल और कॉलेज प्रोग्रामों और बिरादरियों के जश्न में हर घर तिरंगा का जज्बा साफ नजर आ रहा था। स्कूलों और कॉलेजों ने कौमी परचम और वंदे मातरम के बारे में जानने के लिए नौजवान लोगों की हौसला अफजाई की। ये मुहिम हर साल लोगों को तिरंगे से जोड़ने के नए तरीके लाती है और साल 2026 में भी इस मुहिम को मनाने का दायरा काफी वसी रहा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
3: हुकूमत ने 7,877 करोड़ रुपए की तखमीना जाति सरमायाकारी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत 31 मजीद दरख्वास्तों को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों से 9,500 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ये दरख्वास्तें 10 रियासतों से मौसूल हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 दरख्वास्तें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी नामे सौंपे। ये दरख्वास्तें एसिटाइलिन ब्लैक स्पीकर्स और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैपेसिटर्स, ट्रांसीवर्स और कॉयल्स जैसी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इन 31 मंजूरियों के साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों की मंजूर की गई दरख्वास्तों की मजमूई तादाद 106 हो गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने 59,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रागिब करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने हदफ से आगे बढ़ गई है और 69,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर चुकी है।
6: इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106

0: प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: वजीर तालीम जनाब प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनकता निजाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया है कि वो सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और उसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज पार्टी के कौमी ओहदेदारों की नई टीम का ऐलान किया। जनाब नबीन ने 13 कौमी नायब सुदूर का तकर्रुर किया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं, जबकि जनाब पीयूष गोयल को पार्टी का कौमी खजांची मुकर्रर किया गया है। नीज BL संतोष को तंजीमी कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव समेत पार्टी के 8 लीडरों को कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। पार्टी ने मुख्तलिफ मोर्चों के लिए भी नए सरबराहों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डॉक्टर हेमंग जोशी को बतौर युवा मोर्चा सदर, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा सदर और बंसीलाल गुजर को किसान मोर्चा का सदर के तौर पर तकर्रुर किया गया है। BJP के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ओहदेदारों की नई टीम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात और नफसियात पर असरअंदाज होने वाले मादों की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मुलव्वस गैर मुल्की शहरियों के लिए जमानत की शराइत सख्त कर दी है। ये फैसला फर्जी जमानत के खदशात के मद्देनजर किया गया है। इस सिलसिले में मुतादिद हिदायत जारी करते हुए जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत पर रिहा होने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने पासपोर्ट मुतालिक अदालत में जमा कराने होंगे और उन्हें पेशगी इजाजत के बगैर भारत से बाहर सफर करने के मजाज नहीं होंगे। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसे मुलजिमान को रिहाई के एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों के इंदराज के इलाकाई दफ्तर FRRO में अपना इंदराज कराना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि आमतौर पर मुलजिम की जमानती मुचलके की रकम के मसावी 2 जमानतें भी जमा करानी होंगी। इसके अलावा अगर तफ्तीश के दौरान मुलजिम के भारत में रिहायशी पते और राब्ते की मालूमात की तस्दीक हो चुकी हो तब भी जमानत के हुक्म के 3 दिन के अंदर इन मालूमात की दोबारा बजाते खुद पेश होने पर तस्दीक की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2 नामालूम अफराद की मुश्तबा नकल हरकत के बारे में खुफिया मालूमात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधमपुर के जंगलाती इलाके रामनगर में नाकाबंदी और तलाशी की वसी मुश्तरका कार्रवाई की। जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी कार्रवाई ग्रुप SOG, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने जोफर इलाके की नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद का पता लगाने के लिए तलाशी की कार्रवाई की। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कार्रवाई में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इलाके में कई मकामात पर यह कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने मकामी लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावुन करने की अपील की है। उधमपुर जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकसी बरत रहे हैं और अमन और सलामती को लाख किसी भी खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने कहा है कि 3 अगस्त से शुरू किया गया नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रखा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए जनाब पांडे ने कहा कि बोर्ड इदारे की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज पर गौर करेगा और जरूरत के मुताबिक तब्दीली भी लाएगा। सेबी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सेबी की जानिब से मुतारिफ कराया गया 3:15 से 3:35 तक 20 मिनट का नीलामी सेशन है। इसका मकसद F&O सेक्शन में शामिल स्टॉक

नमस्कार श्रोताओ, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI

0: एसएसआई में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2371-2371-7116 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं 4 विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूंगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए, कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज।
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्वलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर

0: अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओमोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका.
2: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है.
1: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका.
0: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है फंक्शनल फूड्स फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज मेडिकल यूज करके उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए मतलब डिसीज को क्यूर करेगा डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. जैसे अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
1: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है. पिछले एक साल में CCPA ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं.
3: CCPA की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले पांच वर्षों में इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
1: बहुत बड़ी कार्रवाई.
3: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब UPSC का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे.
3: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो UPSC के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी. तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल है. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही CCPA ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर. डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है. तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है. तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जेप्टो है इंडिगो है बुकमाइशो स्पाइसजेट इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया उन पर कार्यवाही की गई है. एक जो और बड़ी कार्यवाही CCPA ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज ड्रोन जैमर्स एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन फ्लिपकार्ट इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे उन सब पर भी कार्यवाही की गई है. तो उस बड़ी कार्यवाही है जो CCPA ने पिछले वर्ष की है.
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित आंचल. अमित जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
4: जी नमस्कार. मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से खपत के हिसाब से जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है. इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है. ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है. इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे.

0: एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था
1: जी,
0: इस पर थोड़ा सा आप इसका बता दें
1: जी। कविता मैम आपसे सवाल है ये
2: जी, बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
2: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है
1: जी,
2: करके।
1: जी, FSSAI का।
2: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है, तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
3: यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
3: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
3: उसका पेमेंट कर सकते हैं, और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है, और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4000 से ज्यादा NRIs है। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर है उनकी लोकल

0: एफ बी ओ टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है. सेम वे डेट शेल्फ में, मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते. हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस. ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम लेबल नहीं देखते जनरली. अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके. इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेज प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है. इसका पनिशमेंट भी है.
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
2: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी जी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी.
2: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915-1915 है, यह टोल फ्री है
1: जी.
2: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं. यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी.
2: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है. व्हाट्सएप नंबर है 8800-1915-8800-1915. ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है. हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें. यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं. और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है. और पिछले एक वर्षों में NCH के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी. और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से. उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा.
0: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा. इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं. फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है. अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम. और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कॉम्पोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं. इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का. एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ. पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है. सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है, मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके. फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है. इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है. अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग.

0: फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हॉलमार्क है, ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
2: इसमें बेसिकली तीन निशान है, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप, जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे
1: जी,
2: वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
3: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते हैं कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते हैं कंप्लेंट करते हैं या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी
2: पूछिए। आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहां कीजिए, वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सिर्फ एक फोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है, उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और फोस्कॉफ पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशन देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उस

0: कि कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू. ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है.
1: कविता जी, आपके आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
2: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा. फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर. सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है. लेबल में क्या दिया है, हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं. आजकल हम बताते हैं, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए. सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में चार सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से. अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच
1: जी कविता जी, समय समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए. तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
0: धन्यवाद.
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: ले
1: हमें क्या सोचते,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हाल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल, जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के।

पवित्र पापी इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। गीत और संगीत था प्रेम धवन का। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एक बार फिर से, और फिल्म का नाम है फागुन। गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के और संगीत ओपी नैयर का।

फिर वही रात। इस फिल्म में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत था आरडी परमन का। आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरा मोती से। गीत के बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत रोशन का।

हेरा फेरी। इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। गीत के बोल थे अनजान के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म हावड़ा ब्रिज से, जिसे आवाजें दी हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी और संगीत है ओपी नैयर का।

हम दोनों इस फिल्म में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। गीत के बोलते साहिल लुधियानवी की और संगीत था जयदेव का। इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश होता है आपके व्हाट्सएप मैसेज पर और आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित। तो श्रोताओं पत्र हमें मिल चुके हैं और जो श्रोता अपनी पसंद का कोई गीत हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो वो अभी सीधे हमारे स्टूडियो में हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए हमारे कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 9457078288। इस नंबर पर आप अभी सीधे हमें स्टूडियो में मैसेज कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत। चलिए श्रोताओं शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। और ये पत्र हमें मिला है गांव नंगला उभन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से भेजने वाले ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और देवा बेबी। और ये अगला पत्र श्रोता हमें मिला है और ये पत्र हमें भेजा है परिमहल कासगंज से, भेजने वाले आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम, सैफी मास्टर, जाहिद अली और मीरा सराय, बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। और ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवाईन कस्बा शेरकोट बिजनौर से भेजने वाले मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी खान, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं हमारे श्रोता राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। कृष्ण की नगरी मथुरा से ये मैसेज हमें

मिला है और भेजने वाले हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, महराज जहां का ये पत्र श्रोताओं में मिला है, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सैयद आलम हाशमी इस गीत को सुनना चाहते हैं, नाज पैलेस अजमेर शरीफ राजस्थान से। और राजस्थान से ये मैसेज हमें मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, भेजने वाले जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डांगला परिवार। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हमें मैसेज भेज रहे हैं और मैसेज भेजने वाले आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। वडिंग खेड़ा से हमारे श्रोता हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लक्सर रोड गांव स्वाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से हमारे श्रोता मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शुएब कहकशां और इनका पूरा परिवार। रिंगणी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और ये पत्र श्रोता हमें मिला है करूला मुरादाबाद से, भेजने वाले अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और सिंधोली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी। ये मैसेज हमें मिला है गांव जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से, भेजने वाले राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, सायना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। और ये सभी श्रोता हमारे सुनना चाहते हैं फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी और संगीत आर डी परमन का।

और कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं, हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। लेकिन उससे पहले हम एक बार नंबर फिर से बता दें हमारे श्रोताओं को व्हाट्सएप भेजने के लिए, नंबर है 94-570-78-288। इस नंबर पर आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में हमें मैसेज भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत। और कार्यक्रम में ये पत्र इस गीत के लिए हमें मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। भेजने वाले नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, नदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत। और ये पत्र हमें मिला है शाही मार्केट सियोहरा जिला बिजनौर से। भेजने वाले आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफा चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी। ये मैसेज हमें मिला है चंडीगढ़ सिटी से। भेजने वाले सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। भेजने वाले श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख, कुमार संचित वायल, प्रथमेश सर्वत, हर्षता सानवी, प्रणाली देशमुख। गंज डुंडवारा से हमारे ये श्रोता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमशुल कमर राही। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से हमारे श्रोता हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और मैसेज भेजा है हमें विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीके कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न गौरव, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। पटियाला रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, हम्मद कुरैशी और अरिबा हबीबा। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। और ये हमारे श्रोता हमारे साथ पत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़स

से और विनोद खड़े से और हमारे श्रोता हैं बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, हस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म काली चरण का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत के बोल हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और वामिका के साथ में हमारे श्रोता हैं वाणी थांदी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। और ये पत्र हमें मिला है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। और ये पत्र हमें मिला है श्रोताओं इसी गीत के लिए पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत का। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता मैसेज भेज रहे हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता, रेयांश और पूरा लोखंडे परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। अजीत नगर मलोड पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी पोती रौनक दीप कौर। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता चौरसिया, सुजाता, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, शिवा शिवानी चौरसिया, पवनगौड़ और योगेंद्र नायक कासगंज भी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म साजन का एक गीत, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

और कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट पंजाब से। भेजने वाले राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।

जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर से सायबा खातून अरमान महबूब, नूरजहां खातून, साजिया परवीन, नाजिश जहां, फूल जहां और कैफुलवरा। जसपुर रोड दुल्हापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद बारिस अंसारी, अलशिफा अंसारी और माही नूर अंसारी। मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। मलोट पंजाब से ये मैसेज हम शामिल कर चुके हैं श्रोताओं। और अगला मैसेज पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श अल खलीफा। राहीनगर कुंज टुंडवारा से शमशुल कमीर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और ताबिश खान। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। गांव और पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। और ये मैसेज हमें मिला है कोटली कला से यदवेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह और गुरजोत सिंह। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मास्टर खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाजी शेख और राधा नामदेव। ये अगला मैसेज हमें मिला है अलोट मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम से भेजने वाले जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये हमारे श्रोता हमारे साथ हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद सादिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा से हमारे श्रोता एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, कुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। और श्रोताओं कार्यक्रम के ये अंतिम गीत के लिए अंतिम फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं और ये फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोता हैं गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फैजान, अनु और उस्मान खान। और देखिए श्रोताओं चलते चलते एक और मैसेज हमें मिला है, जल्दी से इसको भी हम पढ़ देते हैं। और ये मैसेज हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से भेजने वाले सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि। और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म साथी से, आवाजें अनुराधा पौड़वाल और ज्वली मुखर्जी की, गीत समीर का संदीप, संगीत नदीम श्रवण का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।